0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, खुद को समझा और किस तरह से खुद को मैनेज करने का प्रोसेस है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही प्रति थी। आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज़ में जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कौन सा आस्पेक्ट है ज़िंदगी का जिसको देखना ज़रूरी है जब हम सेल्फ को मैनेज करने की बात करते हैं। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमने बात कर रहे थे, बड़ी अमेजिंग बात यह है, क्लैरिटी ये हुई कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ही प्रति होती है, उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारियां अपने आप आती जाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें और जानें कि अगला पड़ाव क्या होगा।
1: जैसे हमने देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट, तो हम हर चीज़ अपने से जोड़कर कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले आए स्व के प्रति हमारी जिम्मेवारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, क्योंकि हमने पहले दिन ही देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट में चार एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, द फोर आर्स दैट वी हैड सेड। सो दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेज। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन, कि जीवन में मेरी अपने प्रति जिम्मेवारियाँ और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य, पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड वो पर्पस को अचीव करने में वैल्यूज ऑफ माय लाइफ। तो वो एक कंपस, क्योंकि एक कंपस नहीं होगा तो जैसे एक दिशाहीन जीवन हो जाता है। बट वंस यू हैव अ कंपस, यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग। सो द कंपस इज द कंपस ऑफ माय वैल्यूज। तो जीवन में चलते चलते अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है मन में, कई बार डिसीशंस लेने में कॉन्फ्लिक्ट होता कि ऐसा करें या ऐसा करें, तो जब डायरेक्शन नहीं पता चल रहा तो अपना कंपस निकालना है। कंपस निकालें और कंपस पर ही डिपेंड करें कि कंपस विल शो मी द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो कंपस पहले तैयार होना चाहिए। एंड दैट कंपस इज द कंपस ऑफ माई वैल्यूज। तो अपनी वैल्यूज पर अगर चल कर डिसीशन लेंगे तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए एटलीस्ट हित में होगा, और जहाँ मेरे हित में होगा ऑटोमेटिकली उसमें सारा कल्याण ही समाया होगा। एंड इट समटाइम्स सीम्स कि जब हम वैल्यूज पर चलते तो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं, इनफैक्ट कुछ ना कुछ लगता कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपस विल ऑलवेज शो मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कि लॉन्ग टर्म ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम सेल्फ को नहीं पहचानते तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर आता है, बिकॉज वी सॉ कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं है तो अंदर से तो हम बहुत सारे जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, यू नो हु एम आई, मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ, बिकॉज आई वॉज या ऑल द लेबल्स जो हमने देखे थे, तो हमें यही नहीं पता चलता कि आखिर मैं कौन हूँ। और अपने को न जानने के कारण सारा दिन में हम कोई ना कोई एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी में रहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द आईज जो अंदर है, वन ऑफ द लेबल्स इज अंडर थ्रेट, यू नो, तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी हमेशा अंदर एक बनी सी रहती है, एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे रिलेशनशिप्स पर आता है।
0: आई थिंक वेरी ट्रू। यू नो, जब हम ये कई सारी चीज़ों में होते हैं, हमें कई बार ये भी हो रहा होता है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूँ, किस लेबल को प्रायोरिटी दूँ, मैं ये देखूँ मैं ये बनूँ या मैं ये बनूँ। इनफैक्ट देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन एवरी टाइम गोइंग इनसाइड।
1: सो देन देयर इज एंग्जाइटी और देयर इज फियर और देयर इज इनसिक्योरिटी, एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विल कम ऑन माई कनेक्शंस एंड माई रिलेशनशिप्स। ऑल माई रिलेशनशिप्स, इफ आई जस्ट यू नो रिवाइंड एंड सी ऑल माई रिलेशनशिप्स टूडे, तो अगर हमारे संबंधों में कहीं भी डिसकनेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आज अगर हम देखें कि हमारे सभी जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कहें एक कनेक्टिविटी, यू नो, एक क्लोजनेस होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने रिलेशनशिप्स में मशीन्स, गैजेट्स और इन सब को रिप्लेस कर दिया है, और ज़्यादातर हमारा रिलेशनशिप अब इनके आधार पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड कितना, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ उतना अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वी रादर प्रेफर टू कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, रादर देन कॉलिंग यू अप एंड सेइंग सॉरी, I would rather just send an SMS. It is so easy. I do not have to call up and say sorry. But the process of actually meeting you and saying sorry would have been what would have got me to do the inner work. Lekin wo phone uthaya, ek SMS banaya sorry aur bhej diya.
0: Acha, ek aur jo problem relationships mein dekhte hain, zyadatar log hum face kar rahe hain, sab kuch theek chal raha hota hai, lekin wo zyada der tak theek nahi chalta hai. वो 10 मिनट, एक घंटा ठीक रहेंगे हम, कोई ना कोई बात, मतलब ज़्यादातर हर रिश्ते में, चाहे वो माँ बेटे के रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई ना कोई बात ऐसी खटकेगी ज़रूर, जो आप अगर ओपनली नहीं भी बात करेंगे, इंटरनली आप उसको ज़रूर लेंगे।
1: तो इंटरनली वही हम देखेंगे आज, इंटरनली ही ज़्यादा वो चल रहा है। वो बात ज़्यादा दूसरे की नहीं है जो मुझे खटकती है, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, और आप जो कहते हैं वो उस डिस्टर्बेंस को ट्रिगर करता है। See, again, we will have to understand it's less about the other person and it's more about me.
0: But in relationships, though, actually, we are always thinking it's about the other person.
1: No, but then that's what we saw the whole series, even in situations. Humne socha it's always about the situation. The situation is also, a relationship is also a situation. Situation matlab vyakti bhi to na. To agar main kahun aapki wajah se like this, but then it's not aapki wajah se. इट्स मेरी अपनी स्थिति क्या है। तो इसलिए व्हेन वी आर एग्जामिनिंग रिलेशनशिप्स आल्सो, इट्स लेस अबाउट अदर पीपल एंड इट्स मोर अबाउट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इनसाइड। सो टुडे बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग वेरी इजीली विद यू, आई कनेक्ट टू यू थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, थ्रू SMS एंड यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ, नॉट दैट इट्स नॉट गुड, नॉट दैट यू नो हमें ये गैजेट्स नहीं यूज करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी के अंदर ही
0: एक किया था ना
1: उससे हम वैसे ही थोड़ा सा कट रहे थे एक दूसरे से, और उनकी वजह से हम इतना ज्यादा उनमें ही यू नो लाइक आज एक दूसरे से बात करने की बजाय वी रादर चैट ऑन द यू नो, यहाँ तक कि हम एक स्ट्रेंजर से ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। आजकल के यूथ दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम जस्ट चैटिंग एंड दे डोंट इवन नो हु दे आर चैटिंग विद, बट कमिंग एंड टॉकिंग टू देयर ओन पेरेंट्स सीम्स टू बी अ चैलेंज। सो समवेयर आई हैव टू से कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई पर्सनैलिटी, ये कहीं ना कहीं मेरा एक इशू है कि मैं अपने पेरेंट्स से या अपने जो क्लोज हैं उनसे मैं बात नहीं कर पा रही जाके, बट आई रादर सिट ऑनलाइन एंड चैट विद अ स्ट्रेंजर। व्हाट डज दिस से अबाउट मी, इट्स नॉट सेइंग अबाउट देम, बट फिर हम जनरली कहेंगे उनके साथ ये, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, एंड कम्प्लीटली पुट द ब्लेम ऑन एवरीवन एल्स।
0: आई नो समबडी ही सेज कि मैं इतना थक जाना चाहता हूँ घर जाते जाते तक कि मैं जाके सो जाऊँ, मुझे किसी को फेस ही ना करना पड़े। And this is like
1: avoiding, हम अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को। बहुत सारे बच्चे भी आज यही कहते हैं कि वी रादर रीच होम जबकि हमारे पेरेंट्स सो चुके हैं, ताकि ना वो कॉन्टैक्ट हो तो ना वो आर्ग्यूमेंट हो, ना मुझे उसको फेस करना पड़े, ना वो मुझे कुछ कहे, ना मुझे सुनना पड़े। तो ये क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं। Then relationships with others, then relationship with myself. इसमें भी तो कहीं उतनी healing नहीं है. I don't know. आज अगर हम किसी से कहें relationship with self, तो they will just look. अपने आप से कौन सा रिश्ता होता है? रिश्ता तो दूसरों से निभाया जाता है. अपने आप से रिश्ता is something that we had not even thought of. के I was just talking in a program and I said, what about spending some time talking to yourself? के सारा दिन में इतने लोगों को पूछते हो क्या हाल है क्या हाल है, एक मिनट रुक के अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं क्या हाल है। एंड देयर वर पीपल एंड दे सेड अपने आप से कैसे पूछा जाता है, मतलब द कॉन्सेप्ट वॉज सो एलियन, लाइक ये औरों को पूछना तो बहुत ईजी है क्या हाल है, ये अपने आप को कौन पूछता है। तो वो ज्यादा उनको लग रहा था कि ये कहीं मतलब पता नहीं कोई अजीब सी बात है।
0: मुझे तो ये रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप शब्द से ही इतनी चिड़ हो चुकी है, क्योंकि हर जगह यही बात किया जाता है। एंड हाउ टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, इफ रिलेशनशिप आर देयर तो आर देयर, उन पर वर्क क्या करना है, यू नो लाइक पीपल आर बिकमिंग सो वेरी ऑफ इट कि हमें नहीं जानना उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो मिलना चाहिए था वो खत्म होता जा रहा है। शायद
1: किससे मिलना चाहिए था,
0: जो रिलेशनशिप्स में हम ढूंढ रहे थे।
1: हाँ, तो फिर अगर हम गलत जगह पर ढूंढेंगे तो और वहां नहीं मिलेगा तो ये गलती किसकी है। अगेन लाइक यू सेड, रिलेशनशिप्स में जो मिलना चाहिए था, रिलेशनशिप्स में मिलना नहीं है कुछ भी।
0: या दिस इज यू नो लाइक
1: इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, वी आर टेकिंग रिलेशनशिप्स ओनली फॉर रिसीविंग, कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, और फिर जहाँ जहाँ ढूंढ रहे हैं, इट्स लाइक अ हाइड एंड सीक गेम गोइंग ऑन।
0: फिर बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर रिलेशनशिप की जरूरत क्या है?
1: एग्जैक्टली, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर रिलेशनशिप में मैं इतना एफर्ट क्यों करूँ, फिर इतना इनके साथ भी एडजस्ट करूँ, ये भी करूँ, टॉलरेट भी करूँ, अगर इनसे कुछ मिलना ही नहीं है मुझे, तो मैं इतना सब क्यों करूँ? तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन, कि मैं अकेले रहूँ एंड आई डू नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद पीपल?
0: नहीं, फिर मैं और लोगों को ढूंढता, अकेले तो मैं रह नहीं सकता।
1: वो और लोग भी तो वैसे ही वाले होंगे आपके। सो हियर द इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन इज कि रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत बहुत बहुत मैटर करते हैं। क्यों मैटर करते हैं? रिलेशनशिप्स में हमें मिलना नहीं है कुछ भी, उस एंगल से नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि एक रिलेशनशिप में ही मेरे पास जो है एनर्जी, चाहे वो प्यार की है, शांति की है, खुशी की है, वो एनर्जी मैं क्रिएट करता हूँ, और जब मैं आपकी तरफ उसको ट्रांसमिट करती हूँ, तब वो पहले मुझे मिलता है।
0: तो मैं महसूस करता हूँ,
1: आई फील इट फर्स्ट,
0: यू नो। अच्छा, रियलाइजेशन ऑफ माई ओन इनर वैल्यू इज थ्रू रिलेशनशिप?
1: यस।
0: ओह यस।
1: सो द एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू एक्सपीरियंस पीस, लव एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीजें तो आई वांट टू एक्सपीरियंस। नाउ आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर देम देयर, गिव, मुझे खुशी चाहिए, आई वांट टू एक्सपीरियंस, देन आई एम नॉट गेटिंग। परमात्मा ने आकर सिर्फ फॉर्मूला चेंज किया, इट्स नॉट आस्क, मुझे एक्सपीरियंस करना है, इट इज गिव, एंड व्हाइल यू आर गिविंग इट विल फ्लो थ्रू यू, एंड द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट
0: इज मी,
1: इज मी। अगर मैं रिलेशनशिप्स में नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, कई बार ऐसे होता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अकेले बैठ जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जीवन कैसी हो जाएगी? क्योंकि जब तक मैं इंटरेक्शन में नहीं आती, तो मुझे मौका नहीं मिलता वो एनर्जी क्रिएट करने का, वो एनर्जी एक्सप्रेस करने का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी एक्सपीरियंस करने का।
0: तो इसीलिए हम जो अब रिलेशनशिप से थके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो सारी नेगेटिविटी कर रहे हैं।
1: तो वो सबसे पहले किसको मिल रही है?
0: मुझे ही मिल रही है। तो एक तो नेगेटिविटी ऑलरेडी है, दूसरा जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ वही नेगेटिविटी और क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम में से हर कोई अब ये चाह रहा है कि बस हम रिश्तों में और नहीं घुसना चाहते, नहीं फंसना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोझ लगने लग गए।
1: वो बोझ इसलिए लगने लग गया क्योंकि हम रॉन्ग एंगल से फॉर्मूला को यूज कर रहे थे। अच्छे से अच्छी चीज़ भी रॉन्ग डायरेक्शन से अगर यूज़ करनी जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो जो जनरल स्टेटमेंट अब है वो ये, रिलेशनशिप्स जस्ट डोंट वर्क, दे डोंट वर्क। अब व्हेन वी आर सेइंग रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि आई एम नॉट गेटिंग,
0: दे डोंट गिव एनीथिंग। नो, बट पीपल आर ओपन अबाउट इट, आई डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम माय रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग इन दैट रिलेशनशिप।
1: सो आज से हमें सिर्फ उस फॉर्मूला को दूसरी तरह से यूज करना है कि रिलेशनशिप्स वॉज नेवर फॉर गेटिंग, इट वॉज नेवर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग।
0: पर ये बिलीफ सिस्टम जो है ये चेंज होने में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो हमारा है, बिकॉज ऑल आर वर्ड्स, यू नो, अगर हम देखें स्टेटमेंट्स, खासकर रिलेशनशिप में, तो हम यही मानते आ रहे हैं कि इस रिश्ते में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है।
1: वो लेकिन जो मिल रहा होता है वो भी कैसे मिल रहा होता है? इफ आई कैन से कि व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड, यू नो, आई वी से दैट फॉर सर्टेन पीपल कि व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी नाइस, इट्स लेस अबाउट द अदर पर्सन, इट्स बिकॉज आई फील वेरी नाइस व्हाइल आई एम विद यू। तो इफ आई एम फीलिंग वेरी नाइस व्हाइल आई एम विद यू, इसका मतलब जब मैं आपके साथ हूँ, सो आई एम क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड दिस राइट काइंड ऑफ एनर्जी, वेदर इट्स लव और प्योरिटी और व्हाटएवर, दिस मेक्स मी फील गुड। बट मुझे ये एहसास नहीं आ रहा कि ये एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ बैठने से ये एनर्जी मुझे आ रही है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज आपके साथ बैठने से ये एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ।
0: लेकिन मैं बाकियों के साथ क्यों नहीं फिक्र
1: तो कर सकती हूँ ना, जिस दिन ये रियलाइज होगा कि मैं कर रही हूँ,
0: मतलब मैं आपके साथ बैठते हुए जैसा फील कर रही हूँ मैं हर एक के साथ कर सकती हूँ।
1: जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ आई परसीव देम, इट्स जस्ट दैट मैंने यहाँ पर एक लेबल बना दिया, कनुप्रिया इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो वो मेरा लेबल फिट है। अब कईयों के लिए मैंने लेबल फिट कर दिया कि
0: बहुत बुरा है,
1: क्या तो उनके साथ बैठ कर आई डोंट क्रिएट द राइट एनर्जी। क्रिएशन सारी यहाँ हो रही है डिपेंडिंग ऑन हाउ आई सी यू, एंड देन आई से, बट देन वॉट हैपन्स इज बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इट देयर, तो मैं आपके ऊपर क्लिंग ऑन कर देती हूँ कि व्हेन कैन आई मीट यू, व्हेन कैन आई टॉक टू यू. क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे बात करती हूँ या आपके साथ बैठती हूँ आई फील गुड. तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी क्या बन गई कि मुझे आपकी जरूरत है टू फील गुड. एंड दैट्स वेयर द होल थिंग विल स्टार्ट कोलैप्सिंग.
0: बट व्हेन दैट पर्सन इज नॉट देयर वी रियली डोंट फील गुड.
1: या सो व्हाई? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दैट थॉट ना. जब मैंने एक थॉट क्रिएट कर दिया, दिस इज लाइक एनी अदर एडिक्शन. ये कोई भी एक एडिक्शन की तरह है. कॉफी पियेंगे आई विल फील गुड, चाय पीते हैं आई फील गुड, नहीं पी मुझे डिस्टर्बेंस होता है. चाय एंड कॉफी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. इट्स माई अडिक्शन टू दैट पर्टिक्युलर स्टिम्युलेंट. सिमिलरली इट्स माई अडिक्शन और अटैचमेंट्स टू पर्टिक्युलर पीपल. सो आई एम जस्ट बींग एबल टू क्रिएट दैट एनर्जी व्हाइल आई एम विद यू. बट इफ आई अंडरस्टैंड दैट मैं क्रिएट कर रही हूँ, सामने वाला नहीं दे रहा है. मैं क्रिएट कर रही हूँ, वो क्रिएट करके मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, लेकिन ट्रांसमिट करते समय पहले किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है. एंड आई फील वेरी गुड एंड आई से यस, दिस इज द पर्सन आई नीड, दिस पर्सन. लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब मुझे ये रियलाइजेशन नहीं रहती कि ये क्रिएशन मेरी है, तो मेरी वो जो पावर टू क्रिएट है उसकी अवेयरनेस नहीं होने के कारण आई अगेन स्टार्ट फीलिंग दैट इट इज कमिंग फ्रॉम हियर. एंड अगेन नाउ आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर. एंड फॉर अभी सपोज आई एम नॉट फीलिंग, सपोज आई एम इन पेन एंड आई गो इन टू माई सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल एंड आई कम टू यू और यू से समथिंग विच आई डोंट लाइक और फिट्स इन माई एंड देन आई स्टार्ट सेइंग अब तो मुझसे आपसे वो वाला प्यार नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था.
0: And then I feel that I don't get the love.
1: Yeah. And then I start saying, you have changed. And I'm not getting that anymore with you. पहले आप जो मुझे रिस्पेक्ट देते थे, पहले आप जो मुझे प्यार देते थे, पहले आपसे मिलकर जो मुझे खुशी मिलती थी, it's not coming. What I am not realizing is, right now I am going through a low phase. वो नहीं बदले हैं, वो वैसे ही हैं. I am going through
0: a पहले भी तो वो कुछ नहीं कर रहे थे.
1: Exactly.
0: Okay.
1: And जैसे अभी वो कर रहे हैं, we are not saying कि जो सामने वाला है, that person is always constant. He and she is going to go through their ups and downs and lows and highs. लेकिन the question is, who is creating the energy? I am creating the energy. तो अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन हम इस अवेयरनेस के साथ चलें कि relationships के अंदर जो flow of energy है वो ऐसे नहीं पहले ऐसे है, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑटोमैटिकली कि व्हाट आई एम गिविंग यू पहले मुझे मिलेगा एंड देन व्हाट यू गेट फ्रॉम मी व्हाट यू सेंड बैक विल आल्सो बी
0: सिमिलर.
1: तो इसलिए फिर मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगता है क्योंकि जब पहले मैं आपको देती हूँ एंड फिर ऑटोमैटिकली क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा तो है कि जो एनर्जी फ्लो होगी वही एनर्जी वापस मिलेगी. तो इट्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग. दिस इज द फॉर्मूला, गिव एंड receive. But we thought take and get. Keep on. Mera kuch role hai us relationship mein? That I didn't know. It was only take, take, take, take. To phir wo kya ho gaya? Aaj kisi se hum puchhe what
0: take,
1: is...
0: Take, take, take aur uske liye main karti thi. See, karm to kar rahi thi. See, agar again, ye nahi mujhe pata tha ki kaun si energy flow kar rahi hai, kya ho raha hai mere saath. Lekin jaise hi jinse main prem karti hu, jo bhi hai, chahe mera baby bacha hai ya koi bhi hai, उनके होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं बहुत सारी चीजें कर्म करूंगी उनके लिए.
1: वो तो आउटसाइड हो गया.
0: हाँ, पर मेरे लिए तो वही इम्पोर्टेंट था तो वो मैं कर्म करती रही और उसके बाद अगर उन वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा वो कर्म करने के बाद, तब मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और फिर आप मेरे लिए नहीं कर.
1: या सो दैट विल बिकम एक्सपेक्टेशंस कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने इन रिटर्न क्या किया. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एटलीस्ट इन टूडेज टाइम, अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से मेंटेन करके चलना चाहते हैं एंड मोर इम्पोर्टेंट हम खुश रहना चाहते हैं, तो कितने लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए? हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक?
0: आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो अब और नो वन. मैक्सिमम लोग ये बोलते भी हैं कि हमारे जीरो एक्सपेक्टेशंस.
1: जीरो एक्सपेक्ट वो बोलते हैं.
0: हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते.
1: That's not in the negative sense. कि उससे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते. It's not like that. But no expectations means कि you give for the feeling of you're getting it while it's going. अब वहाँ से आता है या नहीं, don't think about it. हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देने में मुझे अच्छा लगता है. लेट्स पुट दैट एज आर बेंचमार्क कि आपको जो कुछ देने में अच्छा लगता है अगर उसको
0: Actually,
1: हम फिजिकल रूप पर
0: दें, हमें जो चाहिए वो हम देना शुरू कर दें तो वो हमें तो मिलेगा.
1: एब्सोल्युटली परमात्मा हमेशा कहते हमें कि तुम्हें जो चाहिए ना पहले तुम दो. सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, रिस्पेक्ट दो, बिकॉज यू विल फर्स्ट बी गिविंग इट टू योर सेल्फ. हाउ डू वी वर्क विद जीरो एक्सपेक्टेशंस? इट्स अगर फिजिकल रूप से देखें, हम किसी को एक गिफ्ट देते हैं. अभी आज क्या होता, मैंने आपको ये गिफ्ट दिया, आपने मुझे क्या दिया? या मैंने जो आपको गिफ्ट दिया वो तो 2000 का था, आपने मुझे जो गिफ्ट दिया वो वाई डिड वी गिव, वर वी गिविंग फॉर द विद द इंटेंशन दैट नाउ इन रिटर्न इफ आई हैव गिवन अ गिफ्ट ऑफ 2000 आई शुड गेट अ गिफ्ट ऑफ 3000 इन रिटर्न? नो. सेम जो ये गिफ्ट का फ्लो है, अगर आपको गिफ्ट देना है आप दीजिए, जितने का देना है उतने का दीजिए, जितना देने से आपको कंफर्टेबल लगता है उतना दीजिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि यू आर टू गेट अ गिफ्ट इन रिटर्न. अगर वो देने में इट मेक्स यू फील गुड एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ एनर्जी, ये गिफ्ट तो ठीक है, इजी है.
0: नो, आई कैन मेक इट आउट, यू नो, आजकल बर्थडेज में देयर इज अ रिटर्न गिफ्ट थिंग.
1: वो तो ठीक है ना, दैट्स आई टुक एन एग्जांपल बिकॉज फिजिकल करने से इट बिकम्स इजीियर टू अंडरस्टैंड.
0: कि बच्चा पहले जहां पे भी अपने किसी भी फ्रेंड के पास जा रहा है, नो इट हैज चेंज्ड. Suddenly I can make it out, you know. उसके मन में पहले ही होता है कि return gift क्या होगा. You know, somewhere वो जो expectation है, जो एक छोटी सी चीज़ भी, कहीं ना कहीं हमने पूरे thought process में किया हुआ है.
1: So we need to give. अब जो आप संबंधों में कल चलें, उतना दें जितना देते हुए it's your capacity. You know, आज हम क्या कहते हैं, मैंने इतना किया जितना मैं कर सकती थी उससे भी कई गुना ज़्यादा किया. क्यों किया? अगर आपसे नहीं हो रहा आप मत करो, लेकिन इसलिए नहीं करो क्योंकि सामने वाले ने भी मुझे उतना देना है. वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग इन आर रिलेशनशिप्स विद द प्रोसेस ऑफ गिविंग. उतना देना है जितना आई कैन गिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. आपके पास जितनी खुशी है, जितना प्यार है, जितनी शांति है, आप उसको देते जाएं. जितना देंगे उतना आपके अंदर
0: वही तो मैं कह रही हूं, राउंड. इनफैक्ट अब मुझे जितना चाहिए मैं उतना देना शुरू करूं.
1: एब्सोल्युटली, नॉट विद द एक्सपेक्टेशन कि आप मुझे इन रिटर्न क्या देंगे.
0: नहीं, मैं ये मान के ही चलूं ना फिर कि जितना मैं दे रही हूँ वो मेरा सारा मुझसे ही जा रहा है.
1: एब्सोल्युटली, मैं ये समझ कर चलूं कि जब मैं दे रही हूँ तभी मुझे मिल रहा है. अब मुझे कब मिलेगा, किससे मिलेगा, नहीं, मिलने वाला पार्ट हो गया देते टाइम. दिस इज लाइक अ गिफ्ट के जब हम वो दे रहे हैं वो गिफ्ट पहले मुझे मिल रहा है, फुल स्टॉप, मिल गया.
0: आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव यूज्ड इट एंड देन आई हैव गिवन
1: इट, एंड बाय गिविंग इट इट इंक्रीजेस इन मी. जितना हम खुशी से, हमने पहले भी देखा वही कर्म है, शोर मचा के भी हो सकता है, शांति से भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है. जितना उसको प्यार से शांति से करेंगे वो शांति की शक्ति हमारे अंदर
0: और
1: बढ़ती जाएगी. तो वो वहां से नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरे अंदर क्रिएट करने से वो अपने आप बढ़ती जाएगी. सो रिलेशनशिप्स मीन्स गिविंग एंड गिविंग. रिसीविंग अपने आप हो रहा है,
0: रिसीविंग पहले. इनफैक्ट अगर हम ये थॉट प्रोसेस लें, अगर हम करके देखें, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट आउट.
1: इट इज लाइक दैट. वंस आई जस्ट, बिकॉज एनर्जी फ्लो तो ऐसे ही कर रही है. अब क्या हो रहा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, दिस इज अ नेगेटिव थॉट, इट्स अ पेनफुल थॉट. अब मैं आपको मुझे चाहिए के एंगल से जब रिश्ते में आती हूँ तो मैं आपको कौन सी एनर्जी दे रही हूँ? नेगेटिव. तो मतलब मुझे क्या मिला,
0: कि ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे,
1: तो मुझे
0: मुझसे कैसे बात करेंगे, मुझसे कैसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे,
1: तो मुझे क्या मिला,
0: पूरा नेगेटिविटी.
1: मैंने सोचा किसने दिया मुझे,
0: उन्होंने दिया. ओह यस, इज अ फॉर्मूला विच वी नीड्स टू वर्क ऑन. वेरी गुड सिस्टर शिवानी. हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों को देखने का एक नया अंदाज हमारे सामने है कि कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है, और हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तर्क की कसौटी पे अगर हम देखते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो इट रियली वर्क्स, यू नो, एनर्जी का फ्लो अगर हम देखें. लेकिन यही है कि अपने अनुभव को, अपने अनुभव से बड़ी और कोई कसौटी नहीं हो सकती.
1: We'll explore this more now.
0: इसको हम अपने आने वाली घड़ियों में ज़रूर करेंगे. आज की इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच.
1: ओम
0: शांति. देखना यही है कि क्या हमें चाहिए. अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें प्यार चाहिए, खासकर रिश्तों में तो हम प्यार तलाश रहे होते हैं, कई बार खुशी तलाश रहे होते हैं, कई बार शांति तलाश रहे होते हैं, ये फॉर्मूला आप अपना के देखें कि मुझे चाहिए, सपोज अगर अपने आप से हम बात करें और कहें कि इस रिश्ते में मुझे प्यार चाहिए, तो उतना ही प्यार देने की कोशिश करें, देना शुरू कर दें। ये अनुभव एक दिन के लिए करके देखें तो क्या मैं प्यार का अनुभव कर रही हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो मुझे देंगे, या ये कहें कि उनसे ही प्यार मुझे मिलेगा। मैं जब प्यार अपने आप को देना, उनको देना शुरू करती हूँ, किसी को भी देती हूँ, वो मुझसे होकर गुजर रहा है। ये थॉट अगर हम अपने साथ रखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर अपने अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करें। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी साहब का अपना प्रोग्राम है, हर रोज़ हमारे साथ कुछ नया हो रहा है, कुछ नया घट रहा है। नए अंदाज से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा था, अब रिश्तों को देख रहे हैं। इन्हें एक्सप्लोर ज़रूर करें। कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई अनुभव है आपका, हमारे साथ शेयर करें, या तो फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0-9873-666-555, 0-9999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि जो भी बात हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। तो ज़रूर इन सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, ताकि वो खुशी, वो पीस, वो शांति, वो प्रेम जिसकी मैं अधिकारी हूँ, हम सब अधिकारी हैं, हम अनुभव कर पाएं। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लेते हैं आपसे विदा। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सोनेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चलिए घर चलिए, आपकी शराब की लत के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मेरे गहने कपड़े घर सब कुछ बिक गया, फिर भी आपको अक्ल नहीं आई।
1: अकल बता दिया।

आह, इस बीड़ी की लत के कारण तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। रोज 5 से 10 बंडल बीड़ी पी जाता हूँ। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया है। आज की स्थिति यह है कि मुझसे ठीक से खाना नहीं खाया जाता, गैस पास नहीं होती और मुझे दिन भर में ही कितनी बार लोटा लेकर दौड़ना पड़ता है।

आह आह, इस जर्दे के कारण तो मेरे गालों में बड़े बड़े छाले हो गए हैं, रातों की नींद हराम हो गई, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप हैं, यानी कि जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और तभी जिंदगी मुश्किल लग रही थी। हमने ये देखा कि जो थॉट्स, जो विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, विचारों के साथ जो फीलिंग्स हम क्रिएट कर रही हैं, वो हमारे बॉडी के कितने हिस्सों पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस कहकर अभी तक हमने अपनी दिनचर्या को, अपनी जो जिंदगी जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया था, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। आज जानते हैं कि अगर बीमारियां हैं तो क्या थॉट्स पर काम करने से, फीलिंग्स पर काम करने से हीलिंग संभव है। हमारे साथ हर बार की तरह है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बहुत बड़ा, हमें एक कहा जाए एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ ये रियलाइजेशन कि ये जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेरी बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं। अब रिवर्सल की बात करते हैं, पिछली बार भी मैंने बात की थी, लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये पूछें क्या अब जो बीमारी है, जो आ गई है, चाहे वो बच्चों में ही है या बड़ों में या बुजुर्गों में भी, वो थॉट पैटर्न से या फीलिंग को चेंज करके हम बदल पाएंगे?
1: डेफिनेटली बदल पाएंगे। और आज हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं, आम व्यक्ति जो रिसर्च को नहीं जानता है वह भी जो डॉक्टर कहते हैं उसे स्वीकार करता है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है, एक रिसर्च की भी जिससे बहुत लोगों पर भी इफेक्ट होगी। कार्ल ओ साइमोंटन अमेरिकन आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनकी पत्नी साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने ये बातें सुनी थी कि इमोशंस की इफेक्ट होती है हेल्थ पर, इमोशंस के द्वारा हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए हम एक दो एग्जांपल दे तो डॉक्टर स्वीकार नहीं करते,
0: साइंटिफिक अगर हम बता पाएंगे।
1: उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने पेशेंट होने चाहिए, उन पर क्या क्या टेस्ट करनी आवश्यक है। ऐसा उन्होंने करीब 122 कैंसर के पेशेंट्स थे उनको ठीक से चुना और उनके ऊपर ही रिसर्च की। बल्कि पूरी एक टोटल रिसर्च थी जिसमें सिर्फ इमोशंस की ही बात नहीं थी, उनको वेजिटेरियन डाइट भी दिया गया जिसमें फाइबर ज़्यादा थे, फ्रूट्स थे, ऐसे ही एक्सरसाइज करने को भी कहा, और साथ साथ उनका मेन फोकस इन इमोशंस पर था कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, उसमें उन्हें विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया, क्योंकि बुद्धि है वो चित्र की भाषा समझती है। तो एक एक मरीज के साथ उन्होंने काम किया, उनको चित्र बनाना सिखाया कि किस प्रकार से तुम इस बीमारी को रिवर्सल करो, थॉट्स भी बताए कि कौन से विचार करो कि जिसके द्वारा भी आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करीब 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट सामने आए तो सचमुच अमेजिंग थे। ये देखा गया कि 122 में से करीब 20 पेशेंट्स का कैंसर समाप्त हो गया, जो बाय चांस नहीं हो सकता है।
0: दवाई साथ साथ चल रही थी,
1: जो नॉर्मल दवाइयां थी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भी कीमोथेरेपी से या ऑपरेशन से कोई उनका सभी का कैंसर इतने परसेंटेज में ठीक नहीं हो सकता। अगर होता है तो लाख में एकाध पेशेंट हो सकता है कि जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि भी अचानक कैंसर खत्म हो गया, परंतु 122 में से 20 पेशेंट का बिल्कुल कैंसर से वो रिकवर हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और करीब 45 पेशेंट्स थे जिनका कैंसर कम हुआ, समझो 2 इंच था तो 1 इंच हो गया, जो भी आश्चर्यकारक था। और जो दूसरे मरीज थे, भले उनकी मृत्यु हुई परंतु डॉक्टर ने जो कहा था उससे वो 2 गुना जी गए। डॉक्टर ने कहा था कि 6 मास ही जिंदा रहोगे, वो 1 साल जिंदा रहे। और सभी मरीजों ने यह कहा कि पहले तो मर मर के जी रहे थे, कैंसर मतलब ही कैंसर, कि भी अभी हम जीने वाले नहीं हैं, परंतु जब ये प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, इन बातों को, इमोशंस को अच्छे से समझा, तो खुशी खुशी जीने लगे, हमारा आनंद का लेवल था वो काफी बढ़
0: गया। तो 1 साल कम से कम उनका खुशी वाला गुजरा।
1: हाँ, तो नो, दिस इज एन रियली साइंटिफिक रिसर्च विच प्रूव्स।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें तो यहाँ जो कुछ परसेंट डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कम्प्लीटली रिकवर कर गए, जो शायद अपने इमोशंस पे, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि अपने थॉट्स या इमोशंस को रिवर्स करने में भी तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है.
1: तो सब नहीं कर पाएंगे.
0: इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. हम कितने टाइम से अवेकनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स पर काम कर पाए, और हर बार हमें जो है चैलेंजेस आते हैं,
2: लेकिन हर बार हमें सक्सेस भी मिल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड उसका कभी कम कभी ज्यादा. लेकिन अगर सक्सेस मिल रही है तो एक बिलीफ सिस्टम तो पक्का हो जाए कि ये पॉसिबल है. यू नो, अब तक जो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा या मैं नहीं चेंज कर रहा, आज अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सक्सेस मिल रही है, चाहे ये हो सकता है दो सिचुएशंस में मिल रही है, पांच में फेल हो रहे हैं, लेकिन दो में मिलना मतलब बाकी पांच में भी मिल सकती है. दैट इट सेल्फ विल मोटिवेट मी. यू नो, सेल्फ मोटिवेशन से ही हम इस जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं. एंड जैसे ही थोड़ी प्राप्ति होती है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेटर होता है कि अच्छा आज मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने तो कैसे बात की थी मेरे से. एंड देन मेनी पीपल से पहले जैसा अगर मैं होता तो मैं कर देता, आज मैंने नहीं किया, इसका मतलब सारा चेंज किसने लाया? मैंने लाया, वो तो वैसे ही है, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. देन इफ आई कैन डू इट वंस, आई कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ इट्स ओनली अबाउट अटेंशन. तो ईच वन इज ऑन द जर्नी, लेकिन जो उसको जितना अटेंशन से कर रहा है उसको उतना रिजल्ट मिलेगा.
1: एंड दिस परसेंटेज बहुत बड़ा है, जैसे 22 लोग कहे तो अप्रोक्सीमेटली 15% हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात है. अगर 15% लोग कैंसर को क्योर कर सके तो भी वो बहुत बड़ी बात. बल उसके लिए सिस्टमेटिकली अपने इमोशंस पर काम करना होगा, कोई मैजिक नहीं है.
0: तो अब हम बात करें कि काम कैसे करना है, बिकॉज बार बार हम यही कहते हैं कि अनुभव. और इसमें तो जैसे हमने रिश्तों में देखा था, रिश्तों में ही हमने एकदम से देखा फर्क आता हुआ दिखा. मतलब मैंने गुड फील किया, मैंने अगर मेरे साथ कोई खराब रिश्ता चल रहा था, मैंने अगर वो नहीं क्रिएट किए थे पहले, तो धीरे धीरे ये भी दिखा महीने दो महीने के अंदर अंदर कि वो रिश्ता, वो लोग भी परिवर्तित होते गए.
2: एक्चुअली वो लोग परिवर्तित

0: हार्ट ही प्रॉब्लम है, किडनीज ही खराब है, यू नो, या पेट ही खराब है.
1: नहीं, परफेक्ट ना. आई विल टेल यू इन डिटेल, थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन से बात करना सीखना चाहिए. मैं पूरा ये कराता हूँ.
0: अच्छा,
1: है ना, ऑर्गन से बात करो. जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो स्वीकार करो, बिकाओ हार्ट आई एम सॉरी, मैंने तेरे पे बहुत फोर्स डाला, नहीं तेरे पे मैंने अनड्यू नेगेटिव अत्याचार किया, कि भी गलत गलत खा के, एक्सरसाइज नहीं करके, इमोशंस ला करके, हार्ट को बोलो आई एम सॉरी, प्लीज हील मी. इट रियली वर्क्स, एंड रियली वी हैव सीन रिवर्सल टेकिंग प्लेस.
0: जैसे वो कहते हैं कि प्लांट्स को करते हैं,
2: हाँ, जैसे प्लांट्स के साथ जो प्यार से बात करेगा. पर इस केस में थोड़ा जैसे ही आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, यू नो, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, एक्चुअली यू आर फीलिंग बेटर ना, यू नो. अब आपसे अगर मैं सॉरी कहूँ, आप कितना टाइम लेंगे उस बात के लिए, वो तो आपकी प्रॉब्लम.
0: मैं तो अच्छा,
2: लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, तो आई फ्री माई सेल्फ ऑफ गिल्ट, ऑफ द बर्डन. तो कितनी सारी इमोशंस मैंने रिलीव कर लिया, दैट वाज द पर्पस, कि अपने इमोशंस को क्लीन कर लो तो प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी.
1: और वो एटम्स भी चेंज हो रहे हैं ना. नहीं, वाटर क्रिस्टल्स का हम सब ने सुना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, इसी पानी के ऊपर इफेक्ट होती है. तो 90% इज वाटर ओनली. तो जब आप बात करते अपने आप से, तो वो जो वाटर क्रिस्टल्स पर चेंज होगा, तो ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होगी, साथ साथ हर एटम पर भी इफेक्ट होगी, और भी जो सूक्ष्म अणु है, जो तत्व है, उन पर भी इफेक्ट होगी, और सचमुच हीलिंग हो सकती है.
0: तो आप कैसे प्रोसेस करें?
1: ये तो छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, सभी एक्सेप्ट शायद न भी करे, लेकिन तीन लेवल पर काम करना चाहिए. एक तो है अपने विचारों पर कार्य करना है, दूसरा इमोशंस पर कार्य करना है, और तीसरा पिक्चराइजेशन पर, विजुअलाइजेशन पर. क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह पिक्चर्स की भाषा को समझती है. तो पहले देखें कि थॉट्स पर क्या कार्य करें. तो थॉट्स तो ऐसे हो कि जो मेरे इमोशंस है उसके अनुरूप. फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि शांति की आवश्यकता है लंग्स को, तो हम पीस के विचार करें. ये सिंपल भी, कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ पीस, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है. अलग अलग रूप से शांति की गहराई में जाने की कोशिश करिए. यह भी एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि परम धाम जो मुझ आत्मा का घर है, वही शांति धाम है, वहां संपूर्ण शांति है. ऐसे ही समझो कि हार्ट का प्रॉब्लम है, तो प्यार के विचार करो
0: कि परमात्मा मुझसे इतना प्रेम करता है.
1: ये भी, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप तो हूं ही, परंतु परमात्मा मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे बिना कोई शर्त के प्यार दे रहे हैं, और मुझे सचमुच सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से ही मिल रहा है. भल मैं अपने संबंधों को भी इंप्रूव कर रहा हूं, परंतु जो एक्सपेक्टेशन है वो प्यार की परमात्मा से ही है. कोई संबंधों से मैं प्यार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ. ऐसे ही पेट की प्रॉब्लम है, तो सुख के विचार करो. तो जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, वह सातों गुण अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाए. एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भी सातों गुणों का भी अनुभव करो, क्योंकि सबको जरूरत तो है ही. और फिर एक स्पेसिफिक जो बीमारी है उसके अनुरूप उस गुण का गहराई से अनुभव करो, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे.
0: और जैसे आपने कहा था कि अगर डायबिटीज की बात है या थायराइड की बात है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो उससे सिक्रीशन से ज्यादा या कम से तब हो रहे हैं, तो उसमें कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें?
1: हाँ, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमने देखा कि डायबिटीज का लोभ से संबंध हो सकता है, तो बोल उसके अनुरूप भी, कहीं एक्यूमुलेट करने की तो मेरे में बात नहीं है, मैं टोटल इससे फ्री हो जाऊं. और मैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको जनरल भी बताया, वह बिल्कुल सत्य है. वह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आनंद चाहिए. आज है ना, जो विकृतियां भी इतनी बड़ी है, वो क्यों? क्योंकि लगता है कि भी विकारों से आनंद मिल रहा है, परंतु वो तो एक्साइटमेंट है, और वहां भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही संबंध है. अगर योग के अभ्यास से सच्चा आनंद मिलने लगे, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मनी में कार्य करने लगेगी.
0: तो सर शिवानी, ये जो अभी बोला, मेडिटेशन ही वो माध्यम लगता है जो हम इन सारे सातों जो गुण हैं उन्हें अनुभव कर सकते हैं. तो मॉर्निंग इवनिंग जो बैठते हैं, उसमें स्पेस

0: स्पेसिफिक हम इन गुणों पर फोकस
1: करें. आई थिंक हर रोज हम एक गुण को ले सकते हैं, 7 days ऑफ द वीक, 7 qualities, क्योंकि उस गुण को सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये तो अब जैसे मंत्र की तरह तो है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल. उस क्वालिटी को लेना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और उस एनर्जी को अपनी बॉडी को भी देना है. और 5-10 मिनट ही हम बैठते हैं अभी शुरू शुरू में, वी आर नॉट एबल टू सिट मोर देन दैट. तो एक क्वालिटी को ले लेते हैं, एक क्वालिटी हर रोज के लिए, और उस थॉट को सिर्फ बोले नहीं लेकिन उसको बिलीव करें, बिकॉज परमात्मा ने हमें बताया है कि दिस इज माई ट्रू नेचर, एंड मुझे भी मालूम है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, सो येस दैन दिस इज माई ट्रू नेचर. क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम अ पीसफुल सोल, मतलब मैं तो सारा दिन इतना परेशान और गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुल सोल हूँ. तो ये अपने आप को कहने से Am I cheating myself?
0: झूठ तो नहीं बोला, यही मैं कहना चाहती
1: थी. क्या मैं अपने आप को एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल? तो वो झूठ नहीं है, वो एक सत्यता है जो भूल चुकी है. एक किसी को अगर अपनी याददाश्त चली जाए तो उसको कैसे याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो? तो उसको बार बार यही कहा जाता है ना, आपको पता है आप ये हो, आप ये हो. तो अब ये मैं भूल गई हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ही अपने आप को अब याद दिलाना है. दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, कि मेडिटेशन से दिस इज वॉट वी आर डूइंग, रिमाइंडिंग आर सेल्फ्स. और उससे क्या हो रहा है, वो थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है, एंड बार बार वो थॉट पैटर्न क्रिएट होने से मेरा संस्कार जो है ओरिजिनल, इट इज री इमर्जिंग. तो आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चार्ट कि हर रोज एक क्वालिटी पे, और फिर अगर विशेष कोई बीमारी है तो उस पर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन रख के. बट ये कितना अच्छा लग रहा है कि अगर हम 7 qualities के ऊपर वर्क करें तो फिजिकली द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी.
2: आत्मा को पता है कि भी कौन सी बात, कौन से इमोशन के कारण मुझे बीमारी हुई है, भल हम जागृत रूप से नहीं जानते, और फिर उस पर गहराई से कार्य करो
0: कि वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस है कि मैं वो फीलिंग क्रिएट करता हूँ.
2: या तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, बीमारियों के पीछे एक्सपीरियंस भी है. क्योंकि आत्मा में, जैसे भी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मैं समझता हूँ आत्मा में भी बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ भी फोल्डर्स भी है. आत्मा में कई फोल्डर्स है कि भी जो फोल्डर में भी फाइल्स है, तो भी कहीं ऐसा फोल्डर है जहाँ वो नेगेटिव बात है कि भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, समझो वो है आपके अंदर फोल्डर. और वो फोल्डर के अंदर और भी चीजें हैं और वो डिस्टर्ब कर रहा है. और कभी भी अचानक जब भी ऐसी कोई आप घटना देखते हैं और कुछ होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस आपके शरीर के ऑर्गन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा. तब आवश्यकता है उसको डिलीट करने की. अगर उससे हमने कंप्लीटली डिलीट कर दिया तो वो बीमारी की इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी. तो एक तो उसे समझे, एक्सेप्ट करे, उस फोल्डर को ओपन भी करो, यह है. और फिर योग के माध्यम से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, भले पूरा प्रोसेस है लेकिन अच्छे से करो तो उस फोल्डर को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं.
0: डॉक्टर साहब, एक बात आपने कहा कि 3 चीजें आपने कही थी. 1 is थॉट का,
2: थॉट लेवल effect. पर
0: हाँ. एक है आपने कहा फीलिंग के लेवल पर, तीसरा आपने कहा विजुलाइज, वो कैसे करना है?
2: पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर्स आर वेरी वेरी डीप. कि पिक्चर्स कैसे क्रिएट करने के, कि जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं. साइमन टॉन ने भी यही किया कि उन पेशेंट्स को समझाया कि भाई ये बीमारी आपकी कैसे होती है. जैसे कैंसर के लिए उन्होंने बहुत एक सरल सी बात बताई कि जो कैंसर सेल्स है आपके, वो चूहे जैसे है.
0: अच्छा.
2: कि भी नहीं, लाखों करोड़ों चूहे अंदर इकट्ठे हो गए.
0: आई मां, सो वी मतलब विजुलाइज दैट.
2: या नो, ही जस्ट एक्सप्लेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. और आपकी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है. वो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बिल्ली जैसे, जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे वो व्हाइट ब्लड सेल्स में पावर है. जब व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से पास होते हैं, दे आर बिकमिंग सो पावरफुल कि कुछ वो कैंसर सेल्स को समाप्त कर देते हैं. और डे बाय डे आपका वो कैंसर छोटा छोटा छोटा होता जा रहा है,
0: तो चूहों की जो तादाद है वो कम
2: वो कम
0: होती जा
2: कम
0: रही।
2: कम
0: ओहो,
2: होने
0: ये विजुअलाइज करना कि एक बिल्ली चूहों को खा रही है।
2: इट्स समथिंग एल्स,
1: नहीं, ये प्रोबेबली विजुअलाइज द व्हाइट ब्लड सेल ईटिंग द
2: कैंसर, दैट्स ओके,
1: ट्यूमर है,
0: यू नो व्हाइट से ब्लैक को खाता हुआ।
1: हाँ, ये ट्यूमर है। आप अपने ट्यूमर को विजुअलाइज कर लो और ये विजुअलाइज करो कि माय ब्लड सेल्स आर ईटिंग अप दैट ट्यूमर। सो बी पीपल टू डू विजुअलाइज,
2: भी कहा जैसे आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा था कि नॉट कंफर्टेबल नो विजुअलाइजिंग दिस, तो ऐसे कहीं हो सकते कि भी एक विजुअलाइजेशन के लिए व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है। कार्लो साइमोंटोन ने भी यही कहा कि आप अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, यहां तक कि हर एक पेशेंट को कहा आप चित्र भी बनाइए, भले आप चित्रकार नहीं भी है परंतु आप अपना कुछ भी सिंपल लाइन डायग्राम भी बनाइए और उसको बार बार रिपीट करो।
1: एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कहा कि आप विजुअलाइज करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब वीडियो गेम में आप कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हो, मुझे मारना है मुझे मारना, यू नो हाउ दे प्ले दैट, ही सेज देयर आर दीज हु आर रोमिंग अराउंड इन योर बॉडी एंड यू बिकम एंड प्ले द वीडियो गेम विद योर थॉट्स, यू हैव टू किल ऑल दीज पीपल। द चाइल्ड केम आउट ऑफ हिज इलनेस।
2: या आई वंडर, नो इट्स दिस इज अ केस ऑफ ब्रेन कैंसर, ये जो केस
1: ये वीडियो गेम खेला क्योंकि वो बच्चा था, तो बच्चे को कैसी चीज दे एंड वो ऑब्सेशन बन जाता है ना आपके साथ वीडियो, ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट थिंग,
0: आपको तो विन करना ही है, यू नो यू हैव टू,
1: ही वाज एबल टू कम ओवर दैट प्रॉब्लम।
2: और इवन देखो ये पूरा रियल स्टोरी शिवानी बंजो बता रहे हैं ना, जो बच्चे को ब्रेन में कैंसर था और उसको ये कहा कि अभी तुमको उसको मारना है, शूट करना है, और कहा कि बच्चे के लिए इजी है कि भी तुम वीडियो गेम खेलो, सबको खत्म करो। वो बच्चे ने सचमुच किया, वो बड़ा अच्छा उसका विजुअलाइजेशन था, वो परफेक्ट करता था। एक मास के बाद उसने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मुझे लगता है मेरे सब कैंसर सेल्स मर गए, और फिर जाके उसका स्कैनिंग किया तो इट वाज क्लियर। बच्चे को करते करते भी उसको कॉन्फिडेंस
0: अच्छा
2: भी हो रहा है सचमुच।
0: अच्छा था तो वो करा,
2: मे बी विजुअलाइजेशन।
0: यहां हम बड़े हैं तो हमें बार बार ये डाउट होता है कि हम अपने आप पे झूठ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग, इतनी बड़ी बीमारी है और हम ऐसे एक्टिंग करके कर सकते हैं क्या। ये हमें अपनी ताकत शायद नहीं
2: मालूम,
1: पावर ऑफ द माइंड नहीं मालूम,
0: इट लुक्स कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे खेल खेल रहे हैं क्या।
2: उसमें भी उन्होंने सचमुच देखा भी ये सब पेशेंट्स में कि भी उन्होंने अपने आप चित्र भी निर्माण किए और फिर प्रैक्टिस की, कईयों के चित्र में ही आता था कि इट इज नॉट पॉसिबल,
0: है ना।
2: जैसे साइमोंटोन अपनी बुक में लिखते हैं कि भी ये एक पेशेंट को चित्र बनाने के लिए, तो उसने चित्र बनाया कि कैंसर सेल्स है ना वो राक्षस जैसे,
0: तो
2: और मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स छोटे छोटे है ना, कि भाई वो उससे लड़ रहे हैं, तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो पिक्चराइजेशन में था कि भी मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स तो वीक है, वो राक्षस को नहीं मार सकते तो नहीं मरे।
0: तो कहीं मनोबल या कहीं कुछ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट बहुत है,
2: मतलब नहीं, मेन चीज तो डाउट को दूर कर, ये समझ ले कि भी माइंड में जबरदस्त शक्ति
0: पावर
2: है,
0: यस,
2: हाँ ये कुछ भी कर सकता है सचमुच।
1: जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना ईजियर हो जाता है। दैट इज वाई इट्स अ बिग यू नो डीप कनेक्शन बिटवीन कि हम मेडिटेशन करें, मन बुद्धि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वी विल बी एबल टू डू इट,
0: क्योंकि मन स्ट्रांग होता जाएगा फिर बहुत ज्यादा,
2: और क्लैरिटी। दूसरा भी पिक्चराइजेशन में जितना आप क्लियर विजुअलाइजेशन कर सको उतनी अच्छी इफेक्ट होगी। कुछ लोग कहते भी हम अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, तो भी करते रहो करते रहो, इवन सचमुच कलर डायग्राम ड्रॉ करो,
0: अच्छा।
2: उसको देखते रहो देखते रहो।
0: तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तब कैसे
2: करें? अच्छा बताता हूँ, देखो हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में है वो सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन, तो अगर ये सोचा जाए कि मेरी ब्लड वेसल्स है उनको ये सब नसें आ रही है और उन पर बहुत प्रेशर है, उस पर प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बहुत आ रही, इसलिए नसें छोटी हो गई, उस पर प्रेशर आ गया और अब ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ये चित्र निर्माण करो कि वो जो प्रेशर है वो कम हो रहा है,
0: वो एक्सपैंड कर रही है,
2: क्योंकि मैं शांत हूँ, अब मैंने अपने इमोशंस को सही रूप से समझ लिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड, और मैं रिलैक्स्ड हूँ तो सिंपैथेटिक जो स्टिम्युलेशन है वो भी कम हो गया, वो एक साथ में 100 इम्पल्स आ रहे थे अभी 50 हो गए, और हो गए तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होने लगे, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर रिलैक्सिंग, माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, इट रियली हैपेंस।
0: जब ये हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर है हाई, तब ये अगर विजुलाइज करें तो इम्पैक्ट होता
2: है, तो इम्पैक्ट होगी, हाँ हाँ, इवन इमीडिएट तो इम्पैक्ट हो सकती है।
0: अच्छा, और डायबिटीज है अगर,
2: यहाँ नहीं है, हार्ट का ही देखो अभी एक पेशेंट ने तो सचमुच एक डॉक्टर को करके दिखाया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को उसने ना करके दिखाया, उसने कहा देखो अभी आप देखो मेरी हार्ट रेट है वो 95 हो गई, फिर वो कुछ करता था उसकी हार्ट रेट हो जाती थी 82। डॉक्टर को आश्चर्य होता कि क्योंकि अपने थॉट से इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एंड में पेशेंट को पूछा कि तुम करते क्या हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भी तुम्हारे पास ये माइंड में पावर है, तुम जब चाहो तब हार्ट रेट को बढ़ा देते हो, जब चाहो तब कम कर देते हो। उसने कहा सिंपल बात है भी, मैंने समझा था कि भी मैं मेरे जीवन की एक इवेंट है वो थी जिसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी, बहुत प्रेशर हुआ था, जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है। फिर मैं अपने ऐसे इवेंट्स है कि जिसमें मुझे सफलता मिली थी, प्राइज मिली थी, तो बस उसको याद करता मेरी हार्ट रेट कम हो जाती है। आई अंडरस्टूड वंस और ट्वाइस और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो आज जब चाहो तब मैं कर सकता हूँ।
0: लेकिन
1: ज्यादातर हम कौन से इवेंट्स को विजुलाइज करते
0: हैं, दुख वाले थे, नेगेटिव थे, गलत थे।
1: तो देखो डैमेज कितनी बार, एक बार जब वो इवेंट हुआ और फिर जितनी बार उस इवेंट को याद किया उतनी बार डैमेज, तो एक बार नहीं डैमेज हुआ ना, कितनी बार डैमेज हो गया।
0: और अगर अभी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं,
2: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कई सालों से इसके ऊपर कार्य हो रहा है और करीब 1,500 जितने पेशेंट्स कि जिनमें डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी और वो पेशेंट नहीं चाहते थे कि भी हम बाईपास कराए, वो चाहते थे कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन हो करके इसकी इफेक्ट हो सकती है क्या। तो ऐसे पेशेंट्स को 7 दिन के लिए वहाँ शांतिवन में रखते हैं, उनकी सारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, ये ढूंढते भी है, जो मैंने कहा ना कि कौन से इमोशंस है जिससे इफेक्ट हुई, उस इमोशंस को भी ढूंढते हैं और साथ साथ ये विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, विशेष कराते भी है, प्रतिदिन उनको ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराते, कुछ योगी भी सामने बैठते हैं और वो भी उनको वह पावर देते, एनर्जी देते और पेशेंट अपने आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके पावरफुल रिजल्ट है। यहाँ तक कि वह डॉक्यूमेंटेड केसेस है, फिर से उनकी एंजियोग्राफीज की गई और ये प्रूव हुआ कि सचमुच उनमें काफी रिवर्सल हो गया है। यहाँ तक कि जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो एंजियोग्राफीज दिखाते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि भी इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी है। सो दैट प्रूव्स दैट नो दोज रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल।
0: व्हाट आर द विजुअलाइजेशन?
2: या ये विजुअलाइजेशन की जो चर्बी जम गई है वो कम हो रही है। एक तो सिंपल ये है कि भी मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है और आत्मा से जो है वो प्रकाश की किरण हार्ट पर पड़ती है और वो हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जाती है और इतनी वो भले सूक्ष्म किरणें हैं बट दे आर रियली पावरफुल कॉन्सेंट्रेट वे में, हाँ लेजर रेस की तरह जा रही है और लेजर रेस की जा रही है तो धीरे धीरे वो चर्बी को पिघला देती है और जो ब्लॉक्स है वो कम हो रहा है।
1: इट्स लाइक जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होते हैं ना,
2: तो कैसे
1: क्लीन करते हैं,
0: एक केमिकल भी कई बार डालते हैं,
1: पाइपलाइन को क्लीन करना है, दैट इज व्हाट वी विजुअलाइज कि ये किरणें अंदर जा रही हैं और वो जो सब कचरा जो जमा हुआ है उस पाइप के अंदर उसको क्लीन करती जा रही है। माय ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग स्मूथ, थॉट पैटर्न चेंज हुआ, विजुअलाइज किया, अमेजिंग रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट्स जस्ट 7 डेज वहां जाकर करते हैं एंड जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उनके फैमिली के एक मेंबर, मोस्टली स्पाउस जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेसिकली जीवन के हर एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं उस 7 दिन में और फिर उनको वापस जाकर भी उस लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मेंटेन करके रखना है एंड 6 महीने के बाद उनके सारे टेस्ट और वो सब फिर से होते हैं। वेरी साइंटिफिकली डन प्रोजेक्ट।
0: शिवानी, डॉक्टर पटेल, जिस तरह से एक, मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ लेकिन इट्स रियली ट्रू, मिरेकल लगता है कि आज बीमारियों से हम इतने घबराए हुए हैं और इतना पूरा वक्त एनर्जी उसी में निकल रही है। तो अगर ये संभव है, हमारे हाथ में है टेक्निक, हमारे हाथ में शक्ति है, तो हम उसको प्रयास को करें। आपके द्वारा हमें पता चल रही है चीज़ें। थैंक यू सो मच। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स, जिंदगी की सारी स्किल्स सीखने के बावजूद अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इन स्किल्स को हमारे साथ इस सफर में सीखें। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
2: सभी को नमस्कार. मेरा नाम है करण सिंह. मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और यहां पे ब्रह्म कुमारी जी में हम लोग आए हुए हैं. हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां आकर के. आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बीके मनोज कुमार जी हैं, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में मुंबई में अपनी सेवा दे रहे हैं। और आप बैंकर हैं, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा अनुभव है। और इसके साथ में ब्रह्म कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी आपको अनुभव जो है अच्छा है, जो हम लोग लास्ट में सुनने वाले हैं। तो मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: कैसे हैं आप?
1: मेरा नाम मनोज कुमार पाल है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में विजिलेंस डिपार्टमेंट में चीफ मैनेजर कार्यरत हूँ मुंबई में।
0: अच्छा,
1: हेड ऑफिस में।
0: बहुत बढ़िया।
1: ब्रह्मा कुमारी में मैं सन 2017 में, जिस समय मेरा पोस्टिंग अंबिकापुर रीजनल ऑफिस, हमारा वहाँ पर रीजनल ऑफिस होता है, अंबिकापुर रीजनल ऑफिस में पोस्टेड था, तो शिवरात्रि में वहाँ पर सेंटर से सारे लोग आके वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो घर में मेरा युगल जो है ब्रह्मा कुमारी के बारे में शुरू से जानकारी उसको है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: उस कभी उसका संकल्प ये था कि बाबा को ऐसे ही बोले कि इन्होंने मुझे खुद बोले कि क्या है एक्चुअल ब्रह्मा कुमारी, क्या है शिव बाबा, क्या होता है, तब मुझे बाबा ने बोलेंगे, इन्होंने बोलेंगे तब मैंने जाऊंगे।
0: अच्छा अच्छा।
1: ऐसे ही उनका मन में संकल्प आया था कई दिनों से। तो ये अचानक शिवरात्रि में प्रोग्राम हो रहा था, तो प्रोग्राम में मैं बोला देखूँ, बिल्कुल सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे एक्चुअल,
0: जाते हैं तो क्या,
1: सभी कम्युनिटी के लोग थे, सभी रिलीजन के लोग थे, तो मैं बोला देखूँ। उस समय जाके देखा एक्चुअल, और सारे जो है जितना कम्युनिटी के लोग वहाँ पर थे, सबका एक चीज है, भगवान जो है ना, एक ही है सभी रिलीजन का। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो रिलीजन है। लोग बाग क्या होते कि हर जगह जाते हैं, अभी के कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, लेकिन वो सारे हेड वहाँ पर उपस्थित थे, और सारे हेड जो है इसको माने, और इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन किए। वहाँ का जो संचालिका दीदी, विद्या दीदी थी, बहुत अच्छा लगा उनका, सारे चीज़ का, भगवान का जो, शिव बाबा का जो परिचय, बहुत अच्छा लगा। तो बोला ठीक है। उस समय बाहर आया तो भाई ने बोले कि ठीक है, 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा इसका अंदर जाने के लिए। बोला ठीक है, अब देखते हैं क्या है करके। तो फिर हम 7 दिन का कोर्स वहाँ पर किया, मैं भी किया, मिसेस भी की, साथ में मेरा बेटा भी था, वो भी किया, हम तीनों 7 दिन का कोर्स किया। धीरे धीरे धीरे धीरे गहराई जब पता चला कि एक्चुअल रियल क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या चीज़ है। और कभी कभी मन विचलित रहता था, और बैंकिंग सेक्टर में होने के कारण जो है प्रेशर तो रहता है, बहुत सारा काम रहता है, प्रेशर ओवरलोडेड रहते हैं। तो जैसे जैसे इसका अंदर जाते गए तो पता चला कि नहीं नहीं ये जो है हमको तो करना है, बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना, कराने वाला दूसरा कोई है। धीरे धीरे ये पता चला कि हम कुछ नहीं, हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल कराने वाले दूसरे। जब ये मन में आ गया हमको कोई करा रहे एक्चुअल, तो फिर हमको क्यों चिंता करना है। तो मन में ये है कि हमको चिंता नहीं करना है, चिंता करने वाला दूसरा है ना, हमको सिंपली करना है। और एक दिन दीदी ने बताया कि कुछ भी चीज हो, हम अगर किस चीज को ट्रस्टी बन के सोचते हैं, मैं कभी पॉकेट में मेरा पैसा रहता था, आज ए बैंकर तो पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, बैंक में रहता है जनरली, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। तो दीदी ने बोले कि जो पॉकेट में पैसा है वो एक्चुअल हमारा नहीं है, वो पैसा जो है दूसरा का है, हम ट्रस्टी बनकर उसको खर्चा करेंगे। तो इसलिए कभी भी खर्चा करेंगे तो ये सोच के खर्चा करना है, एक्चुअल किस चीज़ के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, सही है गलत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन से आज तक मैंने कभी भी कुछ भी चीज़ करता हूँ तो सोचता हूँ ये तो मेरा नहीं है ना, मैं सही में वो चीज़ करता हूँ। और इसको क्या होता कि बैंकिंग में जो है मुझे बहुत लाभ हुआ,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कभी भी जो है मैं टेंशन फील नहीं किया कभी काम में। और बहुत जगह जो है देखा कि कोई भी स्पिरिचुअल पावर जो है काम करता है,
0: बिल्कुल
1: अचानक जो है कोई भी काम करता है। कभी कभी मैं ये अनुभव किया जो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है। तो अपना जो एग्जिस्टेंस पहले था, मैं धीरे धीरे देखा कि एग्जिस्टेंस जो है ये, लेकिन हुआ कैसे, अगला वाला मुझे क्यों बुलाया, ये काम कैसे इजीली हो गया। और एक तो अनुभव बताऊंगा मैंने, एक दिन मेरा बेटा जो है स्कूल से वापस आ रहा था, बहुत धूप था, जैसे बस से उतरा तो पसीना पसीना हुआ था बिल्कुल, घर तक जाने के लिए उसका हिम्मत नहीं हो रहा था। तो इमिडिएटली वो बोले कि बाबा एक्चुअल कैसे करके मुझे घर तक पहुंचा दीजिए। अचानक पीछे से एक आदमी आया स्कूटर में, बोले बेटा कहाँ जाओगे, बोले कैसा हाइट से होगा, बोले ठीक है बैठिए। उस दिन से उसको भरोसा हो गया, नहीं कोई शक्ति है पीछे जो काम कर रहे हैं। तो उस दिन से धीरे धीरे आज तक जो है गहराई विश्वास बढ़ते गया, बिल्कुल जितना अंदर आते गए बिल्कुल अपना भरोसा धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते गया, और आज की स्थिति में तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी मनोज जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि इस तरह से आप ब्रह्म कुमारी से जुड़ना हुआ आपका, और वहाँ पर जो आपको ज्ञान या नॉलेज मिला उससे आप अपने जीवन में अप्लाई करने से आपको एज ए बैंकर आपका जो प्रेशर रहता है वो कम होते गया और आप रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आप करते हैं तो ईश्वर को याद करके करते हैं, तो ट्रस्टी होके आप काम करते हैं तो टेंशन फ्री हो रहे हैं। तो ये ज्ञान आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और आपके पूरे परिवार के लोग जो हैं इस ज्ञान को सुनते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मनोज जी से बात करेंगे हम लोग अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए, कैसे बैंकिंग सेक्टर में वो कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं। आप एक बैंकर हैं, तो आइए विद्यार्थी मित्रों के लिए अब हम लोग का पूछना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं उन सभी को अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करना है या बैंकिंग में करियर करना है तो किस तरह से वो शुरुआत करें, आप थोड़ा गाइड कीजिए।
1: ये समाज में जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत अहम भूमिका, देश के प्रति बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, बिना इसका तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ता। बिना पैसा का, बिना आर्थिक स्थिति जो है उसका बिना आगे नहीं बढ़ता है। और बैंकिंग ऐसे माध्यम है जिसकी द्वारा जो है लोगों को जो आर्थिक परिस्थिति है, जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, वो जो है बैलेंस कर देता है। इसलिए आज की युवा जो है बैंकिंग जो सेक्टर है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इकोनॉमिक का स्टैंडर्ड जो है, देश का जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता भी कर सकते हैं। क्योंकि बिना फाइनेंस का हम कुछ नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, साइंस में हो, इंडस्ट्री में हो, किसी में जो है आर्थिक परिस्थिति एक अहम भूमिका निभा रहे।
2: जी जी जी
0: नहीं, इसमें विद्यार्थी कैसे जुड़े, विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन करें।
1: विद्यार्थी
2: क्या पढ़ाई करें?
1: हाँ, इसमें जो है, इसमें जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आजकल तो ऐसा देखा गया कि हर फैकल्टी लोग जो है बैंकिंग की तरफ उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। और मैक्सिमम इंजीनियर्स भी आजकल आ रहे हैं। पहले की जमाना था कि उस समय कहा जाता था कि कॉमर्स, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वही अच्छा से बैंकिंग तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस भी आते हैं, आर्ट्स भी आते हैं, कॉमर्स भी आते हैं। आजकल देखा गया कि टेक्निकल ग्रेजुएट और आईटी सेक्टर के लोग जो है वो बहुत आते हैं। क्योंकि बैंकिंग ऐसे फील्ड है जिसमें कि आईटी हुआ, कॉमर्स हुआ, साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, ये सभी सब्जेक्ट से भरा हुआ चीज है। सभी सब्जेक्ट वाले इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं और सहायता भी कर सकते हैं। तो सिंपली सी चीज़ है, बैंकिंग के लिए जो है मिनिमम ग्रेजुएट उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन है। उसके लिए अगर कोई बैंकिंग तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव तैयारी है तो कॉम्पिटिटिव देना है उसी में। और आजकल तो ऐसे है कि ऑनलाइन सारे चीज़ों, यूट्यूब चैनल हो गया, कई सारे कोचिंग सेंटर हो गया, और हर बैंक में जो है आजकल IBPS हो गया, NIBM हो गया, IBPS कंडक्ट कर रहा है सभी बैंक्स के लिए। पहले होता था कुछ बैंक सेपरेट अपना अपना एग्जाम करता था, लेकिन आजकल IBPS जो है कॉम्बाइंड एग्जाम करता रहता। थ्रू IBPS जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनका एग्जाम करता है, IBPS दूसरे बैंक्स के लिए करते हैं। IBPS थ्रू एग्जाम देना है, क्लरिकल एक स्टेप है, और प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी दोनों दे सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर देने के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर में उनका पोस्टिंग होता है। अगर कोई क्लरिकल में भी ज्वाइन करते हैं वो क्लरिकल में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इंटरनली प्रमोशन टेस्ट एग्जाम भी होता है, एग्जाम दे के वो असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। प्रमोशन टेस्ट के लिए वेराइटी, बैंकिंग के लिए वेराइटी एग्जामिनेशन भी होता है प्रमोशन के लिए, वो भी देके क्लरिकल कैडर का जो है वो ऑफिसर भी बन सकते हैं। और देश के लिए जो है बहुत बड़ा चीज़ है एक्चुअल, अगर कोई सही में ईमानदारी से बैंकिंग सेक्टर में काम करेगा, लेकिन देश को बहुत सहायता करेगा। आर्थिक परिस्थिति, अपना जो इकोनॉमिक परिस्थिति है देश का, बहुत सुधार हो जाएगा उसमें। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो है, क्योंकि मैं विजिलेंस में हूँ, ईमानदारी बहुत जरूरी है। उसके लिए जो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है
2: वो हेल्प करता है काफी,
1: उसके लिए बहुत सपोर्ट करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, आजकल हर सेक्टर में जो है वर्कलोड भी रहता है, लोगों को टेंशन भी रहता है, अगर कोई इस संस्था में जुड़ता है टोटल टेंशन फ्री लाइफ वो प्रोसीड करेगा। क्योंकि उसको ये हो जाएगा, पहली बात कि वो जो है कोई भी गलत काम नहीं करेगा, उसका पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, नेगेटिव तरफ जाएगा नहीं, और स्मूथली काम कर सकता है, क्योंकि अगर सवेरे कोई ऐसे देखा जाए तो हम लोगों ने एक्सरसाइज करते हैं उठ के, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज कोई नहीं करता है. कोई नहीं करता है. अगर हमारा मानसिक स्थिति सही नहीं है तो हम बीमार ऐसे भी पड़ सकते हैं, जितना भी फिजिकली फिट रहने से. अगर मेंटल स्टेटस सही है तो फिर हम आगे भी इसको ले सकते हैं. एक बार ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एक फॉरेनर एक बार हमसे मुलाकात हुआ था. उन्होंने बोले इंडिया में तो थोड़ा गर्मी लगता है, यहाँ आया तो बहुत गर्म लगता है, फॉरेन में तो बहुत अच्छा है बिल्कुल, हम तो मतलब कैसे वहाँ गर्मी नहीं लगता है. बोले नहीं, वो घर में भी एसी है, घर से निकले गाड़ी में भी एसी है, ऑफिस आए वहाँ पर भी एसी है. अच्छा, बोले फिर भी आपको कभी कभी गुस्सा आता है? हाँ वो तो आता है. तो फिर हमने बोले कि एक्चुअल एक चीज़ अगर ठंडा रहेगा, जो कि दिमाग एक्चुअल ठंडा रहेगा, वो एसी एक्चुअल उसका रिमोट कंट्रोल अपना पास है, अगर वो ठंडा रहेगा तो सारे चीज़ ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा. हम सारे चीज़ को मेंटेन करके भी उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, अगर उसको मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे चीज़ सही हो जाएगा. तो वो बहुत खुश हुए बिल्कुल सुन के, मैंने नहीं माने एक्चुअल एडमिट किया, एक्सेप्ट किए इस चीज़ को, बहुत अच्छा है करके. तो आज की परिस्थिति में जो है स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए.
0: मनोज कुमार जी, वो विजिलेंस आपने बोला कि मैं विजिलेंस में, विजिलेंस क्या है इसका?
1: विजिलेंस एक पार्ट है एक्चुअल. हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमको विजिलेंट, हर तरफ विजिलेंट रहना है. अगर विजिलेंट नहीं रहेंगे, कभी ऐसा होता है अगर हम दरवाजा खोल के सो जाएंगे, हमको ऐसे बोला जाता है कि दरवाजा बंद करके सोना है, दरवाजा खोल के सो जाएंगे तो क्या होगा?
0: चोरी आ जाएगा,
1: चोरी होगा. तो विजिलेंस क्या होता है कि उसका एक पार्ट है, हमको हरदम सतर्क रहना है. इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिवेंटिव विजिलेंस, हम उसी में ज्यादा महत्व देते हैं. अगर हम प्रिवेंटिव विजिलेंस को महत्व देंगे तो कोई भी जो है नेगेटिव चीज होगा नहीं. जैसे कि दरवाजा हम बंद करके सोएंगे तो ऑटोमेटिक चोरी नहीं होगा. कोई भी हम काम करते हैं, अगर कोई भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा. हम जब प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तब गलत होता है. तो उस प्रोसीजर सही नियम से काम होता है. नियम को देखें क्या, रूल एंड रेगुलेशंस, वो रूल एंड रेगुलेशंस से अगर काम करेंगे, डिविट होके काम नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है. तो हमको वो चेक करना है एक्चुअल सही में ये चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे हम देखते हैं कि साइकिल या कोई भी गाड़ी अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है. तो विजिलेंस एक ऐसी चीज़ है. तो ये भी जरूरी है क्योंकि विजिलेंस रहेगा ताकि हम थोड़ा सा चेक पॉइंट है, चेक कर पाएंगे. लोगों का मन में थोड़ा डर भी रहेगा, नहीं कोई हमें देख रहा है एक्चुअल. हम उसको दूसरे रूप से बोलते हैं कि वाचिंग डॉग. एक्चुअल घर में आजकल लोग वह कुत्ता भी रखते हैं, डॉग पालते हैं, चोर के लिए रखते हैं, है ना. तो इसको भी लोग बाग का यह एहसास होना है कि हमको भी कोई देख रहा है एक्चुअल.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो ऑटोमेटिकली वो खुद पे खुद विजिलेंट रहेगा ताकि गलत करने के लिए सोचेगा दो बार. हम गलत करेंगे तो हमको भी कोई देख रहा है. तो ये पार्ट है एक्चुअल.
0: जी मनोज जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि विजिलेंस क्या है. इसके बारे में आपने बताया कि कोई भी चीज़ चोरी ना हो और नुकसान ना हो, इसके लिए विजिलेंस का काम होता है. तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा है, इसके बारे में आपने बताया. और इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों को आपने बताया कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में अभी जुड़ सकते हैं. तो विशेष एग्ज़ाम्स होते हैं, उस एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करेंगे तो ऑफिसर लेवल का और फिर क्लर्क लेवल का दोनों चीज़ों के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं. आप दोनों एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जिस जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी और जैसे आप मार्क्स एडॉप्ट करेंगे वैसे वह काम आपको मिलता जाएगा. बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो तो भी यहाँ आ सकते हैं. और यहाँ आने के लिए आपको जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है और बैंकिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो आप क्लियर करते हैं तो आपको आसान हो जाता है. तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बातें हो रही है खास बैंकिंग सेक्टर में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जो पहले और अभी में जो चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, या मोबाइल में आजकल जो है पे फोन एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ आ गया, इजी बैंकिंग हो गया है, लोगों को बैंक में लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता पैसे के लिए, तो डिजिटल मनी भी आ गया है। तो आपका जब आप बैंकिंग सेक्टर में आप जुड़े और अभी, उसका डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा बताइए। शुरू शुरू में आप कैसे काम करते थे, अभी कैसे काम होता है?
1: हमने जब ज्वाइन किए थे उस समय प्योरली मैनुअल बैंकिंग था। बड़े बड़े लेजर होता था, मिस्टेक्स भी होता था, मैनुअल कैलकुलेशन भी करना पड़ता था। वो धीरे धीरे बैंक 724 में ट्रांसफ़र हुआ। अभी जो है डिजिटल फुल CBS में, उस नेक्स्ट CBS में ट्रांसफ़र हो गया। अभी जो है फुल डिजिटाइजेशन की ओर बैंकिंग जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि सारे पेपर वर्क जो है वो डिमिनिश हो गया है। मिस्टेक्स जो होता था, मिस्टेक्स भी कम हो गया है, और जितना समय लगता था वो समय भी कम हो गया है, और हम कम समय में जो है ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और अभी जो डिजिटाइजेशन के समय में हम लोगों को घर बैठे सेवा दे सकते हैं। पहले लोग बाग जो पब्लिक है वो बैंक आना पड़ता था, बुजुर्ग है उनको लाना पड़ता था कभी उनका समय का, क्योंकि आजकल जो है समय जो है बहुत कीमती है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। हर किसी के जिसको पूछने से वो बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए आज पर कहीं भी खड़े होके कहीं भी बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बैंक बिना आए ये सारे डिजिटाइजेशन जो है वो सुविधा सारे पब्लिक को दिया गया है। उसमें उस मैनुअल और इसमें ये फर्क है, अपडेशन में जो है लोगों को जो है फैसिलिटी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, और समय भी कम मिल रहा है, क्योंकि लोग बाग काम करते हुए भी बैंक नहीं जाते हुए भी सारे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बिना बैंक गए भी आप जो है बैंकिंग का सारा काम घर बैठे कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं, वेबसाइट के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है टेक्निकली साउंड हो गया है बैंकिंग सेक्टर, और काफ़ी काम जो आपको पैसे भेजने हो किसी को तो भी टाइम नहीं लगता है। पहले तो पैसे भेजने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था लेकिन आज तो एक क्लिक करते ही आपके पास लाखों रुपए वापस आ जाते हैं, तो ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो गया है। तो इसमें जो सिक्योरिटी की बात अगर हम लोग करें डिजिटल में, तो क्या क्या कंज्यूमर को ध्यान रखना है सिक्योरिटी पर्पस से?
1: सिक्योरिटी पर्पस से एक्चुअल जो भी प्रोसीजर, अगर कोई भी कस्टमर सारे प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे अपडेशन हो रहा है। पहले सिक्योरिटी जहां पर थोड़ा सा कमज़ोर लगा, क्योंकि हर चीज़ का अपडेशन ज़रूरी है। जब कोई भी सिस्टम शुरू शुरू में चलता है कहीं भी थोड़ा सा लूपहोल होता है, जब तक यूज टू हो जाएगा और कहीं पर अगर प्रॉब्लम होता है तो उस समय उसको जो है फिर पैकअप किया जाता है, फिर उसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पासवर्ड प्रोटेक्शन है, यूजर आईडी पासवर्ड, ये इतना सारा प्रोटेक्शन कर दिया है। अगर कोई रियली प्रोसीजर में जाएगा तो कभी भी ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई पासवर्ड बाय द वे शेयर कर देता है तो फिर कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हर कस्टमर को जो है मोबाइल के थ्रू रेगुलर मैसेज रहता है, क्योंकि कोई भी जो है पासवर्ड शेयर नहीं करना है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई शेयर नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे उसका भी अपडेशन चल रहा है, कभी भी कुछ भी अगर पॉइंट में लूप हुल रहता है फिर उसको इमीडिएट अपडेशन किया जाता है।
0: जी जी जी मनोज जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे कि अभी जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट करते रहेंगे तो सिक्योरिटी आपका बनी रहती है, और जो सिस्टम है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सिक्योरली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, अभी भी यूज़ कर रहे होंगे आप, और अच्छी तरह से आप प्रोटेक्ट भी रहते हैं। तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें आती है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ये सब हम लोग करते हैं तो बड़ी सेफ तरीके से ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुनने में आता है कि कुछ पैसे चले गए किसी के, तो वो जैसे कई बार मोबाइल रिचार्ज करते करते कुछ दूसरी जगह पैसे चले गए या दूसरे नंबर पे चले गए, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पैसे करते किसी और के बैंक में चले गए या किसी और जगह पे ये हुआ, तो ऐसे में फिर कंप्लेन कहाँ करना है, क्या सिस्टम है वो थोड़ा बताएं।
1: ये इसीलिए होते हैं, कभी क्या होता है कि मोबाइल में जो मैसेज जाता है मोबाइल नंबर अपडेशन नहीं होता है। कभी कभी हम घर में भी ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, अपना घर में फैमिली मेंबर में भी कभी कभी मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, कभी बच्चे हुआ उनका दोस्त का साथ मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब शेयर हो जाता है तो मैसेज ऑटोमेटिकली उनमें चला जाता है, उसी समय ये प्रॉब्लम आता है। इसीलिए अगर कोई भी कस्टमर जो है, कोई भी व्यक्ति प्रोसीजर से ही चलेगा, प्रोसीजर लैप्स नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा। ये हर जगह अभी हम लोगों ने जितना देखे हैं एक्चुअल, क्योंकि हर साइट है कंप्लेन करेंगे, आजकल साइबर क्राइम भी आ गया और बैंकिंग में भी साइबर क्राइम का हम एक अलग से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम भी रखे हैं, कहाँ से क्या होता है कि फुल प्रोटेक्शन जो है वो दे रहे हैं, इमीडिएट जो है कहाँ से होता है इमीडिएट विद इन 9 मिनट्स जो है उसको इमीडिएटली हम प्रोसेस जो है चालू कर देते हैं, कहाँ पैसा गया, कैसे गया, किसका पास गया, ये सारी चीज़ें। और अभी तक हम लोग जो भी महसूस किए हैं, कभी ये जो है शेयरिंग जब हो जाता है, जब एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है, अगर कोई किसका मोबाइल नंबर जान लेता है तब ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या होता है कि कस्टमर खुद अपने आप में भी थोड़ा एजुकेटेड होना पड़ेगा, और इसीलिए हर बैंकिंग इंडस्ट्री जो है हर कस्टमर के पास रेगुलर मैसेज भेजते रहता है। और इसलिए मैं इसके लिए एक चीज़ बोलूँगा कि एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम में जो है एक लोभ जो है, लोभ जो है उसी में मार खिलाता है। अगर हम में एक लोभ आ गया, कभी कभी हमको ये मैसेज आता है कि आप 50,000 रुपया दे दीजिए आपको 10 लाख रुपया क्रेडिट हो जाएगा, तो कई लोगों को हमारे पास, कई कस्टमर आने के बाद बोलेंगे हमारे पास ऐसे मैसेज आए हैं, नहीं नहीं मत कीजिए इसको, कोई ये फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है, ये होना नहीं है बिल्कुल। स्टिल देन वो बाहर जाके उन्हीं को 10-20 हज़ार रुपया कभी भी आता है तो बोले ठीक है 10-20 हज़ार जाने देते हैं क्योंकि हमको तो इतना पैसा मिलेगा, और 10-20 हज़ार रुपया उनको दे देते हैं। फिर जब पैसा उनका चला जाता है फिर उन्होंने आके फिर बैंक में कंप्लेन कर देंगे ऐसा हो गया करके, तो फिर उनको एहसास होता है, महसूस होता है कि एक्चुअल रियली गलत कर दिया। तो इसलिए हर किसी का पीछे जो है प्रोसीजर अगर जो फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, प्रोसीजर फॉलो नहीं करने से ये प्रॉब्लम होता है। उसका मेन कारण है हम सभी मनुष्य है, जो लोभ हमारा अंदर जो है, बिल्कुल हर मनुष्य के अंदर लोभ है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो अनएजुकेटेड है उनका साथ ये घटना घटता है, हमारा सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन जस्ट लाइक डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेशनल से, है ना, दे आर ऑल्सो फेसिंग सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है
0: वो इम्पोर्टेंट है,
1: अपने को जानना जो है, अपने को जानना, जब हम सेल्फ को जान जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम ऐसे ही सोचते हैं ना, हम गाड़ी भी चलाते हैं, कभी हम एग्जाम्पल देते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं तब तक तो ठीक है, जब गाड़ी हमको चलाएगा तो एक्सीडेंट इज मस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट को अक्चुअल कोई भी व्यक्ति अगर समझ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम कोई भी काम करते हैं, हम भी ऑफिस में काम करते हैं, हम अगर कोई भी जो भी प्रोसीजर लैप्सेस करते हैं, जो भी पॉलिसी आता है, पॉलिसी गाइडलाइंस अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसी में प्रॉब्लम आएगा। पॉलिसी गाइडलाइंस अगर फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा।
0: जी जी जी, चलिए मनोज कुमार जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बैंकिंग सेक्टर के बारे में, और अपना अनुभव साझा करते हुए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो कैसे काम करता है, वो कैसे हेल्प करता है वो भी आपने बताया, और विद्यार्थी मित्रों को बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए किस तरह से वो अपनी तैयारी करके आ सकते हैं ये भी आपने बताया, और आखिरी में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लोभ प्रवृत्ति मनुष्य की है उसके वजह से फंसता है ये आपने बताया, और इसमें पढ़े लिखे भी आ जाते हैं और नहीं पढ़े लिखे वो भी आ जाते हैं। तो इसके लिए आपने बताया कि जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारी लोभ प्रवृत्ति को कंट्रोल करता है जिससे हम ज़्यादा मुश्किल में नहीं आते हैं, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया।

0: एरर कहीं ना कहीं हो जाती है, जिसके वजह से ये चीज़ें देखने में आती है। तो उसे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ बैंकिंग कर सकते हैं और अपना जीवन को सेफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मनोज कुमार जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप विद्यार्थियों को?
1: विद्यार्थी को ये चाहेंगे कि पढ़ाई जो है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी के साथ। हम अगर सवेरे उठ के, बोलते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त, हर आदमी जो है, हर व्यक्ति जो है सवेरे, हमारा मुनि ऋषि से लेकर के पूर्वज जो है सवेरे जागते थे। अब ये भी प्रोवर्ब है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसलिए हम अगर सवेरे उठ के एक घंटा हम अगर मेडिटेशन करते हैं, आज की जमाने में लोग बाग योगा बोल देते हैं, अगर हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे, एक घंटा हम अगर समय दे देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सारे चीज सुधर जाएगा और हम खुद पे खुद जो है चार्ज कर सकते हैं, दिन भर आराम से काम कर सकते हैं, हर चीज को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये हर जगह एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और कहीं कहीं पर जो है हर किसी को इसी का जो है क्लास करना चाहिए। हम भी कभी अपना बैंकिंग में भी हम कभी जो है कोई भी स्पिरिचुअल स्पीकर को, जब भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं हमारा, बड़े बड़े जगह में ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर में हम भी स्पिरिचुअल स्पीकर को बुलाते हैं और कभी भी क्लास कराते हैं। हमारा बैंकर्स जो है बहुत अच्छा फील करते हैं। अभी रिसेंटली मैं कहना चाहूँगा कि अपना CBOTC भोपाल कलकत्ता का जो ट्रेनिंग सेंटर है, बीके अस्मिता दीदी को बुलाए थे, सारे ट्रेनर को बहुत अच्छा लगा, बोले कि दीदी एक्चुअल रियली हम अभी पता चला कि एक्चुअल कितना चीज हम मिस कर रहे हैं एक्चुअल। तो इसलिए ये उसके साथ अगर जुड़ जाएगा, अगर कोई भी इसमें थोड़ा सा समय देगा, थोड़ा सा समय देगा, सारे चीज जो है अपने आप सुधर जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और सेल्फ मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए बहुत जरूरी है।
0: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मनोज कुमार जी, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको पता चला कैसे आपको आगे बढ़ना है, और आप सभी अपना करियर अच्छा फ्रेम करें ऐसी शुभ आशा के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: थैंक यू।

0: नाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: स्वागत है ज्ञान चिंतन में. नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं. इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं. हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना. तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें. ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा.
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है आंतरिक सुंदरता. इस पर मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करूँगी. दोस्तों, सही सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है. बाहरी आकर्षण कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन असली पहचान इंसान के विचारों, भावनाओं और उसके आचरण से होती है. आइए अब हम समझते हैं आंतरिक सुंदरता क्यों महत्वपूर्ण है. सच्ची सुंदरता अच्छे विचारों, ईमानदारी, करुणा और सहानुभूति में होती है. आत्मविश्वास, सादगी और सकारात्मकता व्यक्ति को अधिक आकर्षित बनाती है. बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन अच्छा स्वभाव और नेक दिली हमेशा याद रहती है. संबंधों की गहराई का जीवन में बहुत महत्व है. रिश्ते केवल चेहरे की सुंदरता से नहीं बल्कि दिल की गहराई से बनते हैं. जीवन में संतुष्टि और खुशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. आंतरिक सुंदरता वाला व्यक्ति खुद से संतुष्ट रहता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है. तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आंतरिक सुंदरता को कैसे निखारें? सकारात्मक सोच अपनाएं और हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें. दूसरों की मदद करें और सहानुभूति रखें. अच्छी आदतें और संस्कार अपनाएं, जिससे लोग आपको पसंद करें. ज्ञान अर्जित करें और अपने अंदर बौद्धिक और मानसिक विकास करें. आभार व्यक्त करें और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें. आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और स्वभाव में होती है. जब हम अंदर से सुंदर होते हैं तो हमारी आभा अपने आप बाहर भी दिखाई देती है. तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ. बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर.
1: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही. प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा. ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे. तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें. फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ. धन्यवाद, नमस्कार.
3: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM. आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुड़ेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो
1: नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज वेलकम सिस्टर
2: ओम शांति
1: वेलकम टू बीइंग डिवाइन
2: थैंक यू
1: आपने कहा था कि नई आदत के नए ग्रूव्स डालने हैं नए संस्कार का जो रिकॉर्ड हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग है ग्रुप पेंसिल लेके अगर पेपर पे घुमाते जाएं तो और भी गहरा होता जाता है जैसे रंग भी गाढ़ा होता जाता है जितना रंग डालते जाओ पानी में सेम कलर तो ये जो पुरानी रिकॉर्डिंग है ये हट के नया फोल्डर अगर खोले हम या नया सीडी बनाए तो पुराना जाता कहाँ है वो कहीं ना कहीं छुपा तो नहीं रह जाता कि कहीं ना कहीं व्हेनेवर वी आर नॉट अवेयर उठ के आ जाए
2: yes. पुराना जाएगा नहीं
1: हाँ.
2: संस्कार जो आत्मा के पास है वो संस्कार है लेकिन यूज नहीं करेंगे तो यू विल नॉट फील कि वो संस्कार है जैसे पीस इज अ संस्कार ऑफ द सोल वो है
1: अच्छा
2: फॉर रिकॉर्डिंग है हर आत्मा पर है इस सृष्टि पर जितनी आत्माएं हैं हर आत्मा पर पीस के संस्कार की रिकॉर्डिंग है लेकिन अगर सारा दिन में उसको यूज नहीं किया मतलब पीसफुल क्वालिटी की थॉट्स नहीं क्रिएट की पीसफुल तरह से बात नहीं की पीसफुल कर्म नहीं किए मतलब हर कर्म शांति की स्थिति से नहीं किया तो हम उस शांति को अनुभव नहीं करेंगे मतलब गाना रिकॉर्डेड है सीडी पर लेकिन प्ले नहीं हो रहा तो अगर सीडी पर कोई गाना है लेकिन उसको कभी प्ले ना करें तो हम अवेयर नहीं होंगे कि सीडी पे वो गाना भी है
1: ओके
2: प्ले नहीं किया कभी सो फॉर यू इट्स एज गुड एज इट्स नॉट देयर बट इट्स देयर
1: और जैसे मुझे अपनी शक्तियां क्या क्या है अगर मालूम ही नहीं है
2: हाँ.
1: तो नहीं के बराबर है
2: तो नहीं के बराबर है सिमिलरली अभी जो संस्कार हमारे अक्वायर्ड हैं, लेट्स से अगर मेरे अंदर इरिटेट होने का संस्कार है जिद करने का संस्कार है आर्ग्यू करने का संस्कार है ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है फिर प्रैक्टिस किया कि नहीं नॉट लाइक दिस कॉन्शियसनेस ईगो की है तो हम हर बात में जिद करेंगे आर्ग्यू करेंगे कि मैं राइट हूं सोल कॉन्शियस है तो आर्ग्यू से एम्पथी की तरफ शिफ्ट करेंगे कि दूसरे के नजरिए को समझना दूसरे के संस्कार को देखना तो आर्ग्यू का संस्कार अपने आप क्या हो जाएगा यूज होना बंद होगा एम्पथी का संस्कार यूज होना शुरू हो जाएगा गाने दोनों हैं विच वन डू वी प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब हम ईगो में हैं तो हम आर्ग्यू के गाने को बार बार प्ले करते हैं एक बार दिन में दो बार दिन में पांच बार हम कहेंगे आर्ग्यू करना इनकी आदत है मतलब बात आई तो इनका संस्कार है आर्ग्यू करना तो वो वाला गाना ऑटोमेटिक मोड में चला गया जब वो गाना ऑटोमेटिक मोड में चला गया जो उस दिन आपने पढ़ के सुनाया इट बिकम्स ऑटोमेटिक एंड फास्ट मतलब वो बहुत फास्ट होने लगता है आपके पास टाइम नहीं है पॉज करें कि मैं उनकी बात को समझूं उनका भी कोई नजर वो टाइम ही नहीं है बात आई आर्ग्यू करना शुरू किया दूसरे की बात को सुना भी नहीं पूरी तरह समझा भी नहीं अपनी ही बात राइट है
1: दो वर्ड नहीं बोले सेंटेंस के चालू हो जाता
2: yes. है विच मीन्स उस आत्मा के अंदर जिद करने का संस्कार अपनी बात को राइट प्रूफ करने का संस्कार आर्ग्यू करने का संस्कार स्ट्रांग है ज्यादा बार यूज हुआ है तो सामने वाला दो लाइन भी नहीं कहेगा कई बार हम दो वर्ड्स भी नहीं कहते और दूसरे वाला शुरू हो जाता है वहां से तुम कहेंगे बात सुनो तो एक मिनट यू हैव जस्ट स्टार्टेड विदाउट इवन लिसनिंग
1: आप क्या बोलने वाले आगे
2: हाँ मुझे मालूम था सी मतलब वो जो लाइन थी ना इसलिए उस दिन के ब्रेन में वो जो न्यूरॉन है वो बार बार प्ले होने से फास्टर होगा दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम 5 मिनट बात सुनते फिर अपनी बात रखते 2-4 बार करने के बाद हम 2 मिनट बात सुनते हैं फिर जल्दी से अपनी बात रख देते हैं, लेकिन जब वो फास्टर एंड फास्टर होने लगता है, हम सामने वाले की बात ही नहीं सुनते, पहले ही अपनी बात रख देते हैं सामने। आर्ग्यू करने का संस्कार है। अब अपने ऊपर वर्क किया, मेडिटेशन से ईगो क्या होने लगी, कम होने लगी, तो सोल कॉन्शियस बढ़ा, तो हमने कहा सामने वाली भी आत्मा है, उसका नजरिया सुन।
1: प्रोसीड। ईगो कम होने लगी को थोड़ा आप एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ी।
2: बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस
1: थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मीनिंग क्या है, क्योंकि लोग और मैं और हमारे जो भी जहां जिनसे उठता बैठता हूँ, कई लोग बोलते ईगो इज अ वेरी गुड थिंग, ईगो को बहुत प्यार से रखना चाहिए।
2: अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। अगर मैं आर्ग्यू कर रही हूँ उस समय मेरी अटैचमेंट मेरे आइडिया से है कि मेरा ही आइडिया राइट है।
1: अगर सपोजिंग मेरे पास आइडिया है लेकिन अटैचमेंट कम है तो मतलब ईगो कम है।
2: हाँ, अब पहले में और अपने में अपने अंदर चेंज देखना है। आई सी दैट सो मच चेंज इन माई सेल्फ कि पहले तो दूसरे की बात ही नहीं सुननी थी, पहले ही अपनी बात रख देनी थी, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया कि अच्छा दूसरे की बात सुनी, लेकिन फिर भी कहा लेकिन मेरी वाली बात राइट है, ये सब ईगो है। अब स्टेज आई कि अपनी बात रखी, दूसरे को नहीं ठीक लगी, खुद अगर अंदर लगे भी कि ये वाली बात राइट है, नाउ वी हैव द पावर टू लेट गो ऑफ द आइडिया कि इट्स ओके, दूसरे को नहीं पसंद आया। पहले नहीं थी वो पावर, पहले तो कैसे, क्यों नहीं माना, क्यों नहीं समझ में आया, समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये वाली बात राइट है, क्योंकि मेरी ही बात राइट है। तो जैसे जैसे ये बहुत सूक्ष्म,
1: इतना भी नहीं समझ सकती है लोग, कब तक समझाऊं, क्या क्या समझाऊं, कैसे
2: Because
1: कैसे,
2: तब ये ज्ञान नहीं था कि सामने वाले का संस्कार अलग है तो उनकी डेफिनेशन ऑफ राइट अलग होगी। उतना पॉज करके वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समय नहीं था बीच में। अब इसको सारा दिन में देखें, फैमिली के साथ, वर्क प्लेस पे, पीपल विल हैव डिफरेंट आइडियाज, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो हमारा अटैचमेंट होता है ना, बॉडी का अटैचमेंट हम अवेयर है कि हाँ, रिश्तों में भी अटैचमेंट, पोजीशन, आइडिया से अटैचमेंट, मेरी बात सही है, सबसे सूक्ष्म अटैचमेंट है। इसको छोड़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है।
1: समटाइम्स मुझे मालूम भी रहता है कि मेरी बात सही नहीं है, लेकिन फिर मैं एक बार अड़ गया तो अड़ गया।
2: हाँ, तो अब अड़ गया तो इसलिए क्योंकि पहले कह दिया है कि वो बात
1: से मैं वापस जाऊं,
2: तो ये सब ईगो है ना।
1: हाँ।
2: और ह्यूमिलिटी क्या है,
1: that time I was wrong, you were right, sorry, I take back.
2: See, we know the difference. हमें मालूम है कि ईगो और ह्यूमिलिटी में क्या फर्क है, हमें मालूम है कि बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस में क्या फर्क है। वी नो, सी आपने आंसर दिया कि दोनों बात में क्या फर्क है।
1: इतना ब्यूटीफुल हो जाता है ना, एक्चुअली ये जो आप बता रहे हैं ना, सिखा रहे राजयोगा के बारे में, इससे लाइफ बड़ी इजी हो रही है,
2: इजी हो गई
1: और बहुत एक प्यारा सा मतलब रास्ता पाथ।
2: ये जो इजी थे ना, ये जो इजी वर्ड आपने यूज किया ना, यही नेचुरल वे ऑफ लिविंग है।
1: जैसे कि मैं पहले अगर होता कि मेरी वाइफ ने और उसके फ्रेंड्स ने इतना कुछ मुझे सुना दी, ये कर दिया, अब मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैंने थॉट लेवल से कितना इनको बोला है, कितनी नेगेटिविटी भेजी थी, ताकि कब इनके अंदर से वो मेरी ही थॉट का रिएक्शन मुझे मिला।
2: तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ब्लेम नहीं किया, ये भी सोल कॉन्शियसनेस है।
1: और फर्दर अपने आप को भी ब्लेम नहीं किया, लेकिन आपने क्या वो
2: वर्ड
1: बोला, ट्रांसफॉर्म, मैं हमेशा भूल जाता, ट्रांसफॉर्मेशन।
2: उसी सीन में ईगो क्या करता, पहली बात ब्लेम करता कि इन लोगों ने इस तरह से बात क्यों की, एक सेकंड एजिटेट होके रिएक्ट भी करता कि इन्होंने ऐसा कहा तो मैं इनको दो लाइन
1: एक का दो
2: और कहूंगा, एंड तीसरा जब बाद में बात खत्म भी हो जाती तो उनको ही जिम्मेवार समझता हर बात की, गलती उनकी ही थी। ये ईगो है, ये अहंकार है कि मैं ही राइट था, मैंने जो कहा वो ही सही था, क्योंकि मैं ये हूं, उन्होंने मेरे साथ कैसे बिहेव किया, मेरे घर में आके मुझसे ही ऐसा कहकर चले गए, मैं, ये ईगो की भाषा है सारे। सोल कॉन्शियसनेस की भाषा क्या है, ये थॉट्स मेरी क्रिएशन है, मैं मालिक हूं, मैं कई दिनों से नेगेटिव थॉट्स इनके बारे में क्रिएट कर रहा था। अवेयरनेस, ये कितनी अवेयरनेस है,
1: इससे पहले बिफोर अवेयरनेस अगर चुप भी हो जाता तो एक ना एक दिन तो बोलूंगा।
2: हाँ।
1: उस दिन लेकिन जो बोल गए मैं लिख तो दूं, अगर नहीं बोला तो आज तो लिख दूं,
2: लिख दो
1: या अब तो फोन करके बोल दूं कि आपने उस दिन जो कहा था ठीक नहीं था, मुझे बुरा लगा।
2: ये है
1: कभी तो करूं।
2: ये है सिद्ध करने का और जिद करने का संस्कार जो ईगो में होता है। अपनी बात को सिद्ध करना और जिद करना ये ईगो का साइन है। अपनी बात को छोड़ देना हल्के में, दूसरे के नजरिए को समझना, ये सोल कॉन्शियसनेस का संस्कार है। दिख रहा है ना सारा दिन?
1: अब मेरी समझ में आया है कि जिस दिन आपने एक बहुत पहले के एपिसोड में कहा था ईगो इज वीकनेस,
2: ईगो इज
1: कमजोर इंसान की ईगो होती है, तो आज मुझे ये क्लियर हुआ। तब मैंने बोला कितनी बुरी बात करते हैं, ईगो वाला तो होना, ईगो तो होना चाहिए।
2: हाँ।
1: क्योंकि मैं हूँ मैं।
2: हाँ।
1: और मतलब नहीं तो कमजोर तो वो होता है जिसको ईगो ही नहीं है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैंने मिला दिया था
2: सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। लोग कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के बीच में बहुत थिन लाइन है। एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो दिन और रात है, दे आर ऑपोजिट। ईगो है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं उस टाइम, और सेल्फ रिस्पेक्ट है ईगो नहीं उस टाइम। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मैं अपने आइडिया को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सामने वाले ने नहीं भी किया कोई बात नहीं। लेकिन ईगो है कि सारी दुनिया मेरे आइडिया को एक्सेप्ट करे तभी बात सही है, ये ईगो है। अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, ये सारा दिन याद रखना है कि ये अहंकार है। अहंकार है या नहीं कैसे पता चलेगा? यहां मन शांत है तो सोल कॉन्शियस है, कोई हलचल हो रही है टर्बुलेंट है तो ईगो कहीं हिल रहा है, वो कोई एंगर कोई फियर क्रिएट हो रहा है क्या? जैसे आपने कहा मेडिटेशन से कैसे ये बढ़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम बार बार इस कॉन्शियसनेस को फिर से रिवाइज करेंगे, इमर्ज करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वी विल स्टार्ट फीलिंग कि ये सब चीजें तो हम यूज कर रहे हैं, इनको लेकर हम इतना लड़ रहे हैं सब एक दूसरे के साथ। आज मैं आत्मा इस शरीर में हूं, कल मैंने ये शरीर छोड़ना है, चले जाना है। ये एक चीज भी अगर याद रहे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। हमारी दादी जी कहती है हर घड़ी जीवन को ऐसे जिए कि ये जीवन की अंतिम घड़ी है।
1: अच्छा,
2: तो क्या हो जाएगा? ये घड़ी मेरी जीवन की अंतिम घड़ी है तो मेरा जीवन की क्वालिटी क्या होगी? किससे फिर झगड़ा, किससे फिर कॉन्फ्लिक्ट? सपोज आज हमें पता चले कि मुझे आज शाम को शरीर छोड़ना है। मालूम पड़ गया अब आज का दिन है, तो क्या करेंगे अपने रिश्तों को?
1: किससे लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे,
2: क्यों लड़ेंगे? फ्यूटिलिटी देखें उस चीज की, फ्यूटिलिटी। क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो अपने साथ ये रिकॉर्डिंग्स ले जाएगी सारी। ये अवेयरनेस जब नहीं होती है, वी मीट पीपल जो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं जब मैं जाऊं तो भी उनसे बात नहीं करना। मतलब ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को क्या करना, बिल्कुल कंटिन्यूड रखना। अवेयरनेस
1: नहीं, मेरी आत्मा शांत नहीं होगी। क्या क्या बोलते हैं?
2: लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ गए तो हमारी आत्मा शांत होगी कैसे? हाउ विल इट पॉसिबल? पीस का संस्कार की बजाय कॉन्फ्लिक्ट का संस्कार लेके चले गए, ऐसी आत्मा शांत कैसे होगी? तो इसलिए ये भी सारा दिन अगर याद रहे, नॉट फियर ऑफ डेथ बट अवेयरनेस दैट द सोल हैज टू लीव दिस कॉस्ट्यूम। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अगर फियर ऑफ डेथ है तो वो एक नेगेटिव क्वालिटी है, डर, भय में जीवन जीना। लेकिन अगर अवेयरनेस है कि मैं आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है और जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी, मैं अपने संस्कार, अपने सारे रिकॉर्डिंग्स अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना है। अब एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस से हम छोटी छोटी बातों में लोगों से उलझना बंद कर देंगे। क्या उलझना है? किसके साथ क्यों कर रहे हैं ये? क्या, व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं, सिर्फ अहंकार, मेरी बात राइट है, मैं हर्ट हो गया, मुझसे बुरी तरह से बात कर ली, इन चीजों के ऊपर सामने वाले की एनर्जी से उलझना मुझ आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करता है, मेरे ऊपर एक ग्रूव बनाता है। सारा दिन में ये अवेयरनेस भी रहे, ये जो मैं सोच रही हूं पैटर्न बन रहा है, संस्कार रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आत्मा ये सीडी लेकर जाऊंगी, ये मेरे साथ जाएगा, मैं आत्मा जब नए शरीर में शुरू करूंगी ये संस्कारों के साथ शुरू करूंगी। अटेंशन,
1: जब मेरे नेक्स्ट जन्म में मैं इन संस्कारों के साथ
2: जाएंगे ना, हम जाएंगे ना। सोल कॉन्शियसनेस ये भी तो इतनी ब्यूटीफुल चीज सिखाती है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, यहाँ सब रिकॉर्ड है, अभी समय आया, सीडी इस प्लेयर से निकली, दूसरे प्लेयर में डाल दी, म्यूजिक सिस्टम बदलेगा सिर्फ, प्लेयर बदलेगा सिर्फ, सीडी इज द सेम।
1: मतलब फिर अगले जन्म में वही सीडी, इतना जो ग्रुप बढ़ जाएंगे और चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, रंग और पक्का हो जाएगा, जैसे आपने कहा व्हाइट पे, तो उसको निकालने में फिर मेहनत भी ज्यादा होगी ना।
2: आगे हम उसी गाने से शुरू करेंगे, उसी गाने को शुरू करेंगे, उसी रिकॉर्डिंग को शुरू करेंगे, तो वो और पक्के होते जाएंगे।
1: तो आपकी जो दादियां कहती हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं,
2: yes, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए इट्स सो इम्पोर्टेंट। ज्ञान अभी मिल रहा है, समझ मिल रही है, यूज करें उसको, अपने संस्कारों को बदल लें। अभी अगर क्षण आ गया, क्षण आ गया, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अभी अगर क्षण आ गया शरीर छोड़ने का, संस्कार नहीं चेंज किया था, लेकर जाएंगे, नया कॉस्ट्यूम लेंगे, बच्चा है, उसका वो सीडी है, वो गाने हैं, अब उस बच्चे को कब ज्ञान मिलेगा, कब समझ मिलेगी ना, कब वो संस्कार परिवर्तन होगा, अब वो उसी गानों के साथ स्टार्ट करेगा। फिर डिपेंड करता है वो किस माहौल में जाता है, वहां से उसको क्या वाइब्रेशन मिलती है। अब हमारे पास पावर है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना कि मैं आत्मा मेरे संस्कार लेकर जाऊंगी मेरे साथ। हम क्या करते हैं, सोचते नहीं है, दूर दूरादेशी नहीं है, तो हम कहते हैं आगे की किसने सोची, अभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो बच्चा जो पैदा होता है ना, वो जब वो संस्कारों के साथ पैदा होता है, तो कई बार वो जीवन भर उन संस्कारों के साथ दर्द में रहता है। तब हम कहते हैं पता नहीं क्या कर्म करके आए हैं, पता नहीं क्या पीछे करके आए थे जो ये हुआ। तो आगे जाके पीछे का रिग्रेट नहीं करना है, अभी चेंज कर लेना है ताकि आगे सिक्योर है।
1: जैसे आपने कहा था ना कि कई लोग मरने के बाद भी बोल के जाते हैं फैमिली को कि इस फैमिली से बदला लेना है, मतलब समझो इस फैमिली में 15 लोग हैं और उधर 25, तो 25 और 15 मिला के कितने लोगों की हम एनर्जी डिस्टर्ब करके जा रहे हैं। वैसे ही जब संस्कार भी जब हम हमारे यहाँ कट करते हैं इस जन्म में, तो अगले जन्म में कितने लोगों का फायदा होता है। जैसे ये दुश्मनी अगर बोलेगी एंड करना मेरे जाने के बाद, मतलब उल्टा अगर वो बोल के जाए वो आत्मा,
2: तो कितनी आत्माओं के वाइब्रेशन चेंज होने वाले हैं उसकी वजह से।
1: तो हमारे संस्कार बदलने से औरों का भी तो वो होता है।
2: मेरी जर्नी का आगे क्या रिजल्ट है, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे हमने उस दिन देखा एक फोटो खिंचवाने में कितना अटेंशन है, क्योंकि फोटोग्राफ क्या होगी, रिकॉर्ड में चली जाएगी, एल्बम में लग जाएगी ना। फिर हर बार जब एल्बम देखते हैं तो देखते हैं ये फोटो, हाँ यहाँ मैं स्माइल कर रहा हूं, देखते हैं ना। तो यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आत्मा संस्कार लेकर जाऊंगी, इसीलिए मैं आत्मा हूं ये याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि ये मर गया तो सब मर गया, मैं मर गया, नहीं, मैं आत्मा नहीं मर रही। दिस जर्नी इज लॉन्गर, इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ 70-80 ईयर्स, दिस जर्नी इज अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। जो रिकॉर्ड हो गया वो डिलीट नहीं होगा, ये मेरे साथ जाएगा, ये संस्कार मुझे आगे अनेक परिस्थितियों में फिर तकलीफ देगा। सपोज जैसे आपने कहा गुस्से का संस्कार है, अभी हो गया तो खत्म हो गया ना, पीस का संस्कार क्रिएट हो गया, अब जब आत्मा शरीर छोड़ेगी।
1: दोनों में से पावरफुल कैसे बनाए, पीस के संस्कार को मोर पावरफुल देन द गुस्से वाला,
2: डिपेंडिंग ऑन विच इज यूज्ड मोर ग्रूव। अब पीसफुली बात करना शुरू करें,
1: लेकिन एक बार पीसफुली पीस का संस्कार बनाने के बाद, नया ग्रुप या नया फोल्डर खोलने के बाद, फिर कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा कि टू यूज पीस मोर देन द अदर वन
2: टिल इट गोज इनटू द लूप।
1: ओके, टिल इट बिकम्स सो स्ट्रांग ऑटोमेटिक मोड में आना चाहिए।
2: लूप में चला गया ना एक बार, तब गुस्से का संस्कार बहुत रेयरली इमर्ज होगा, हो जाएगा फिर कभी।
1: आई हैड फॉरगॉटन वो ऑटो मोड में आ जाएगा,
2: वो ऑटो मोड फिर कभी गुस्सा आ जाएगा, बट इट विल बी वेरी वेरी वेरी रेयर, बिकॉज वो कभी बजेगा गाना। जैसे अभी ऑपोजिट है ना, अभी गुस्से का गाना ज्यादा बजता है, पीस का संस्कार कभी कभी। इसलिए लोग कहते हैं 2 मिनट शांति दो, 2 मिनट तो शांति से बैठने दो, मतलब शांति 2-2 मिनट वाली हो गई है।
1: हाँ, पूरा दिन तो ऑफिस में झंझट, रास्ते में झंझट, ट्रेनों में झंझट, आने जाने में सारा दिन झंझट में 2 मिनट में शांति,
2: 2 मिनट शांति दो। अब वो जो 2 मिनट शांति भी बोल रहे हैं, वो एक्चुअली बाहर वालों को बोल रहे हैं चुप कर जाओ, 2 मिनट शांति दो, लेकिन बाहर साइलेंस हो जाएगा, अंदर तो साइलेंस होना चाहिए। तो जब हम पीस का संस्कार, पेशेंस का संस्कार, धैर्यता, हो जाएगा काम, क्यों इतना एजिटेट हो रहे हो, धैर्यता, पेशेंस का संस्कार क्रिएट होगा, क्यों ऊंचा बोल रहे हो, धीरे धीरे संस्कार क्रिएट होगा, थोड़े दिन प्रैक्टिस, उसके बाद वो जब ग्रूव में चला जाएगा, अभी भी गुस्से का संस्कार, इरिटेट होने का संस्कार, ऊंची आवाज में बोलने, वो होगा, कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी, और उस पे भी अटेंशन रखा तो वो इट्स ना के बराबर। अब ये मेहनत करके या ये थोड़ा सा वर्क करके आत्मा शरीर छोड़ेगी, नया शरीर लेगी, तो वो बच्चा कैसा होगा? दिस इज द जर्नी, दिस इज द जर्नी, नो,
1: नया जीवन, नया संस्कार।
2: व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे इज, एक बार का किया हुआ थोड़ा सा एफर्ट एट अटेंशन लॉन्ग टर्म रिकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, लॉन्ग टर्म, यू विल कैरी दैट संस्कार लॉन्ग टर्म। अब जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, पीस का संस्कार उसका लूप में है। डोंट वी फाइंड चिल्ड्रन विद डिफरेंट संस्कार्स? किसी एक बच्चे का गुस्से का संस्कार लूप में है।
1: उल्टा हो रहा है आजकल, जैसे जिसके पेरेंट्स गुस्से वाले संस्कार बच्चे को देखते बोलते हाँ ये बहुत अच्छा बढ़ेगा आगे चल के, इस आज के जमाने में ये चाहिए, और जहां पीस है ये बड़ा डरपोक है, बड़ा कमजोर है, पता नहीं कैसे चलेगा, पता नहीं कैसा बिजनेस करेगा।
2: वो क्यों? जैसा म्यूजिक आप प्ले करते हैं, आपको तो वैसे वाला ही म्यूजिक पसंद आने वाला है, राइट? सपोज आपकी सीडी पर बहुत फास्ट लाउड रॉक म्यूजिक चलता है, और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ जिसकी सीडी पर भजन चल रहे हो, तो पसंद थोड़ी आएंगे, कहेंगे ये क्या बजा रहा है,
1: ये तो बुढ़ापे में करने की चीज है।
2: आज अगर किसी घर में, परिवार में बच्चा आता है, और वो छोटा बच्चा ही यंग एज से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है या पूजा पाठ में ज्यादा इंक्लाइंड है, ये सब क्या कर रहा है, ये कोई इस एज में करने की चीजें हैं, वो सीडी के गाने हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा गाना उस सीडी से अलग है, और हमारा ईगो जो है वो कहता है हमारा गाना सही है। सोल कॉन्शियस होते तो देखते कि राइट गाना क्या है हर आत्मा के लिए, लेकिन ईगो ये नहीं देखती कि राइट गाना क्या है आत्मा के लिए। ईगो कहती है मेरा गाना ही राइट है। दोनों लाइंस में बहुत फर्क है। आज पूरा दिन अगर हम ये एक होमवर्क करें कि मैं जो सोच रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जो व्यवहार कर रही हूँ, ये मुझे आत्मा पे रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे साथ आगे जाने वाला है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरे साथ इटर्नल रिकॉर्डिंग बनकर, मेरा हिस्सा बनकर मेरे साथ आगे जाने वाला है। अटेंशन 10 में से 5 बार बच जाएंगे, डेफिनेटली बचेंगे, क्योंकि ये भी एक थॉट क्रिएट की ना, तो यहां एक रिकॉर्डिंग हुई, तो जैसे ही वो कुछ आएगा मन कहेगा ये साथ जाने वाला है, तो लंबा नहीं खींचेंगे बात को, जल्दी से उसको फुल स्टॉप लगा देंगे, नहीं तो लंबा खींचते हैं, सोचते जाते, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सारा कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है। कैसे? सपोज वी आर शूटिंग दिस प्रोग्राम, कैमरा ऑन है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम काम की बात करेंगे ना जो रेलेवेंट है। अब सपोज कैमरा ऑन है और हम कुछ और ही बात कर रहे हैं, इधर की उधर की, ये कैसे ये वैसे, तो कोई कहेगा ना क्या कर रहे हो, कैमरा ऑन है ऐसे ही रिकॉर्ड करते जा रहे हो।
1: और ये सीडी हमारे जाने के बाद भी बजते रहेंगे, वो हमेशा के लिए रहेंगे।
2: तो कितना ध्यान रखना है,
1: रिकॉर्डेड
2: कितना ध्यान रखना है,
1: यहाँ ध्यान रखते हैं ना।
2: आज यहाँ ध्यान रखेंगे, आज यहाँ ध्यान रखेंगे, एक एक घंटे का अलार्म लगाते हैं और हर एक घंटे के बाद अपने आप को सिर्फ एक थॉट देते हैं। आज
1: एक एक मेडिटेशन करते हैं, एक एक मिनट के, एक एक घंटे के बाद।
2: हाँ, आज तो सिर्फ रिमाइंडर भी दे दें, चलो मेडिटेशन भी अभी शुरू नहीं हुई, रिमाइंडर आफ्टर एवरी वन आवर, माई थॉट्स, माई वर्ड्स, माई एक्शंस आर एन इटर्नल रिकॉर्डिंग।
1: अगले जन्म में मैं इनको लेके जा रहा
2: हूँ, परमानेंट, हर जन्म में, अगले जन्म में क्यों?
1: अनलेस आई स्टॉप जो उसमें लिखा था,
2: अनलेस आई स्टॉप द लूप एंड क्रिएट अनदर वन, ये तो मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग है। आज अगर हर घंटे के बाद हम ये होमवर्क करके देखते हैं, कोई भी चीज थोड़ी सी मेहनत करे बिना नहीं होने वाला है। चाहे इसको आज हम अपने फोन पे एंटर करते हैं, एक अलार्म लगा दें, एक नोटपैड बना दे फोन पे, उस पे लिखते, चाहे ये हम अपने स्क्रीन सेवर का मैसेज बना दें आज, माय थॉट वर्ड एक्शन इज बिकमिंग माय इटर्नल रिकॉर्डिंग व्हिच विल ऑलवेज रिमेन विद मी। अटेंशन,
1: माय थॉट वर्ड एंड एक्शन,
2: मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म, मुझ आत्मा की रिकॉर्डिंग।
1: अभी तक इतने जन्मों से
2: वो तो बन गया है ना,
1: तो उसको अभी
2: हम
1: नया फोल्डर
2: हम नया कर रहे हैं ना, हम नया क्रिएट कर रहे हैं ना। दिस इज माई इटर्नल रिकॉर्डिंग, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी संस्कार साथ में लेकर जाएगी, ये मुझे हमेशा याद रखना है। बहुत आज सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें।
1: Sure, sister, definitely आज एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
3: Our original संस्कार्स and the संस्कार्स we have acquired on the journey of many lives are all recorded on the soul. The संस्कार्स do not get deleted. We only need to be careful which one to use and which not to use. Like we choose which song to play from a list of songs on a CD. Ego is attachment to a wrong image of myself. Attachment to our opinion always being right and not being able to accommodate another's opinion is also ego. We make our opinion our identity, and our opinion is right means I am right. Self-respect is the opposite of ego. Ego is attachment, and when there is attachment, there will be resistance and fear. With ego, the mind will be disturbed due to fear, anger, hurt, or jealousy. With self-respect, mind will be at ease and peace will be natural. So, when the mind is disturbed, we need to check our attachment and then release it. We should not fear death, but we should be aware that we can leave the body anytime. If we have this awareness, we will not entangle with other people and create negative recordings on the soul. Always remember, we will be carrying every recording with us to the next costume.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: काम है।
1: ओहो कत्ल करके चले ये वफा खूब है।
0: हाय नादान तेरी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

झटका झटका। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडिओ पुणेरी आवाज।
2: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
4: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा कि हम देखते हैं शरीर की सुंदरता पर लोग उसकी खूबसूरती के आधार पर उसके आंतरिक भी गुणों का पता करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुंदर है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर होते हैं कर्म में। तो एक दिन हम देखते हैं कि एक गुब्बारे वाला लाल पीले हरे गुब्बारे काले गुब्बारे बेच रहा था। कभी कभार वह एक दो गुब्बारे हवा में छोड़ देता था ताकि बच्चे आकर्षित हो। एक सांवरे रंग का छोटा बच्चा गुब्बारे वाले के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अपने सांवरे रंग की वजह से उस बच्चे को कई बार अवमानना का सामना करना पड़ता था। बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे तो वह भी आसमान में उड़ जाएगा? गुब्बारे वाला सोच में पड़ गया। उसकी नजर बच्चे पर गई तो दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसने बड़े प्यार से बच्चे को जवाब दिया, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो गैस है उसकी वजह से आसमान की ओर जाता है। हम भी बाहरी दिखावे या बाहरी संपत्ति के कारण नहीं, अपितु अपने दिव्य गुणों, श्रेष्ठ व्यवहार, उत्तम विचार, मीठे बोल, दया और करुणा आदि के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर होते हैं कर्म। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र, जिसके जीवन में ये सुंदरताएं हैं वही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। जमाना भी उसी का दीवाना है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। सुंदर मन के बिना सुंदर चेहरा कांच की उस आंख जैसा होता है जो चमक तो सकती है लेकिन किसी चीज को देख नहीं सकती। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, परंतु चरित्र की सुंदरता मृत्यु के बाद भी स्मरण रखी जाती है। अतः हम देखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कर्म करे तो जीवन सुंदर बन जाएगा। अच्छी सोच जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जिंदगी में उन लोगों की जो पसंद है उन्हीं लोगों को आप पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। जिस शरीर को आप सुंदर कहते हो, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखाई देगी कि इसके अंदर क्या है। भीतर तो बस रक्त, मल, रोग और कचरा भरा पड़ा है, जिस शरीर को कि अदाओं पर हम मर मिटते हैं। रात रात करवटें बदलते हैं, मृत्यु के बाद वह आकर्षण कहाँ चला जाता है। लोग इसी सुंदर शरीर की मृत्यु के बाद उसे जितना जल्दी हो सके घर से निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं सड़ने न लगे। यह शरीर मिट्टी बन जाता है, फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? सुंदरता शरीर में नहीं होती, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा में है, जो न मरती है, न जलती है, न कटती है और न ही गलती है। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं, आत्मा में है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसे कि हम देखते हैं हमें क्या चाहिए जिंदगी में, साधन नहीं, साधना सुंदर हो, चित्र नहीं चरित्र सुंदर हो, भवन नहीं भावना सुंदर हो, साधन नहीं साधना ही सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं परंतु अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। संकल्प शब्द और कर्म में पवित्रता जीवन की सुंदरता है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। एक सुंदर मन हमारे सुंदर चेहरे से कई गुना अच्छा है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। रंग रूप और कद काठी को लेकर जब किसी प्रकार की भावनाएं मन और मस्तिष्क पर हावी होते हैं, तब व्यवहार में ईर्ष्या क्रोध नफरत चिड़चिड़ापन नजर आने लगता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, आत्मनिर्भरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, असुरक्षा की भावना जागृत होती है और निराशा हताशा के कारण इंसान कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। हमें अपनी कमियों को भी ताकत बनाना है, अपनी कमी को ताकत बनाए, प्रेरणा ले और आगे बढ़े। खुद की छवि की तुलना दूसरों से करने से पहले यह भी जानना है कि सूरज से कहीं ज्यादा सीरत मायने रखती है। अच्छा व्यवहार और सद्गुण हमें दूसरों से अलग और बेहतर बनाएंगे। ऐसे लोगों के बीच रहें जिनके लिए रंग रूप और शारीरिक खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, जो केवल व्यवहार और गुणों की वजह से ही हमसे जुड़े हैं। याद रखें, जीवन की कुछ चीजें ऐसी है जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे छोटे कद की लंबा या ज्यादा लंबे को छोटा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सांवरे रंग और गोरा नहीं बनाया जा सकता, और यदि कोई समस्या आनुवंशिक है तो उसे भी बदला नहीं जा सकता। लिहाजा इन्हें स्वीकारें और श्रेष्ठ गुणों से स्वयं को भरपूर बनाने की कोशिश करें। बहुत से अन्य लोग भी हमारे जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्होंने कैसे अपनी कमियों को ताकत बनाया, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़े। व्यक्ति के गुण सर्वोपरि होते हैं, इसलिए अगर हम लगातार किसी नए हुनर को हासिल करने से खुद को
जोड़े रखते हैं तो दिखने दिखाने की तरफ हमारा भी ध्यान नहीं जाएगा। हुनर की कद्र करने वालों और देह के पार मन को समझने वालों के साथ रहें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और इसी तरह हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा हम देखते हैं कि हीन भावना अक्सर लोगों पर हावी होने लगती है, ध्यान रहे अपने ऊपर हीन भावना का विचार हावी ना होने दें। अक्सर हम सामान्य से कुछ कम दिखने या प्राप्त होने की स्थिति में हीनता के विचार में डूब जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ऐसे में स्वयं के नकारात्मक विचारों का समर्थन ना करें और सकारात्मक पहलू पर ध्यान देकर स्थिति चाहे जैसी है उसे स्वीकार करें। आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं, शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है। सुंदर से सुंदर देह से भी एक दिन सुंदरता छूट जाती है। जगत की व्यर्थता को पहचानें ताकि हम भीतर की श्रेणियां उतरने लगे। सुंदर होने का अर्थ सौंदर्य प्रसाधनों से उसके उपयोग में नहीं है। ध्यान, योग, मेडिटेशन हमें सुंदर बनाता है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता जाएगा वैसे वैसे हमारे भीतर एक अपूर्व सौंदर्य लहराने लगेगा। दया भावना से हमें देखना है हम अधिक युवा कैसे बने रहेंगे। आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। वर्तमान समय युवा पीढ़ी आकर्षण बने रहने के लिए आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक का अधिक उपयोग कर रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती यह असली खूबसूरती नहीं है। दूसरों के लिए सदा दया की भावना रखने से हम अधिक युवा और आकर्षक बने रहेंगे। ब्रेन भी सदा एक्टिव रहेगी क्योंकि आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है और यही सुखी जीवन जीने का भी सबसे शक्तिशाली उपकरण है। दूसरों से सदा सहानुभूति रखेंगे तो उदासीनता या नापसंद को भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दयालुता का भाव बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी है। मेडिटेशन से दया की भावनाएं चारों तरफ फैलती है। तो देखा आपने कैसे हमें मेडिटेशन से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो इसे हम आगे अपने जीवन में जारी रखें, इसकी हम सब कोशिश करेंगे और आप सभी कोशिश करें कि मेडिटेशन अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसे बनाना है, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बना रहे और हमारी आंतरिक खूबसूरती जो है वो भी बनी रहे। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। तो ओम शांति, नमस्कार।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: है। सकीना तुम भी डांस करो।
1: मैं मेरी बात सुनो।

0: आला आला आला
1: अहो काय आला
0: आला आला आवाज रेडिओचा

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस

0: वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद का जीवन बड़ी ही घटनाओं से भरा रहा है। उनके भारत भ्रमण के दिनों में वे भारत के लगभग सभी प्रांतों में गए। उन स्थानों में उनकी भेंट तरह तरह के लोगों से हुई। उन्हें खट्टे मीठे कड़वे अनुभव भी हुए, पर कभी वे विचलित नहीं हुए। शांत भाव से सभी कठिनाइयों का सामना किया और अपने ज्ञान तथा भक्ति से सबको प्रभावित किया। केवल मानव ही नहीं, प्रकृति एवं पशु पक्षी भी उनके सामने माथा टेक देते थे।
1: वृंदावन की एक और मजेदार घटना है। एक दिन स्वामी जी ने अपने एक मात्र वस्त्र कौपीन को धोकर किनारे पर सूखने को डाल दिया और स्वयं स्नान करने के लिए श्री राधा कुंड के पवित्र जल में उतर पड़े। स्नान कर चुकने के बाद स्वामी जी ने देखा तो कौपीन गायब। बड़े विस्मय के साथ उन्होंने देखा, एक बंदर कौपीन उठाकर ले गया है और वह वही किनारे पर एक वृक्ष की डाल पर बैठा है। जल में खड़े खड़े उन्होंने उस बंदर से काफी अनुनय विनय की, पर बंदर ने केवल मुंह बनाकर कौपीन ना लौटाया। तब तो ये सोचकर कि संपूर्ण नग्नावस्था में अब कैसे भ्रमण करेंगे, वे बालक की तरह व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, क्या यही श्री राधा रानी की इच्छा है? तुरंत उनके व्यथित हृदय में अभिमान जाग उठा। जल में से निकलकर स्वामी जी घने जंगल में घुस गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि जब तक पहनने का वस्त्र ना मिलेगा, तब तक इसी अरण्य में ही अनशन करते रहेंगे।
0: इतने में उन्होंने सुना कि कोई दूर से उन्हें बुला रहा है। घूमकर देखा, एक व्यक्ति बड़ी तेजी से उनकी ओर चला आ रहा है, पर स्वामी जी ने उसकी परवाह न की। वे अपनी धुन में ही आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वह व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और आकर स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। स्वामी जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ खाद्य पदार्थ है तथा एक नया गेरुआ वस्त्र भी है। उस व्यक्ति के अनुरोध से मंत्र मुग्ध जैसे स्वामी जी ने उसके उपहारों को जैसे ही ग्रहण किया कि वह व्यक्ति उस घने जंगल में अदृश्य हो गया।
1: संभव है वो व्यक्ति स्वामी जी की दुर्दशा दूर से ही देख रहा हो। खैर, वस्त्र पहनकर स्वामी जी फिर राधा कुंड लौट आए। आकर उन्होंने देखा कि उनका वो पहले का कौपीन जहाँ पर उन्होंने उसे सुखाया था वहीं पर सुरक्षित रखा हुआ है। अब तो वे बड़े विस्मित हुए। इस घटना से सारी युक्ति और विचारों की सीमा को पार कर उनका हृदय प्रेमानंद से भर गया। वे आनंद विभोर हो गए और तन्मय चित से श्री राधा कुंड के तट पर कृष्ण गुणगान करने लगे।
0: वृंदावन प्रवास के दिन खत्म हुए। विवेकानंद वहां से हरिद्वार जाना चाहते थे। रास्ते में हाथरस नामक शहर में वे थोड़े दिन रुके। एक दिन थके हारे विवेकानंद एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। इतने में हाथरस स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर श्री शरद चंद्र गुप्त महाशय वहां से गुजरे। उन्होंने विवेकानंद को पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हुए देखा। शरद चंद्र को जाने क्या लगा, वे उनके पास आए। युवा सन्यासी के मुख पर एक ऐसा सौम्य भाव था जिससे आकृष्ट होकर के शरद चंद्र ने सोचा कि साधु के लिए कुछ करना अच्छा होगा। उन्होंने कहा,
2: प्रणाम महाराज।
3: कल्याण हो तुम्हारा।
2: महाराज, आप क्रांत दिख रहे हैं।
3: हाँ हाँ, चलना बहुत हुआ, थक गया हूँ।
2: महाराज, क्या आप भूखे हैं?
3: हाँ, भूख तो लगी है।
2: तो दया कर मेरे घर चलिए और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मेरा घर पास ही है महाराज।
3: क्या खिलाओगे?
1: शरद चंद्र जौनपुर में पले बढ़े थे। वे बंगला अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने जवाब में फारसी का एक शेर पढ़ दिया जिसका अर्थ है,
2: हे प्रिय, तुम मेरे घर आए हो, मैं अपना कलेजा मसाले में पकाकर तुम्हें खिलाऊंगा।
1: दोनों हंस पड़े। स्वामी जी के गुणों से मुग्ध होकर शरद चंद्र ने उन्हें हाथरस में उनके घर में रहने का अनुरोध किया। विवेकानंद मान गए।
0: आनंद मंगल से भरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन शरद चंद्र ने स्वामी जी से कहा,
2: मुझे कुछ उपदेश दीजिए महाराज।
3: ज्ञान प्राप्ति अगर करना चाहो चंद्र वदन पर राख मलो।
2: जी।
3: कर ना सको ये तो इसी क्षण अपने पथ पर चले चलो।
2: स्वामी जी आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ।
1: शरद चंद्र के बड़े भाई अधर चंद्र गुप्त ने बहुत पहले ही संन्यास ग्रहण किया था, इसलिए शरद चंद्र के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। स्वामी जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने सुना कि ब्रिजेन बाबू नामक एक भद्र व्यक्ति निकट ही रहते हैं। जितना कुछ सुना उससे स्वामी जी को लगा कि वे जैसे उनके परिचित हों। अतः उनके घर जाकर उनसे मिले। देखते ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और ब्रिजेन बाबू ने स्वामी जी से कुछ दिन अपने घर में रहने का अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद शरद बाबू के घर लौट कर जाएंगे, ये कहकर स्वामी जी तत्काल वहीं ठहर गए।
0: इस मकान में रहने के समय उनके आकर्षण से बंगाली टोला के लोग मानो वहां टूट पड़े। कुछ दिन पहले से इन लोगों में काफी विरोध और मन मुटाव चल रहा था। स्वामी जी के आगमन से वह समाप्त हो गया। समागत व्यक्तियों के साथ वे धर्म और स्वदेश से संबंधी काफी चर्चाएं करते थे। शरद बाबू और उनके मित्र निकट कृष्ण बाबू के घर भी वे अक्सर जाते थे। दोनों के साथ उनकी काफी घनिष्ठता हो गई थी। इन दोनों के आग्रह पर स्वामी जी इसके बाद कुछ दिन लोगों के घर पर रहने लगे और पहले की तरह ही आगंतुक व्यक्तियों के साथ धर्म चर्चा के दिन बिताने लगे। उनके कंठ संगीत से आकृष्ट होकर के अनेक गणमान्य और उच्च पदस्थ व्यक्ति नित्य उनकी बैठक में भाग लेते। संध्या का समय संगीत में ही कटता था।

0: एक दिन शरद चंद्र ने स्वामी जी से पूछा,
1: महाराज आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं?
2: देखो बच्चा, मेरा एक महान जीवन व्रत है, किंतु मैं अपनी अल्प क्षमता के कारण ये सोचकर उदास हूं कि इस व्रत का कैसे निर्वाह करूंगा। इस व्रत को पूरा करने का आदेश मुझे अपने गुरु से मिला है
1: जी।
2: ये व्रत है मातृभूमि का पुनरुद्धार करना। इस देश में आध्यात्मिकता का अत्यंत ह्रास हो गया है और सर्वत्र भूख ही भूख व्याप्त है। भारत को सचेतन और गतिशील होना होगा तथा उसे अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा विश्व विजय करनी होगी।
1: मैं आपके साथ इस काम को करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा कहिए महाराज।
2: क्या तुम भिक्षा पात्र और कमंडलू लेकर इस महत कार्य को करने के लिए तैयार हो?
1: जी।
2: क्या तुम घर घर जाकर भिक्षाटन कर सकते हो?
1: हाँ महाराज, आपका आदेश सराखों पर।
3: और परीक्षा देने के लिए हाथ में भिक्षा पात्र लेकर कुलियों के घर से भिक्षा लेने निकल पड़े। शरद चंद्र के मन की दृढ़ता और साहस देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कुछ दिन इस गुप्त परिवार में रहने के बाद स्वामी जी ने हाथरस छोड़ने का निश्चय किया। एक दिन शरद बाबू को बुलाकर उन्होंने कहा,
2: सन्यासी के लिए एक स्थान में अधिक रहना अनुचित है और विशेषता तुम लोगों के प्रति मैं एक आकर्षण का अनुभव कर रहा हूं, अतः मेरे लिए शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर चला जाना ही बेहतर है।
1: स्वामी जी, आप मुझे अपने सत्संग से वंचित मत करिए, अपना शिष्य बनाकर साथ चलिए।
2: क्या तुम सोचते हो कि मेरा शिष्य होने से ही तुम्हारी आध्यात्मिक पिपासा तृप्त होगी? किसी व्यक्ति के गुरु होने की योग्यता मुझ में है या नहीं, इसमें संदेह है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर कर्म किए जाओ, वे ही सब प्रकार के कल्याण करेंगे। मैंने अभी श्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने का संकल्प किया है। तुम दुखी न हो, प्रसन्न मन से मुझे विदा दो, मैं फिर से हाथरस लौटने का प्रयत्न करूंगा।
3: शरद चंद्र इस प्रकार की सांत्वना से संतुष्ट होने वाले ना थे। उन्होंने उत्तर दिया,
1: आप कुछ भी कुछ न कहें महाराज, आप जहां जाएंगे मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपको मुझे दीक्षा देनी ही होगी महाराज।
3: विवश हो स्वामी जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। इसके बाद शरद अपना कार्यभार दूसरे को सौंपकर स्वामी जी के साथ ऋषिकेश गए। उनका नया नाम स्वामी सदानंद रखा गया।
0: कल्पना में सन्यासी का जीवन जैसा प्रतीत हुआ था, वास्तव में सामने होकर के शरदचंद ने देखा कि यह उनकी अपेक्षा से भी कठिन है। गृह सुख में अभ्यस्त उनकी दृष्टि में यह सन्यासी जीवन कठोर साधन, अनिश्चितता और शारीरिक कष्टों का सम्मिलित रूप प्रतीत हुआ। वो तो मानो विविधताओं से भरा यह जीवन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। उन दिनों को याद करके शरदचंद्र ने कहा था,
1: एक बार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा करते समय भूख प्यास से अवसन्न हो मेरे मूर्छित हो जाने पर स्वामी जी ने सेवा कर निश्चित मृत्यु से मेरी रक्षा की थी। और एक बार भयावह तेज धार वाली और फिसलन भरे पत्थरों से व्याप्त पहाड़ी नदी को पार करते समय वे पथ प्रदर्शक की भांति मेरे घोड़े को पकड़े पकड़े ले गए थे। मेरे जीवन की रक्षा के लिए कितनी ही बार उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। मित्रों, मैं उनकी बात कैसे कहूं, केवल यही कह सकता हूं वे थे प्रेममय, प्रेम मूर्ति, प्रेम स्वरूप। मैं जब इतना दुर्बल हो गया था कि किसी तरह डगमगाते हुए चल पाता था, तब उन्होंने मेरे सामान यहाँ तक कि जूते भी अपने कंधे पर वहन किए थे।
0: बाद में जब भयंकर रोग से पीड़ित शरदचंद्र ने एक बार स्वयं को अत्यंत असहाय समझकर स्वामी जी से पूछा था कि क्या वे उनको सदा के लिए छोड़कर के जाएंगे, तब स्वामी जी ने स्नेह पूर्वक कहा था,
2: कैसे बेवकूफ हो, क्या तुझे याद नहीं मैंने तेरे जूते तक धोए हैं।
0: और एक बार भ्रमण करते करते उन लोगों ने एक जगह पर आकर के देखा कि मनुष्य की बहुत सारी हड्डियां और गेरवे वस्त्र के फटे टुकड़े यहां वहां बिखरे पड़े हैं। स्वामी जी ने उस ओर उंगली से निर्देशित करते हुए कहा,
2: देखो वहां किसी साधु को बाघ ने खाया है, तुझे डर लग रहा है क्या?
1: नहीं स्वामी जी, आपके साथ रहने पर कोई डर नहीं लगता।
0: नव दीक्षित शिष्य स्वामी सदानंद गुरुदेव के बताए हुए पथ पर कठोर साधना में लीन हो गए, पर शारीरिक परिश्रम में अभ्यस्त न होने के कारण वे नवीन सन्यासी कुछ ही दिनों के बाद अस्वस्थ हो गए। स्वामी जी बाध्य हो शिष्य के साथ फिर हाथरस लौट आए, पर यहाँ आकर स्वामी जी ने भी अस्वस्थ होकर के शैया ग्रहण कर ली। यहाँ के कुछ उत्साही नव युवकों तथा गुप्त परिवार के प्रयत्नों एवं सेवा भाव से थोड़ी समय में फिर से स्वस्थ होकर के स्वामी जी वराहनगर मठ लौट गए। बाद में कुछ दिनों में सदानंद भी स्वस्थ होकर के सन 1888 ईस्वी के नवंबर महीने में मठ में आ गए तथा अन्य सन्यासियों द्वारा उन्हें भी बड़े स्नेह के साथ रामकृष्ण संघ में सम्मिलित कर लिया गया।
3: इस बार स्वामी जी ने सन 1888 ईस्वी में वराहनगर मठ में पहुंचकर पूरा एक वर्ष गुरु भाइयों के साथ आनंद से व्यतीत किया। केवल बीच में एक बार 1889 ईस्वी के ग्रीष्मकाल में स्वास्थ्य लाभ एवं आत्मीय स्वजनों से मिलने के लिए वे शिमुलत्ता गए थे। हाथरस से लौटकर वे निश्चय ही अपने अनेक गुरु भाइयों को मठ में नहीं देख सके, कारण उस समय वे लोग तीर्थ भ्रमण या तपस्या में निरत थे, किंतु ग्रही भक्तगण अपने अपने घरों में थे। पहले की भांति इस बार भी स्वामी जी अवशिष्ट गुरु भाइयों के साथ ध्यान धारणा में डूब गए।
0: बिहार और उत्तर पश्चिम प्रदेशों में पैदल भ्रमण कर तथा तीर्थ स्थानों में उन्हें विभिन्न प्रकार के आचार व्यवहारों एवं रीति रिवाजों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने देखा था धर्म के प्रति अनुराग की कमी नहीं है, पर सामाजिक जीवन में स्वाभाविक गतिशीलता नहीं है। यह समस्या केवल मुट्ठी भर शिक्षित लोगों की ही नहीं वरन भारत के विशाल जन समुदाय की समस्या है। पूर्ववर्ती सुधारकों की तरह जातीय समस्याओं को कुछ इने गिने तथा कथित शिक्षित व्यक्तियों की दृष्टि से देखने की संकीर्णता उनमें नहीं थी। श्री रामकृष्ण के जीवन और उपदेशों का विश्लेषण कर वे अपने गुरु भाइयों से कहते,
2: दोष धर्म का नहीं है, वरन धर्म के नाम पर धर्म का व्यवसाय करने वाले गुरु पुरोहितों और पंडों ने ही समाज पर अधिपत्य फैलाकर समाज जीवन को पंगु बनाए रखा है। शत शत वर्षों के विधि निषेध के अंधानुकरण ने समाज में एक और जैसे वंश और रक्त की श्रेष्ठता का मिथ्याभिमान सृष्ट किया है। उसी प्रकार दूसरी ओर उसने हीनता बोध, विभिन्न संप्रदायों तथा अनेकानेक शाखा प्रशाखाओं वाले कृत्रिम जाति विभाग को जन्म दिया है। यदि हम समग्र भारतवासियों को एक अखंड जाति में परिणित करना चाहते हैं तो हमें इन सब गहरे भिदे हुए संस्कारों के विरुद्ध खड़े होकर ये प्रचार करना होगा कि धर्म की साधना में तथा सामाजिक सुख सुविधा की प्राप्ति में प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है। ये ठीक है कि यह भावधारा लोगों को सहज ही ग्राह्य न होगी, काम उतना सरल नहीं है।
3: इस समय लगभग एक वर्ष स्वामी जी ने वराहनगर मठ तथा बाग बाजार कलकत्ते में बलराम बसु के मकान में व्यतीत किया। अधिकांश समय वे शास्त्रों के अध्ययन में ही व्यतीत करते थे। अपने विद्वान गुरु भाइयों के साथ वेदांत और पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करते थे। इसी समय काशी के प्रमदादास बाबू ने इन निर्धन सन्यासियों को वेदांत तथा अष्टाध्यायी के ग्रंथ दान दिए थे। इस बात का उल्लेख स्वामी जी ने अपने एक पत्र में कृतज्ञता के साथ किया है। 1888 फरवरी मास में स्वामी जी एक बार श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कमारपुकुर तथा श्री माता जी की जन्मभूमि जयराम बाटी गए थे और उसके बाद कुछ दिन शिमुलत्ता में रहकर जुलाई मास में कलकत्ता लौट आए थे।
0: इस समय स्वामी जी बड़े उत्साह के साथ उपनिषद और शंकर भाष्य का अध्ययन कर रहे थे और प्रत्येक समस्या व संदेह को मिटाने के लिए काशी में प्रमदा दास बाबू के पास पत्र लिख रहे थे। इस समय 4 जुलाई के एक पत्र में अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रमदा दास बाबू को लिखा,
2: ये बात ठीक है और कई बार मैंने अनुभव भी किया है कि नाना प्रकार के नए नए मतों को मस्तिष्क में धारण करने से समय समय पर कष्ट झेलना पड़ता है, परंतु अब की बार तो मुझे एक दूसरे ही प्रकार का रोग हुआ है। ईश्वर के मंगल हस्त में मेरा विश्वास अभी मौजूद है जो सदा अटल रहेगा। शास्त्र पर भी मेरा विश्वास है, परंतु भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी कि मैंने जीवन के गत 5-7 वर्ष लगातार कई प्रकार की विघ्न बाधाओं को देखा, परंतु पूर्ण रूप से स्वयं अब तक कुछ भी नहीं कर सका हूं। यही बड़ा कष्ट है।
0: उन्होंने एक दूसरे पत्र में लिखा,
2: विशेष रूप से कलकत्ते के पास रहकर तो कुछ भी होने का उपाय नहीं दिखता। मेरी मां और 2 भाई कलकत्ते में रहते हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। मझला भाई कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है और तीसरा छोटा है। उनकी स्थिति पहले ही बहुत अच्छी थी, परंतु पिताजी की मृत्यु के बाद से बहुत शोचनीय हो गई है। यहां तक कि कभी कभी उपवास करके ही दिन व्यतीत हो जाता है। इस पर भी संबंधियों ने उन्हें कमजोर समझकर पैतृक घर से निकाल बाहर कर दिया था। अंत में हाईकोर्ट से मकान का कुछ भाग मिला, पर हुआ ये कि उस मुकदमेबाजी में वे सब कुछ खो बैठे, और ऐसा तो प्रत्येक मुकदमे में होता ही है।
3: इन पत्रों में उनकी मनोदशा लक्षित होती है। उन दिनों में वे बहुत बेचैन रहा करते थे। उन्होंने प्रमदा बाबू को अपनी मनोवेदना जताई थी।
2: कलकत्ते के पास रहने से उनकी दुखद स्थिति देखने के कारण कभी कभी रजोगुण की प्रबलता से अहंकार के विकार रूप कार्यकारी वासना का उदय हो जाता है। उस समय मन के भीतर बड़ा घोर संग्राम होने लगता है। इसलिए तो मैंने लिखा है कि मानसिक स्थिति भयंकर है। अब मुकदमा भी समाप्त हो गया है। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ दिन कलकत्ते में रहकर सब कुछ समाप्त कर इस शहर से हमेशा के लिए विदा ले सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हृदय महान ईश्वरी बल से बलवान हो और सभी प्रकार की माया मुझसे दूर हट जाए।
0: परंतु दिसंबर महीने के पहले स्वामी जी कलकत्ता छोड़ न सके। वे कलकत्ते से वैद्यनाथ गए। वहां कुछ दिन रह करके उनके हृदय में काशी दर्शन के लिए व्याकुलता उत्पन्न हुई, परंतु विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। 30 दिसंबर 1889 को वे प्रयाग धाम से प्रमदा बाबू को लिखते हैं,
2: आपको एक पत्र में लिखा था कि 2-1 दिन में काशी जा रहा हूं, परंतु विधि के विधान का खंडन कौन कर सकता है। मुझे इस बात की सूचना मिली कि योगानंद नाम के मेरे एक गुरु भाई चित्रकूट ओंकारनाथ आदि का दर्शन कर यहां आकर माता के रोग से पीड़ित हो गए, अतएव उन्हीं की सेवा टहल करने के लिए मैं यहां आया हूं। अब मेरे गुरु भाई संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, परंतु मेरा मन काशी जाने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा है।
0: हम देखते हैं कि स्वामी जी के अशांत मन को शांति नहीं मिली। वे कभी विश्वनाथ के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। क्या उन्हें वहां शांति मिली, ये हम जानेंगे अपने अगले अंक में।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उड़ेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो कुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

भर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी छोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली।

कुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, खुद को समझा और किस तरह से खुद को मैनेज करने का प्रोसेस है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मेरे ही प्रति थी। आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज में जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कौन सा आस्पेक्ट है जिंदगी का जिसको देखना ज़रूरी है जब हम सेल्फ को मैनेज करने की बात करते हैं। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमने बात कर रहे थे, बड़ी अमेजिंग बात यह है, क्लैरिटी ये हुई कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी मेरे ही प्रति होती है, उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारियां अपने आप आती जाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें और जानें कि अगला पड़ाव क्या होगा।
1: जैसे हमने देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट, तो हम हर चीज़ अपने से जोड़कर कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले आए स्व के प्रति हमारी जिम्मेवारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, क्योंकि हमने पहले दिन ही देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट में चार एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, द फोर आर्स दैट वी हैड सेड। सो दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेज। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन, कि जीवन में मेरी अपने प्रति जिम्मेवारियां और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य, पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड वो पर्पस को अचीव करने में वैल्यूज ऑफ माय लाइफ। तो वो एक कंपस, क्योंकि एक कंपस नहीं होगा तो जैसे एक दिशाहीन जीवन हो जाता है। बट वंस यू हैव अ कंपस यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग। सो द कंपस इज द कंपस ऑफ माय वैल्यूज। तो जीवन में चलते चलते अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है मन में, कई बार डिसीशंस लेने में कॉन्फ्लिक्ट होता कि ऐसा करें या ऐसा करें, तो जब डायरेक्शन नहीं पता चल रहा तो अपना कंपस निकालना है। कंपस निकालें और कंपस पर ही डिपेंड करें कि कंपस विल शो मी द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो कंपस पहले तैयार होना चाहिए। एंड दैट कंपस इज द कंपस ऑफ माई वैल्यूज। तो अपनी वैल्यूज पर अगर चल कर डिसीशन लेंगे तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए एटलीस्ट हित में होगा, और जहाँ मेरे हित में होगा ऑटोमेटिकली उसमें सारा कल्याण ही समाया होगा। एंड इट समटाइम्स सीम्स के जब हम वैल्यूज पर चलते तो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं, इनफैक्ट कुछ ना कुछ लगता कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपस विल ऑलवेज शो मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कि लॉन्ग टर्म ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम सेल्फ को नहीं पहचानते तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर आता है, बिकॉज वी सॉ कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं है तो अंदर से तो हम बहुत सारे जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, यू नो, हु एम आई, मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ, बिकॉज आई वॉज या ऑल द लेबल्स जो हमने देखे थे, तो हमें यही नहीं पता चलता कि आखिर मैं कौन हूँ। और अपने को न जानने के कारण सारा दिन में हम कोई ना कोई एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी में रहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द आईज जो अंदर है, वन ऑफ द लेबल्स इज अंडर थ्रेट, यू नो, तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी हमेशा अंदर एक बनी सी रहती है, एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे रिलेशनशिप्स पर आता है।
0: आई थिंक वेरी ट्रू। यू नो, जब हम ये कई सारी चीज़ों में होते हैं, हमें कई बार ये भी हो रहा होता है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूँ, किस लेबल

0: को प्रायोरिटी दूं, मैं ये देखूं मैं ये बनूं या मैं ये बनूं. इनफैक्ट देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन एवरी टाइम गोइंग इनसाइड.
1: सो देन देयर इज एंजाइटी और देयर इज फियर और देयर इज इनसिक्योरिटी एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विल कम ऑन माय कनेक्शंस एंड माय रिलेशनशिप्स. ऑल माय रिलेशनशिप्स इफ आई जस्ट यू नो रिवाइंड एंड सी ऑल माय रिलेशनशिप्स टुडे, तो अगर हमारे संबंधों में कहीं भी डिसकनेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आज अगर हम देखें कि हमारे सभी जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कहें एक कनेक्टिविटी, यू नो एक क्लोजनेस होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने रिलेशनशिप्स में मशीन्स गैजेट्स और इन सब को रिप्लेस कर दिया है और ज़्यादातर हमारा रिलेशनशिप अब इनके आधार पर बहुत ज़्यादा चल रहा है. एंड कितना, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ उतना अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वी रादर प्रेफर टू कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, रादर देन कॉलिंग यू अप एंड सेइंग सॉरी. I would rather just send an SMS. It is so easy. I do not have to call up and say sorry. But the process of actually meeting you and saying sorry would have been what would have got me to do the inner work. Lekin wo phone uthaya, ek SMS banaya sorry aur bhej diya.
0: Acha, ek aur jo problem relationships mein dekhte hain, zyadatar log hum face kar rahe hain, sab kuch theek chal raha hota hai, lekin wo zyada der tak theek nahi chalta hai. वो 10 मिनट 1 घंटा ठीक रहेंगे हम, कोई ना कोई बात, मतलब ज़्यादातर हर रिश्ते में, चाहे वो माँ बेटे के रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई ना कोई बात ऐसी खटकेगी ज़रूर, जो आप अगर ओपनली नहीं भी बात करेंगे, इंटरनली आप उसको ज़रूर लेंगे.
1: तो इंटरनली वही हम देखेंगे आज, इंटरनली ही ज़्यादा वो चल रहा है. वो बात ज़्यादा दूसरे की नहीं है जो मुझे खटकती है, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है और आप जो कहते हैं वो उस डिस्टर्बेंस को ट्रिगर करता है. सी अगेन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट्स लेस अबाउट द अदर पर्सन एंड इट्स मोर अबाउट मी.
0: बट इन रिलेशनशिप्स तो एक्चुअली वी आर ऑलवेज थिंकिंग इट्स अबाउट द अदर पर्सन.
1: बट देन दैट्स व्हाट वी सॉ द होल सीरीज, इवन इन सिचुएशंस हमने सोचा इट्स ऑलवेज अबाउट द सिचुएशन. द सिचुएशन इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ सिचुएशन. सिचुएशन मतलब व्यक्ति भी तो ना. तो अगर मैं कहूँ आपकी वजह से लाइक दिस, बट देन इट्स नॉट आपकी वजह से, इट्स मेरी अपनी स्थिति क्या है. तो इसलिए व्हेन वी आर एग्जामिनिंग रिलेशनशिप्स आल्सो, इट्स लेस अबाउट अदर पीपल एंड इट्स मोर अबाउट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इनसाइड. सो टुडे बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग वेरी इजिली विद यू, आई कनेक्ट टू यू थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, थ्रू SMS एंड यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ, नॉट दैट इट्स नॉट गुड, नॉट दैट यू नो हमें ये गैजेट्स नहीं यूज करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी के अंदर ही
0: एक
1: उससे हम वैसे ही थोड़ा सा कट रहे थे एक दूसरे से, और उनकी वजह से हम इतना ज्यादा उनमें ही यू नो लाइक आज एक दूसरे से बात करने की बजाय वी रादर चैट ऑन द यू नो, यहाँ तक कि हम एक स्ट्रेंजर से ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं. आजकल के यूथ दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम जस्ट चैटिंग एंड दे डोंट इवन नो हु दे आर चैटिंग विद, बट कमिंग एंड टॉकिंग टू देयर ओन पेरेंट्स सीम्स टू बी अ चैलेंज. सो समवेयर आई हैव टू से कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई पर्सनैलिटी. ये कहीं ना कहीं मेरा एक इशू है कि मैं अपने पेरेंट्स से या अपने जो क्लोज हैं उनसे मैं बात नहीं कर पा रही जाके, बट आई रादर सिट ऑनलाइन एंड चैट विद अ स्ट्रेंजर. व्हाट डज दिस से अबाउट मी, इट्स नॉट सेइंग अबाउट देम. बट फिर हम जनरली कहेंगे उनके साथ ये, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, एंड कम्प्लीटली पुट द ब्लेम ऑन एवरीवन एल्स.
0: आई नो समबडी ही सेज कि मैं इतना थक जाना चाहता हूँ घर जाते जाते तक कि मैं जाके सो जाऊँ, मुझे किसी को फेस ही ना करना पड़े.
1: हम अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को. बहुत सारे बच्चे भी आज यही कहते हैं कि वी रादर रीच होम जबकि हमारे पेरेंट्स सो चुके हैं, ताकि ना वो कॉन्टैक्ट हो, तो ना वो आर्ग्यूमेंट हो, ना मुझे उसको फेस करना पड़े, ना वो मुझे कुछ कहे, ना मुझे सुनना पड़े. तो ये क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं. Then relationships with others, then relationship with myself. इसमें भी तो कहीं उतनी healing नहीं है. I don't know. आज अगर हम किसी से कहें relationship with self, तो they will just look. अपने आप से कौन सा रिश्ता होता है? रिश्ता तो दूसरों से निभाया जाता है. अपने आप से रिश्ता is something that we had not even thought of. के I was just talking in a program and I said, व्हाट अबाउट स्पेंडिंग सम टाइम टॉकिंग टू योरसेल्फ, के सारा दिन में इतने लोगों को पूछते हो क्या हाल है क्या हाल है, एक मिनट रुक के अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं क्या हाल है. एंड देयर वर पीपल एंड दे सेड अपने आप से कैसे पूछा जाता है, मतलब द कॉन्सेप्ट वॉज सो एलियन, लाइक ये औरों को पूछना तो बहुत ईजी है क्या हाल है, ये अपने आप को कौन पूछता है. तो वो ज्यादा उनको लग रहा था कि ये कहीं मतलब पता नहीं कोई अजीब सी बात है.
0: मुझे तो ये रिलेशनशिप वर्क ऑन योर रिलेशनशिप शब्द से ही इतनी चिड़ हो चुकी है, क्योंकि हर जगह यही बात किया जाता है. एंड हाउ टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, इफ रिलेशनशिप्स आर देयर तो आर देयर, उन पे वर्क क्या करना है, यू नो, लाइक पीपल आर बिकमिंग सो वेरी ऑफ इट कि हमें नहीं जानना उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो मिलना चाहिए था वो खत्म होता जा रहा है. शायद
1: किससे मिलना चाहिए था
0: जो रिलेशनशिप्स में हम ढूंढ रहे थे.
1: हाँ, तो फिर अगर हम गलत जगह पर ढूंढेंगे तो और वहां नहीं मिलेगा तो ये गलती किसकी है. अगेन लाइक यू सेड, रिलेशनशिप्स में जो मिलना चाहिए था, रिलेशनशिप्स में मिलना नहीं है कुछ भी.
0: या दिस इज यू नो लाइक
1: इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज like this. We are taking relationships only for receiving. कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और फिर जहां जहां ढूंढ रहे हैं, it's like a hide and seek game going on.
0: फिर बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर relationship में कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर relationship की जरूरत क्या है.
1: Exactly. So important question कि अगर relationship में मैं इतना effort क्यों करूँ, फिर इतना इनके साथ भी adjust करूँ, ये भी करूँ, tolerate भी करूँ, अगर इनसे कुछ मिलना ही नहीं है मुझे तो मैं इतना सब क्यों करूँ. तो what is the other option कि मैं अकेले रहूँ and I do not come into contact with people.
0: नहीं, फिर मैं और लोगों को ढूंढता, अकेले तो मैं रह नहीं सकता.
1: वो और लोग भी तो वैसे ही वाले होंगे आपके. So here the important realization is कि relationships हमारे लिए बहुत बहुत बहुत matter करते हैं. क्यों matter करते हैं? Relationships में हमें मिलना नहीं है कुछ भी, उस angle से नहीं important है, लेकिन relationships इसलिए matter करते हैं क्योंकि एक relationship में ही मेरे पास जो है energy, चाहे वो प्यार की है, शांति की है, खुशी की है, वो energy मैं create करता हूँ. और जब मैं आपकी तरफ उसको ट्रांसमिट करती हूँ तब वो पहले मुझे मिलता है.
0: तो मैं महसूस करता हूँ,
1: आई फील इट फर्स्ट,
0: यू नो. अच्छा, रियलाइजेशन ऑफ माई ओन इनर वैल्यू इज थ्रू रिलेशनशिप.
1: सो द एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू एक्सपीरियंस पीस, लव एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीजें तो आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस. नाउ आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर देम देयर, गिव, मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, देन आई एम नॉट गेटिंग. परमात्मा ने आकर सिर्फ फॉर्मूला चेंज किया, इट्स नॉट आस्क मुझे एक्सपीरियंस करना है, इट इज गिव, एंड व्हाइल यू आर गिविंग इट विल फ्लो थ्रू यू, एंड द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट
0: इज मी,
1: इज मी. अगर मैं रिलेशनशिप्स में नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, कई बार ऐसे होता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अकेले बैठ जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जीवन कैसे हो जाएगी. क्योंकि जब तक मैं इंटरेक्शन में नहीं आती तो मुझे मौका नहीं मिलता वो एनर्जी क्रिएट करने का, वो एनर्जी एक्सप्रेस करने का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी एक्सपीरियंस करने का.
0: तो इसीलिए हम जो अब रिलेशनशिप से थके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो सारी नेगेटिविटी कर रहे हैं.
1: तो वो सबसे पहले किसको मिल रही है?
0: मुझे ही मिल रही है. तो एक तो नेगेटिविटी ऑलरेडी है, दूसरा जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ वही नेगेटिविटी और क्रिएट हो रही है. क्योंकि हम में से हर कोई अब ये चाह रहा है कि बस हम रिश्तों में और नहीं घुसना चाहते, नहीं फंसना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोझ लगने लग गए.
1: वो बोझ इसलिए लगने लग गया क्योंकि हम रॉन्ग एंगल से फॉर्मूला को यूज कर रहे थे. अच्छे से अच्छी चीज भी रॉन्ग डायरेक्शन से अगर यूज करनी जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो जो जनरल स्टेटमेंट अब है वो ये, रिलेशनशिप्स जस्ट डोंट वर्क, दे डोंट वर्क. अब व्हेन वी आर सेइंग रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
0: कि आई एम नॉट गेटिंग, दे डोंट गिव एनीथिंग,
1: दे डोंट गिव एनीथिंग.
0: नो, बट पीपल आर ओपन अबाउट इट, आई डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम माय रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग इन दैट रिलेशनशिप.
1: सो आज से हमें सिर्फ उस फॉर्मूला को दूसरी तरह से यूज करना है कि रिलेशनशिप्स वाज नेवर फॉर गेटिंग, इट वाज नेवर फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग.
0: पर ये बिलीफ सिस्टम जो है ये चेंज होने में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो हमारा है, बिकॉज ऑल आर वर्ड्स, यू नो, अगर हम देखें स्टेटमेंट्स खासकर रिलेशनशिप में, तो हम यही मानते आ रहे हैं कि इस रिश्ते में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है.
1: वो लेकिन जो मिल रहा होता है वो भी कैसे मिल रहा होता है, इफ आई कैन से कि व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड, यू नो आई वी से दैट फॉर सर्टेन पीपल कि व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी नाइस. इट्स लेस अबाउट द अदर पर्सन, इट्स बिकॉज आई फील वेरी नाइस व्हाइल आई एम विद यू. तो इफ आई एम फीलिंग वेरी नाइस व्हाइल आई एम विद यू, इसका मतलब जब मैं आपके साथ हूँ सो आई एम क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी. And this right kind of energy, whether it's love or purity or whatever, this makes me feel good. But मुझे ये एहसास नहीं आ रहा कि ये energy मैं create कर रही हूँ. मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ बैठने से ये energy मुझे आ रही है. It's not like that. It is आपके साथ बैठने से ये energy मैं create कर रही हूँ.
0: लेकिन मैं बाकियों के साथ क्यों नहीं फिर कर पा
1: रही? कर सकती हूँ ना, जिस दिन ये realize होगा कि मैं कर रही हूँ.
0: मतलब मैं आपके साथ बैठते हुए जैसा फील कर रही हूँ मैं हर एक के साथ कर सकती हूँ.
1: Yeah. Just depends on how I perceive them. It's just that मैंने यहाँ पर एक लेबल बना दिया. कनुप्रिया इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो वो मेरा लेबल फिट है. अब कईयों के लिए मैंने लेबल फिट कर दिया कि
0: बहुत बुरा है. हाँ.
1: Yeah. तो उनके साथ बैठकर आई डोंट क्रिएट द राइट एनर्जी. क्रिएशन सारी यहाँ हो रही है डिपेंडिंग ऑन हाउ आई सी यू एंड देन आई से बट देन व्हाट हैपेंस इज बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इट देयर, तो मैं आपके ऊपर क्लिंग ऑन कर देती हूँ कि व्हेन कैन आई मीट यू, व्हेन कैन आई टॉक टू यू. क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे बात करती हूँ या आपके साथ बैठती हूँ आई फील गुड. तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी क्या बन गई कि मुझे आपकी जरूरत है टू फील गुड. And that's where the whole thing will start collapsing.
0: But when that person is not there, we really don't feel good.
1: Yeah. So why? Because I have created that thought, na? जब मैंने एक thought create कर दिया, this is like any other addiction. ये कोई भी एक addiction की तरह है. Coffee पियेंगे, I will feel good. चाय पीते हैं, I feel good. नहीं पी, मुझे disturbance होता है. Chai and coffee is not doing anything. It's my addiction to that particular stimulant. Similarly, it's my addiction or attachments to particular people. So I am just being able to create that energy while I'm with you. But if I understand that main create kar rahi hu, samne wala nahi de raha hai. Main create kar rahi hu, wo create karke main ट्रांसमिट कर रही हूँ, लेकिन ट्रांसमिट करते समय पहले किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है. एंड आई फील वेरी गुड एंड आई से यस दिस इज द पर्सन आई नीड दिस पर्सन. लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब मुझे ये रियलाइजेशन नहीं रहती कि ये क्रिएशन मेरी है, तो मेरी वो जो पावर टू क्रिएट है उसकी अवेयरनेस नहीं होने के कारण आई अगेन स्टार्ट फीलिंग दैट इट इज कमिंग फ्रॉम हियर. And again, now I start expecting from there. And for abhi, suppose I'm not feeling, suppose I'm in pain and I go into my series of negative thoughts and all, and I come to you. Or you say something which I don't like or fits in my, and then I start saying, ab to mujhse aapse wo wala pyar nahi mil raha jo pehle milta tha.
0: And then I feel that I don't get the love.
1: Yeah. And then I start saying, you have changed. And I'm not getting that anymore with you. पहले आप जो मुझे रिस्पेक्ट देते थे, पहले आप जो मुझे प्यार देते थे, पहले आपसे मिलकर जो मुझे खुशी मिलती थी, it's not coming. What I am not realizing is, right now I am going through a low phase. वो नहीं बदले हैं, वो वैसे ही हैं. I am going through a
0: low phase. पहले भी तो वो कुछ नहीं कर रहे थे.
1: Exactly.
0: Okay.
1: And जैसे अभी वो कर रहे हैं, we are not saying कि जो सामने वाला है, that person is always constant. He and she is going to go through their ups and downs and lows and highs. लेकिन the question is, who is creating the energy? I am creating the energy. तो अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन हम इस awareness के साथ चलें कि relationships के अंदर जो flow of energy है, वो ऐसे नहीं पहले ऐसे है. So now what happens is automatically ki what I am giving you pehle mujhe milega, and then what you get from me, what you send back will also be
0: similar.
1: तो इसलिए फिर मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगता है, क्योंकि जब पहले मैं आपको देती हूँ एंड फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा तो है कि जो एनर्जी फ्लो होगी वही एनर्जी वापस मिलेगी. तो इट्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग. दिस इज द फॉर्मूला, गिव एंड रिसीव. But we thought, take and get. Keep on. Mera kuch role hai us relationship mein? That I didn't know. It was only take. To fir wo kya ho gaya? Aaj kisi se hum puche, what
0: take,
1: is...
0: Take, aur uske liye main karti thi. See, karm to kar rahi thi. से अगर अगेन ये नहीं मुझे पता था कि कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जैसे ही जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, जो भी है, चाहे मेरा बेबी बच्चा है या कोई भी है, उनके होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर्म करूँगी उनके
1: वो
0: लिए।
1: तो आउटसाइड हो गया।
0: हाँ, पर मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट था, तो वो मैं कर्म करती रही, और उसके बाद अगर उन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वो कर्म करने के बाद, तब मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और फिर आप मेरे लिए नहीं कर रहे।
1: या सो दैट विल बिकम एक्सपेक्टेशंस कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने इन रिटर्न क्या किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एटलीस्ट इन टुडेज टाइम, अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से मेंटेन करके चलना चाहते हैं एंड मोर इम्पोर्टेंट हम खुश रहना चाहते हैं, तो कितने लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए? हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक?
0: आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो अब, और
1: नो वन,
0: मैक्सिमम लोग ये बोलते भी हैं कि हमारे जीरो एक्सपेक्टेशंस हैं,
1: जीरो एक्सपेक्ट, वो बोलते हैं।
0: हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते।
1: दैट्स नॉट इन द नेगेटिव सेंस कि उससे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट लाइक दैट, बट नो एक्सपेक्टेशंस मीन्स कि यू गिव फॉर द फीलिंग ऑफ योर गेटिंग इट वाइल इट्स गोइंग। अब वहाँ से आता है या नहीं, डोंट थिंक अबाउट इट। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देने में मुझे अच्छा लगता है। लेट्स पुट दैट एज आर बेंच मार्क कि आपको जो कुछ देने में अच्छा लगता है, अगर उसको हम
0: एक्चुअली हम ये
1: फिजिकल
0: कर
1: रूप
0: लें
1: पर
0: कि
1: देखें,
0: हमें जो चाहिए वो हम देना शुरू कर दें, तो वो हमें ही तो
1: एब्सोल्युटली
0: मिलेगा।
1: एब्सोल्युटली, परमात्मा हमेशा कहते हमें कि तुम्हें जो चाहिए ना, पहले तुम दो। सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, रिस्पेक्ट दो, बिकॉज यू विल फर्स्ट बी गिविंग इट टू योर सेल्फ। हाउ डू वी वर्क विद जीरो एक्सपेक्टेशंस? इट्स, अगर फिजिकल रूप से देखें, हम किसी को एक गिफ्ट देते हैं। अभी आज क्या होता, मैंने आपको ये गिफ्ट दिया, आपने मुझे क्या दिया? या मैंने जो आपको गिफ्ट दिया वो तो 2000 का था, आपने मुझे जो गिफ्ट दिया वो, वाई डिड वी गिव, वर वी गिविंग फॉर द विद द इंटेंशन दैट नाउ इन रिटर्न इफ आई हैव गिवन अ गिफ्ट ऑफ 2000 आई शुड गेट अ गिफ्ट ऑफ 3000 इन रिटर्न? नो, सेम जो ये गिफ्ट का फ्लो है, अगर आपको गिफ्ट देना है आप दीजिए, जितने का देना है उतने का दीजिए, जितना देने से आपको कंफर्टेबल लगता है उतना दीजिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि यू आर टू गेट अ गिफ्ट इन रिटर्न। अगर वो देने में इट मेक्स यू फील गुड एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ एनर्जी, ये गिफ्ट तो ठीक है, ईजी है,
0: नो, आई कैन मेक इट आउट, यू नो, आजकल बर्थडेज में देयर इज अ रिटर्न गिफ्ट
1: या
0: थिंग।
1: वो तो ठीक है ना, दैट्स, आई टुक एन एग्जांपल बिकॉज
0: नो,
1: फिजिकल
0: बट दैट्स
1: करने से इट बिकम्स
0: अमेजिंग, यू नो, आई
1: ईजियर
0: हैव
1: टू
0: सीन
1: अंडरस्टैंड।
0: कि बच्चा पहले जहाँ पे भी अपने किसी भी फ्रेंड के पास जा रहा है, नो, इट हैज चेंज्ड, सडनली आई कैन मेक इट आउट, यू नो, उसके मन में पहले ये होता है कि रिटर्न गिफ्ट क्या होगा, यू नो, समवेयर वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक छोटी सी चीज़ भी कहीं ना कहीं हमने पूरे थॉट प्रोसेस में किया हुआ है।
1: सो वी नीड टू गिव। अब जो आप संबंधों में कल चलें, उतना दें जितना देते हुए इट्स योर कैपेसिटी। यू नो, आज हम क्या कहते हैं, मैंने इतना किया जितना मैं कर सकती थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा किया। क्यों किया? अगर आपसे नहीं हो रहा आप मत करो, लेकिन इसलिए नहीं करो क्योंकि सामने वाले ने भी मुझे उतना देना है। वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग इन आर रिलेशनशिप्स विद द प्रोसेस ऑफ गिविंग। उतना देना है जितना आई कैन गिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आपके पास जितनी खुशी है, जितना प्यार है, जितनी शांति है, आप उसको देते जाएं। जितना देंगे उतना आपके अंदर
0: वही तो
1: वो
0: मैं कह रही
1: बढ़ता
0: हूँ,
1: जाए।
0: इट्स अदर वे अराउंड, इनफैक्ट अब मुझे जितना चाहिए मैं
1: मुझे
0: उतना
1: उतना
0: देना
1: देना
0: शुरू
1: है,
0: करूँ,
1: एब्सोल्यूटली
0: यू नो।
1: नॉट विद द एक्सपेक्टेशन कि आप मुझे इन रिटर्न क्या
0: नहीं,
1: देंगे।
0: मैं ये मान के ही चलूँ ना फिर कि जितना मैं दे रही हूँ वो मेरा सारा मुझसे ही जा रहा है,
1: एब्सोल्यूटली, मैं ये समझ कर चलूं कि जब मैं दे रही हूं तभी मुझे मिल
0: मिल
1: रहा है।
0: रहा है। हाँ,
1: अब मुझे कब मिलेगा, किससे मिलेगा, नहीं, मिलने वाला पार्ट हो गया देते टाइम। दिस इज लाइक अ गिफ्ट के जब हम वो दे रहे हैं, वो गिफ्ट पहले मुझे मिल रहा है, फुल स्टॉप, मिल गया।
0: आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव यूज्ड इट एंड
1: एंड
0: देन
1: आई
0: आई
1: हैव
0: हैव
1: गिवन
0: गिवन।
1: इट एंड बाय गिविंग इट इट इंक्रीजेस इन मी। जितना हम खुशी से, हमने पहले भी देखा वही कर्म है, शोर मचा के भी हो सकता है, शांति से भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है। जितना उसको प्यार से शांति से करेंगे, वो शांति की शक्ति हमारे अंदर
0: और बढ़ती
1: बढ़ती जाएगी। तो वो वहां से नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरे अंदर क्रिएट करने से वो अपने आप बढ़ती जाएगी। सो रिलेशनशिप्स मीन्स गिविंग एंड गिविंग, रिसीविंग अपने आप हो रहा है।
0: रिसीविंग पहले इनफैक्ट अगर हम ये थॉट प्रोसेस लें, अगर हम करके देखें, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट आउट.
1: इट इज लाइक दैट. वंस आई जस्ट, बिकॉज एनर्जी फ्लो तो ऐसे ही कर रही है. अब क्या हो रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए. दिस इज अ नेगेटिव थॉट, इट्स अ पेनफुल थॉट. अब मैं आपको मुझे चाहिए के एंगल से जब रिश्ते में आती हूँ तो मैं आपको कौन सी एनर्जी दे रही हूँ? नेगेटिव. तो मतलब मुझे क्या मिला
0: कि ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे,
1: तो मुझे
0: मुझसे मुझसे कैसे बात करेंगे, मुझसे कैसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे,
1: तो मुझे क्या मिला?
0: पूरा नेगेटिविटी.
1: मैंने सोचा किसने दिया मुझे वो?
0: उन्होंने दिया. ओह यस, इज अ फॉर्मूला विच वी नीड्स टू वर्क ऑन. वेरी गुड शिवानी. हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों को देखने का एक नया अंदाज हमारे सामने है कि कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है, और हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तर्क की कसौटी पे अगर हम देखते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो इट रियली वर्क्स, यू नो, एनर्जी का फ्लो अगर हम देखें. लेकिन यही है कि अपने अनुभव को, अपने अनुभव से बड़ी और कोई कसौटी नहीं हो सकती.
1: वील एक्सप्लोर दिस मोर नाउ.
0: इसको हम अपने आने वाली कड़ियों में ज़रूर करेंगे. आज की इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच.
1: ओम
0: शांति. देखना यही है कि क्या हमें चाहिए. अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें प्यार चाहिए, खासकर रिश्तों में तो हम प्यार तलाश रहे होते हैं, कई बार खुशी तलाश रहे होते हैं, कई बार शांति तलाश रहे होते हैं. ये फॉर्मूला आप अपना के देखें कि मुझे चाहिए. सपोज़ अगर अपने आप से हम बात करें और कहें कि इस रिश्ते में मुझे प्यार चाहिए, तो उतना ही प्यार देने की कोशिश करें, देना शुरू कर दें. ये अनुभव एक दिन के लिए करके देखें तो क्या मैं प्यार का अनुभव कर रही हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो मुझे देंगे, या ये कहें कि उनसे ही प्यार मुझे मिलेगा. मैं जब प्यार अपने आप को देना, उनको देना शुरू करती हूँ, किसी को भी देती हूँ, वो मुझसे होकर गुजर रहा है. ये थॉट अगर हम अपने साथ रखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर अपने अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करें. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी आपका अपना प्रोग्राम है. हर रोज़ हमारे साथ कुछ नया हो रहा है, कुछ नया घट रहा है. नए अंदाज से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा था, अब रिश्तों को देख रहे हैं. इन्हें एक्सप्लोर ज़रूर करें. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई अनुभव है आपका, हमारे साथ शेयर करें, या तो फ़ोन पर संपर्क करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि जो भी बात हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर. तो ज़रूर इन सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, ताकि वो खुशी, वो पीस, वो शांति, वो प्रेम जिसकी मैं अधिकारी हूँ, हम सब अधिकारी हैं, हम अनुभव कर पाएँ. आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी. लेते हैं आपसे विदा. ओम शांति.

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: वराहनगर के दिन खत्म हुए। नरेंद्र नाथ मन से परिव्राजक थे, मौका पाते ही घूमने निकल पड़ते थे। घूमने जाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी। साधु सन्यासी देखकर अनजान लोग भी उनके टिकट और खाने की व्यवस्था कर देते थे, नहीं तो फूटी कोड़ी होने पर भी वे विश्व भ्रमण कैसे कर पाते।
1: यहाँ पर हम कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। नरेंद्र 1888 ईस्वी के पहले पहल तीर्थ भ्रमण की इच्छा से वराहनगर मठ से बाहर निकले। इसके पहले 2 साल में भी वे आठपुर के अतिरिक्त वैद्यनाथ और शिमुलतला भी कई बार गए थे। उनके भारत भ्रमण संबंधी कई बातें हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई रोजाना डायरी नहीं लिखी थी। बाद में यत्र तत्र प्रसंगवश उनका कोई मंतव्य सुनकर अथवा जिन व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई थी उनसे कुछ घटनाएं सुनकर जहां तक संभव हो सका है उसे लिपिबद्ध किया गया है। एक बात और, अब से हम नरेंद्र नाथ ना कहकर आचार्य देव का उल्लेख स्वामी जी अथवा विवेकानंद नाम से करेंगे।
0: सन 1887 ईस्वी के जनवरी महीने में नरेंद्र नाथ ने संन्यास धारण कर स्वामी विवि दिशानंद नाम ग्रहण कर लिया था। फिर भी अनुष्ठानिक रूप से नाम बदल जाने पर भी नया नाम उस समय तक व्यापक रूप से वहत नहीं हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बल्कि हम जानते हैं कि परिव्राजक के रूप में भारत का परिभ्रमण करने के दिनों में वे अपना परिचय गुप्त रखने के लिए विभिन्न नामों का सहारा लेते थे। और यह भी जाना जाता है कि कुछ दिनों तक विवि दिशानंद नाम का व्यवहार करने के बाद उसको छोड़कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण किया। इसी समय विवेकानंद का नाम परित्याग नहीं करने पर भी वे सच्चिदानंद नाम का व्यवहार करते थे। सबसे अंत में अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम को स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया था और इसी नाम से वे विश्व विख्यात हुए। किंतु उनके बंधु बांधव और शिष्यगण उन्हें स्वामी जी कहकर संबोधित किया करते थे।
1: भ्रमण की लालसा भारत के सन्यासियों की मज्जा में है। कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। साधु यदि बहती हुई नदी की भांति अविराम घूमते रहें, तो जैसे नदी में गंदगी नहीं जमती, वैसे ही साधु का जीवन भी निष्कलंक रहता है। और विभिन्न तीर्थों में कितने विविध भावों में विराजमान रहकर भगवान भक्तों की पूजा ग्रहण करते हैं एवं निर्विचार रूप से कृपा वितरण करते हैं, उसे देखकर किस व्यक्ति के हृदय में उत्साह नहीं जागता। विशेषकर ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन्होंने गृह त्याग किया है, वे उन्हें यानी ईश्वर को सभी संभव स्थानों में ढूंढने निकलेंगे। ये तो अत्यंत स्वाभाविक है। नव प्रतिष्ठित वराहनगर मठ के साधुओं के जीवन में भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हुआ। मठ की स्थापना के बाद से ही कोई न कोई अक्सर बाहर जाते। कभी कभी स्वामी रामकृष्ण नंद एवं और 2-1 व्यक्तियों को छोड़कर मठ शून्य प्राय हो जाता था। कोई थोड़े दिनों के लिए जाते थे, कोई लंबी तीर्थ यात्रा और तपस्या के लिए जाते थे।
0: तीर्थ यात्रा के दिनों में मठ मंदिर आश्रम में साधुओं और पंडितों के साथ चर्चा के क्रम में अनगिनत जन साधारण के दैनिक कार्यकलाप और बात व्यवहार के द्वारा उन्होंने भारत को देखा था और जाना था। उत्तरी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए विवेकानंद अंत में काशी धाम पहुंचे। वहां वे द्वारका दास के आश्रम में रहते थे। वे सब कितने व्यस्तता के दिन थे, 1 मिनट सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। दिन रात बाहर के लोगों का आना जाना लगा रहता था। पंडितगण आए हैं, घोर तर्क वितर्क चल रहा है, किंतु स्वामी जी एक क्षण भी उससे कतराते, असंतोष होते या उदासीन होते नहीं प्रकट होते थे। आध्यात्मिक विषय हो या सामान्य ज्ञान विषय, वे सर्वदा सभी विषयों की विवेचना के लिए तैयार रहते। बड़े बड़े पंडित और विद्वान व्यक्तियों का आगमन हुआ, वे लोग सन्यासियों के साथ धर्म तथा दर्शन आदि विषयों की चर्चा करते रहते थे। बड़े बड़े संस्कृत वचन और श्लोक आदि उद्धृत कर प्राचीन पंथियों की नींव सुदृढ़ करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय स्वामी जी प्रबल तर्क से उन लोगों के मतों को छिन्न छिन्न कर देते। यह दिखाते कि संस्कृत विद्या या शास्त्रों का मूल इस देश के लोगों की शिक्षा दीक्षा और जीवन की उन्नति और अवनति के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। देश की उपेक्षा कर देशवासियों से अलग शास्त्रों को देखने से शास्त्रों के यथार्थ मर्म को जानना कठिन है। शास्त्र कोई मनगढ़ंत काल्पनिक नियम मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र का गठन और विकास ही उसका मुख्यतम उद्देश्य है।
1: फिर जब ईसाई पादरी आकर हिंदू धर्म की निस्सारता प्रतिपादित करने के विचार से तर्क करने लगते, तब उन लोगों को उपद्रव समाप्त करने के लिए उन्हें भी तर्क युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ता। स्वामी जी की तीक्ष्ण बुद्धि के समक्ष वे सब कैसे आगे बढ़ पाते? उन लोगों के सारे व्यर्थ के तर्क चूर चूर हो छिन्न भिन्न हो जाते। अंत में जब वे सब तर्क वितर्क में ध्वस्त हो अपनी पराजय स्वीकार करने का उपक्रम करते, तब फिर स्वामी जी उन लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते और अपनी स्वभाव सिद्ध सरल सुबोध भाषा में ईसा मसीह के हृदय के अद्भुत प्रेम की अपूर्व व्याख्या करते।
0: काशी में भिक्षा से प्राप्त अन्न से उदर पूर्ति, देव स्थानों का दर्शन, शास्त्रों की चर्चा, जप, ध्यान, साधु संग आदि ही उनका नित्य कर्म था। शाम को जिस समय वे भगीरथी के तट पर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ करके संध्या काल की उपासना के लिए तैयार होते थे, उस समय अनगिनत मंदिरों के संध्या आरती का घंटा और शंखनाद उन्हें भाव विभोर कर देता था।

0: एक दिन किसी भक्त ने उनका परिचय पंडित भूदेव मुखोपाध्याय से करा दिया। अपूर्व धीशक्ति संपन्न तरुण सन्यासी के साथ धर्म, समाज, नीति तथा भारत की उन्नति संबंधी चर्चा से भूदेव बाबू ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने उन सज्जन से कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस तरुण युवक ने इतनी अल्प अवस्था में इतनी गंभीर अंतर्दृष्टि और विपुल अभिज्ञता किस प्रकार प्राप्त कर ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में ये एक महान व्यक्ति बनेंगे। वाराणसी के विख्यात साधु श्रीमंत त्रेलिंग स्वामी जी के दर्शन प्राप्त कर स्वामी जी कृतार्थ हुए। इनके त्याग और तपस्या के बारे में स्वामी जी ने कई बार श्री राम कृष्ण देव से सुना था। अब उनके दर्शन से भक्ति और विनम्र चित्त के साथ उनके चरणों की धूल लेकर वे धन्य हो गए।
1: विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा देवी के लिए विग्रह का दर्शन कर उनके मन प्राण आनंद से परिपूर्ण हो गए थे और इस पवित्र धाम में भगवान बुद्ध एवं शंकराचार्य के कीर्ति कलापों के स्मरण से उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रदीप्त हो गई थी। एक दिन दुर्गा मंदिर से लौटने के समय बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। उन्हें डर हुआ कि बंदर उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः वे तेजी से भागने लगे, किंतु बंदर भी पीछे पीछे भागते रहे। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, उन बंदरों के सामने खड़े रहो। यह सुनकर स्वामी जी निर्भीक भाव से उनके सम्मुख खड़े हो गए। उन्हें भयहीन देख करके बंदर भी क्षण भर के लिए रुक गए और तत्पश्चात भाग खड़े हुए। बाद में अमेरिका में अपना भाषण देते समय वे इस घटना का उल्लेख कर इसका तात्पर्य श्रोताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा था,
2: प्रकृति के सम्मुखीन होकर डटे रहो, अविद्या के सम्मुखीन होकर डटे रहो, माया के सम्मुखीन होकर डटे रहो।
0: वे बुद्ध देव की कीर्ति स्थल सारनाथ भी देखने गए थे, किंतु उन दिनों उस स्थान का भग्न स्तूप और मठ आदि जंगल से भरे थे।
1: श्रीमद स्वामी भास्करानंद जी के गुणों को सुनकर के स्वामी जी एक दिन उनके आश्रम में भी गए। उस समय भास्करानंद जी शिष्यों तथा भक्तों से घिरे बैठे थे। स्वामी जी ने प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। पहले ही विवेकानंद की मनोहर शारीरिक क्रांति से उनकी दृष्टि आकर्षित हो गई। फिर धीरे धीरे सन्यास जीवन के आदर्शों के संबंध में स्वामी जी को उपदेश देते हुए भास्करानंद जी बोल उठे,
2: कभी डरकर भागो मत।
3: संपूर्ण रूप से कामनी कांचन का त्याग कोई भी नहीं कर सकता।
2: क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो संपूर्ण रूप से कामिनी कंचन के संबंधों से विमुक्त हैं, क्योंकि सन्यासी जीवन का यही तो प्रथम साधन है और मैंने तो कम से कम ऐसे एक व्यक्ति को अवश्य देखा है जो कामिनी कंचन की चाह पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए थे।
3: कौन है ये महापुरुष?
2: श्री राम कृष्ण परमहंस देव।
3: तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में यह बात समझ नहीं पाओगे।
1: अपने गुरुदेव के पवित्रतम चरित्र की समालोचना होते हुए देख स्वामी जी निर्भीक दृढ़ता के साथ प्रतिपाद करने को उद्यत हो गए। स्वामी जी के तेज युक्त तथा युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर के उपस्थित मंडली तथा स्वयं भास्करानंद जी बड़े विस्मित हुए। जिनके चरणों में राजा महाराजा धनी पंडित ज्ञानी आदि सभी मस्तक झुकाकर कृतार्थ होते थे, जिनका अलौकिक पांडित्य गौरव के साथ ज्ञान लोक विकीर्ण करता था, उन्हीं भास्करानंद जी को प्रतिपक्षी बनकर तर्क में अग्रसर होना कम साहस की बात नहीं थी। भास्करानंद जी उदार हृदय सन्यासी थे। वे स्वामी जी की बातों से विशेष संतुष्ट हुए और उनके सामने ही अपने शिष्य मंडली तथा उपस्थित जनों से कहा,
3: इसके कंठ में सरस्वती विराजमान है, इसके हृदय में ज्ञानालोक जाग उठा है।
1: परंतु अपने गुरुदेव के संबंध में अनादर सूचक शब्द सुनकर दुखी होकर के विवेकानंद तुरंत वहां से चले आए।
0: कुछ दिन काशी धाम में रहकर स्वामी जी वराह नगर मठ लौट आए। वाराणसी धाम भारत का हृदय केंद्र है। यहाँ मद्रासी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेशीय व्यक्तिगण आचार व्यवहार तथा भाषा की भिन्नता के बावजूद एक भाव के भावुक बनकर भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सम्मिलित होते हैं। काशी धाम में स्वामी जी ने परमार्थिकता से भ्रष्ट बाह्य आचार परायण इन नर नारियों के बीच भी सनातन धर्म की युग युगांतर से वंचित महिमा की उपलब्धि की।
1: इस तीर्थ दर्शन काल में उन्होंने भारत की आत्मा का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त किया था और अनेक मतवादों का भी साधन किया था। उनकी दृष्टि पहले से अधिक व्यापक हो गई थी, अतः अब वे चाहते थे कि उनके गुरु भ्राता चिंतन के क्षेत्र में भी व्यापकता प्राप्त करें। एक क्षण में उनके मन में धर्म प्रचार का संकल्प जागता और वेदांत के तत्व को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से उनका मन उद्वेलित हो जाता। गुरु भ्राताओं में भी वे धर्म की इन नवीन धारणाओं का संचार करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते। उन प्रारंभिक दिनों में भी वे उन लोगों को सर्वहाराओं के घरों में धर्म प्रचार करने के लिए जाने को कहते।
0: किंतु साधुगण उस समय प्रचार विरोधी थे। उन लोगों के मतानुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना था। स्वामी जी भी तो पहले इसी मत को पोषण करते थे। सबके प्रवक्ता के रूप में स्वामी जी भी कहा करते थे कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य उद्देश्य है। पर तीर्थ से लौटने के बाद वे तरुण साधुओं से कहते,
2: सभी प्रचार कार्यों में रत हैं, परंतु वे उसे अज्ञात रूप में करते हैं। मैं उसे इच्छा पूर्वक करूंगा। तुम लोग जो मेरे गुरु भाई हो, तुम्हारे मना करने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। दीन हीनों तक जाकर प्रचार करूंगा। प्रचार यानी भाव का बहिप्रकाश। श्रीलंग स्वामी मौन रहते हैं तो क्या प्रचार नहीं करते? उनका मौन ही व्याख्यान है। पौधे भी तो प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं।
1: इस बार स्वामी जी वराह नगर में कुछ दिनों तक ठहरे थे, क्योंकि उनमें सन्यासी सुलभ निर्जन स्थान में तपस्या करने की आकांक्षा सदा ही जागृत थी। अतएव शीघ्र ही वे पुनः उत्तर भारत के तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े। वे पुनः काशी गए। वहां श्रीयुक्त प्रेमादास मित्र से उनका परिचय हुआ। मित्र महाशय धनवान और संस्कृत भाषा के सुपंडित थे। स्वामी अखंडानंद गंगाधर से उनका पहले से ही परिचय था। प्रेमादास बाबू से स्वामी जी का यह परिचय धीरे धीरे मित्रता में बदल गया तथा दोनों में अनेक पत्राचार हुए।
0: काशी में थोड़े दिन रुकने के बाद विवेकानंद सन 1888 ईस्वी के अगस्त में हाथ में दंड कमंडल लिए उत्तर भारत के कई स्थानों से होकर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के प्रत्येक रजकण के साथ सूर्यवंशी पराक्रमशील राजाओं की गौरव स्मृति जड़ित है। कवि श्रेष्ठ वाल्मीकि के श्री रामचंद्र आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भ्राता के रूप में इसी पुण्य भूमि में पूर्ण महिमा के साथ प्रस्फुटित हुए थे। तेजस्वी ब्राह्मण का पौरोहित्य तपस्वी विश्वामित्र, ब्रह्म ज्ञानी मिथिलाधिपति जनक, सुदूर अतीत की ऐसी सहस्रों उज्जवल कथाएं स्वामी जी को स्मरण हो आई।
1: राम सीता की लीला भूमि में पदार्पण करते ही उन्हें अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गईं। उनका वह रामायण के प्रति प्रेम, सीता राम की मूर्ति के सम्मुख तन्मय चित से ध्यान, वीर भक्त हनुमान के प्रति गंभीर श्रद्धा, ये सब स्मृतियां एक एक करके उनके मानस पटल पर उदित होकर के उन्हें भावानंद में विभोर करने लगी। अयोध्या में कुछ दिन बिताकर सन्यासियों के साथ श्री राम नाम कीर्तन में बिताकर स्वामी जी लखनऊ और आगरा होते हुए पैदल ही वृंदावन धाम की ओर अग्रसर हुए।
0: अयोध्या के बाद लखनऊ आकर वे अवध के नवाबों की कीर्ति के साक्षी स्वरूप बाहों, महलों और मस्जिदों आदि को देखकर आनंदित हुए। लखनऊ से आगरा आने पर मुगल सम्राटों की अक्षय कीर्ति ताजमहल, आगरा का किला आदि की अपूर्व स्थापत्य कला ने उन्हें आत्मविभोर कर दिया। ताजमहल का विभिन्न दिशाओं से प्रकाश और छाया की विभिन्न परिधियों में निरीक्षण कर एवं उनके शिल्प कौशल का मूल्यांकन कर मानो उन्हें तृप्ति ही ना होती थी। अनेक बार वहां जाकर तथा अनेक रूपों से देखकर वे केवल यही सोचते थे कि भारतीय शिल्प ने एक दिन कैसा अद्भुत उत्कर्ष प्राप्त किया था। उन्होंने कहा,
2: इस आश्चर्यपूर्ण शोध की हर जगह ध्यान पूर्वक दिन भर देखनी होगी और इसकी सुंदरता का संपूर्ण आस्वादन करना हो तो कम से कम 6 महीने लगे।
1: आगरा के किले, कमरों, सभागार, मस्जिद इत्यादि को एक के बाद एक देखते हुए वे मुगलों के गौरव की स्मृति में डूब गए थे। आगरा से चलकर वे अगस्त महीने के आरंभ में वृंदावन पहुंचे। लंबे 30 मीलों का रास्ता उन्होंने हाथों में दंड का मंडल लेकर के तथा मात्र 2-1 पुस्तकों को साथ रख करके पैदल तय किया। जब वृंदावन के निकट पहुंच रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक व्यक्ति निश्चिंत होकर के तंबाकू पी रहा है। स्वामी जी ने उस आदमी से हाथ जोड़कर चिलम मांगी। वह व्यक्ति भयभीत होकर के संकोच के साथ बोला,
4: नहीं महाराज, ये मेरी झूठी चिलम है और फिर मैं नीच जाति का हूं, आप इसे कैसे पी सकते हैं।
1: आजन्म के संस्कारों से वशीभूत होकर के स्वामी जी का हाथ अनजाने में ही एकदम पीछे हट गया। उन्होंने फिर अपना रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें होश आया और सोचा,
2: मैंने तो जाति कुल मान सभी को त्याग कर संन्यास ले लिया है ना, फिर जानकर मेरा सोता हुआ जाति अभिमान क्यों जाग उठा, उसकी छुई हुई चिलम मैं क्यों नहीं ले सका। अभ्यास जनित संस्कार का ये कैसा अद्भुत प्रभाव है।
1: स्वामी जी लौट पड़े और जल्द ही उसके निकट आ पहुंचे। फिर बड़े प्रेम से उससे चिलम भरवा करके उन्होंने आनंद के साथ धूम्रपान किया। इस घटना को वे जीवन में कभी न भूल पाए। बहुत दिन बाद श्री गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी जी के मुख से यह कहानी सुनकर कहा था, अरे तुम नशे में इतने लाचार हो गए थे कि अछूत की चिलम से भी उसे पूरा करना पड़ा। इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा,
2: नहीं जी, ऐसी बात नहीं, सचमुच ही मुझे आत्म परीक्षा करने की इच्छा हुई थी। सन्यास लेकर पूर्व संस्कार दूर हुए हैं या नहीं, जाति भेद के पार गया हूं या नहीं, परीक्षा कर देखना पड़ता है। प्रकृत सन्यास को बनाए रखना बड़ा कठिन है। कथनी और करनी में लेश मात्र भी अंतर नहीं चलेगा। क्या तुमने सोच रखा है कि जीवन में सन्यासी का आदर्श पालन करना बड़ा सहज है? जीवन में इतना कठिन पथ दूसरा कोई नहीं। सीधे पहाड़ के अंतिम छोर पर खड़े होना है, जरा पैर फिसलते ही काम तमाम। सन्यास व्रत लेने से हर क्षण आत्म परीक्षा कर देखना होगा कि जाति बंधनों से मुक्त हुआ हूं या नहीं। उस दिन मुझे यही शिक्षा मिली थी कि किसी की भी घृणा नहीं करनी होगी, सोचना होगा कि सभी भगवान की संतान हैं।
0: वृंदावन पहुंचकर वे बलराम बाबू की ठाकुरबाड़ी काला बाबू का कुंज में ठहरे। यहां आकर उन्होंने मानो राधा कृष्ण के अलौकिक लीला विलास का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और उसकी भावधारा में बह गए। स्वयं को संभालना कठिन हो गया। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं उस समय उनकी समक्ष जीवंत लगने लगी। वृंदावन में कई दिन बिताकर उस भगवत लीला का गहनतम परिचय प्राप्त करने के लिए वे निकट के अनन्य लीला क्षेत्रों के दर्शन को निकल पड़े। गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करते समय उन्होंने ये संकल्प किया कि बिना मांगे जो भिक्षा मिलेगी उसी से वे अपनी भूख मिटाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। पहले दिन दोपहर को भूख की पीड़ा असहनीय हो गई। फिर उस समय वर्षा भी होने लगी, मानो उसके कष्ट की सीमा ना रही। भूख और रास्ते की थकान से बलहीन होकर वे किसी प्रकार चल रहे थे। उसी समय उन्होंने अचानक सुना कि कोई पीछे से पुकार रहा है।
4: महाराज, महाराज, अरे महाराज जरा रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ।
1: पर विवेकानंद रुके नहीं, चलते चले गए। वे यह देखना चाहते थे कि यह भोजन सचमुच भगवान ने भेजा है या नहीं। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, पर वह व्यक्ति भी छोड़ने वाला नहीं था। वह भी पीछे पीछे दौड़ा और अंत में उसने स्वामी जी को पकड़ ही लिया।
4: महाराज, महाराज, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं महाराज? मैं सही में आपके लिए ही भोजन लाया हूँ, ग्रहण कीजिए ना महाराज, मुझे इस पुण्य कार्य से।

0: विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़ जो पहले टकराया। बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार, लेकिन कहो बिना बलि किसने पाया आजादी उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूँ मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है ये मेरा अनुमान। हे परम पिता, अपने बलिदान के उस पावन नक्षत्र की मैं दिल से पूजा करता हूँ, मैं उसे वरता हूँ। रूसी कवि पुष्किन की ये कविता महान क्रांतिकारी महावीर सिंह के साथ हमेशा होती थी, जो संभवतः उनके मनोभाव का ही अनुवाद थी। जैसे कोई पुजारी अपने साथ गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ रखता है, ठीक उसी तरह क्रांतिकारी भी जेल की अंधेरी कोठरियों में बलिदान के स्वर में रची पगी कविताओं के दीप जलाकर आजादी का स्वप्न देखते थे। महावीर सिंह का जन्म 16 सितंबर सन 1904 को शाहपुर टहला, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बगावत की भावना उनमें बचपन से ही थी। राष्ट्र पर मर मिटने का संस्कार उन्हें अपने पिता से मिला था। सन 1925 में जब वे कॉलेज में पढ़ने कानपुर आए तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, लेकिन जनता के मन में असंतोष की आग सुलग रही थी। किसान, मजदूर और आम लोग भी अपने अपने तरीकों से लड़ रहे थे। कानपुर का डीएवी कॉलेज क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। भगत सिंह और सुखदेव इसके छात्रावास में ठहरकर क्रांति की योजनाएं बनाते। इसी दल में शामिल थे कुंवर महावीर सिंह। वो देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। उधर पिता देवी सिंह उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी की सूचना से बेचैन महावीर सिंह ने पत्र लिखकर अपने क्रांतिकारी जीवन और संकल्प की बात पिता से कही। पिता का जवाब आया, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मुझे तो लगता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब नहीं रहा, सबने दिल से गुलामी कबूल कर ली है। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तुम जहां भी रहोगे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। पिता का ऐसा पत्र पाकर उनका हृदय खुशी से उछल पड़ा, उनका संकल्प और गहरा हुआ और वो निकल पड़े क्रांति पथ पर।

पिता की सहर्ष अनुमति के बाद महावीर सिंह दल में पूरी तन्मयता से सक्रिय हो गए। सन 1927 में दल की ओर से लाहौर में कुछ लोगों को मोटर चलाने की शिक्षा का प्रबंध किया गया। महावीर सिंह पढ़ाई छोड़कर लाहौर चले गए। सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह और राजगुरु को कार में बिठाकर डीएवी कॉलेज की दूसरी ओर से महावीर सिंह ही सही सलामत निकाल ले गए थे। सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकने के बाद जो गिरफ्तारियां हुईं, उनमें महावीर सिंह भी पकड़े गए। जेल में हर दूसरे तीसरे दिन क्रांतिकारियों का जेल के अधिकारियों से झगड़ा हो जाता। उस समय वे लोग मोटे तगड़े क्रांतिकारियों पर सारा गुस्सा उतारते। भगत सिंह, किशोरी लाल, जयदेव कपूर और महावीर सिंह सबके हिस्से की मार खाते थे। जेल में जब अनशन होता तो नाक के रास्ते नली डालकर क्रांतिकारियों को जबरदस्ती दूध पिलवाया जाता। एक जेल अधिकारी, डॉक्टर और 8-10 तगड़े पहलवान लगते। अनशन की इस लड़ाई में महावीर सिंह सबसे कठिन पड़ते। हर बार उन्हें दूध पिलाने में आधे घंटे का संघर्ष लगता। महावीर सिंह ने शत्रु की अदालत को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके इस न्याय के नाटक में वो भाग नहीं लेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें अन्य साथियों के साथ आजन्म कारावास का दंड मिला और वे बेलारी सेंट्रल जेल भेज दिए गए। यहाँ तरह तरह के अत्याचार होते, असीम यातनाएं दी जातीं और क्रांतिकारियों का विरोध जारी रहता। कभी सुपरिंटेंडेंट उन पर मुक्केबाजी का अभ्यास करता तो कभी परेड में बोझ से लाद कर पशुवत व्यवहार करता। इसके बावजूद जेल में महावीर सिंह का विरोध जारी रहता। उन्होंने पलटकर सुपरिंटेंडेंट को ऐसा घूसा मारा कि दोबारा उसने मुक्केबाजी का शौक नहीं किया। उन दिनों जेलों में बेतों की सजा बर्बरता का जीता जागता नमूना था। महावीर सिंह को 30 बेतों की सजा का हुक्म हुआ। लकड़ी के एक चौखटे से महावीर सिंह को औंधा बांध दिया गया, कपड़े उतार दिए गए। चीफ वार्डर ने अनुमति मिलते ही गिनती आरंभ की। एक बेंत हवा में लहराया और साय की आवाज के साथ उनके शरीर पर उतरा। उस स्थान की खाल उड़ाता चला गया। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। गिनती आगे बढ़ती रही, बेंत उतरता रहा, खाल उधड़ती रही। जिंदा गोश्त के रेशे हवा में छितरते रहे, ताजे खून की फुहार से जमीन लाल होती रही और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद होता रहा। सच तो ये है कि सहने की ये शक्ति शरीर से नहीं, विचारों से आती है। देश को लेकर उनकी चिंता और चिंतन उनके लिखे पत्र से जाहिर होता है। सन 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ अंडमान काले पानी की सजा पर भेज दिया गया। यहां से उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जो सवाई माधोपुर राजस्थान में रहने वाले उनके छोटे भाई श्री बलबीर सिंह वैद्य के पास सुरक्षित था। इस पत्र को उनके साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा ने सन 1969 में लिखी अपनी पुस्तक संस्मृतियां में प्रकाशित किया। ये एक बहुमूल्य दस्तावेज है। भारत भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उस वीरान द्वीप में देश की आजादी के लिए संघर्ष करते एक भारतीय का ये अपनों से किया गया संवाद है। इसके अंश कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे।

सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान, जिसकी दीवारों पर वीर सावरकर क्रांति गीत लिखा करते थे। आजादी के दीवानों के उस तीर्थ से अपने पिता के नाम पत्र लिखते हुए महावीर सिंह कहते हैं, परम पूज्य पिताजी, आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि उपरोक्त स्थान पर मैं कब आ गया। यही पहेली हल करने जा रहा हूं। 19 जनवरी को प्रातःकाल को लगभग 11 बजे जेलर साहब सेंट्रल जेल बिलारी आए और कोठरी का दरवाजा खोलकर सूचना दी, तुम्हारा ट्रांसफर है, पर यह नहीं बताया कि कहां को है। पूछने पर केवल इतना ही कहा कि शायद पंजाब में नए लाहौर षड्यंत्र केस में गवाही देने के लिए मद्रास भेजे जाओगे। 19 तारीख की संध्या को जब मैंने सेंट्रल जेल मद्रास में पैर रखा तो मेरे जीवन मरण के साथी श्रीयुत भाई कमलनाथ तिवारी के दर्शन लगभग 2 वर्ष बाद हुए, और रात को भाई बीके दत्त और भाई कुंदन लाल जी की आवाजें सुनी। आप स्वयं ही जान सकते हैं कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। परंतु अलसुबह फिर कुछ निराशा की झलक नजर आई जब देखा कि तिवारी और भाई दत्त और कुंदन लाल हमसे पहले ही पृथक पृथक ले जाए गए हैं। परंतु 15 मिनट बाद ये स्थिति फिर से हर्ष में बदल गई। मोटर लॉरी में हम फिर मिल गए। बहुत दिनों का वियोग मिटा। उस समय तक मन की खिचड़ी हम पका रहे थे और मिलने के आनंद से विह्वल थे, परंतु ये नहीं पता था कि हम जा कहां रहे हैं। सोचते थे कि शायद पंजाब जाएं, बाद में यहां आएं। परंतु हमारी लॉरी बंदरगाह पर पहुंची और विख्यात महाराजा जहाज के दर्शन हुए। उस समय समझ में आया कि हम लोग अंडमान अर्थात काला पानी जा रहे हैं। मातृभूमि से तथा बंधु वर्ग से सदैव के लिए, अथवा कम से कम 18 साल के लिए पृथक हो रहे हैं। जिस जननी की गोद में पले हैं और धूली में लोटे हैं, उसके दर्शन से भी वंचित हो रहे हैं। आप लोगों की पदारविंद की रज से सदैव के लिए दूर हो रहे हैं। ऐसी दशा में प्यारे देश को छोड़ते हुए हृदय में कितना ही कष्ट हुआ, परंतु साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई, जो कि इसके सम्मुख कुछ अधिक ही थी। वो थी एक साध क्रांतिकारी की दर्शनाभिलाषा पुण्य पवित्र तीर्थ स्थान की, जिसको कि भाई राम रक्खामल ने अपनी समाधि बनाकर पवित्र किया था, और दूसरे बंगाली तथा सिख वीरों की जो तपोभूमि रही है। और साथ ही आशा भी थी कि हमारे जीवन के बंधुगण सर्वदा साथ रहेंगे, और भी अनेक अपने कंधे से कंधा सटाने वाले भाइयों के दर्शन होंगे। 23 जनवरी की संध्या को विस्तृत नील गंभीर जलराशि की 850 मील से अधिक लंबी यात्रा करके हम इस पोर्ट ब्लेयर की जेल में पहुंचे, जहां पर अपने वर्तमान साथियों को मिलने के लिए अति उत्कंठित पाया। उनकी वैसी ही दशा हो रही थी जैसी हमारी हो रही थी। यहां संप्रति लगभग 40 बी क्लास के तथा 24 सी क्लास के राजनैतिक कैदी हैं। कुछ लोगों के निकट भविष्य में हम आशा करते हैं। हमारी जेल तिमंजिला है, और पास ही कुछ गजों के फासले पर नीला स्वराशी गंभीर गर्जन के साथ किनारे से टक्करें मारती है, जो ऊपर से दीख पड़ता है। ये द्वीप समूह जंगलों से भरा हुआ सुना जाता है, परंतु खुली हुई जगहों में कुछ भारतीय लोग भी बस गए हैं, जिनकी भाषा हिंदुस्तानी है। इन लोगों में से बहुत से कैदी हैं, कुछ सरकारी नौकर भी हैं और कुछ तिजारती लोग भी। अभी हाल में तो जेल वालों का कुछ ठीक ठाक हाल ही मालूम होता है, लेकिन आगे की कह नहीं सकते। हमारे पुराने साथियों में अभी हमारे साथ डॉक्टर गया प्रसाद, मिस्टर वी के दत्त, भाई कुंदन लाल जी तथा कमलनाथ तिवारी हैं। बाकी 3 साथी अभी मद्रास सूबे में होंगे, जो कि शायद अभी भी हंगर स्ट्राइक पर होंगे।

जेल की बंदिशें अनगिनत थीं, पत्र व्यवहार बहुत कठिन था, खतरे की घनघोर घटाएं मंडराती रहती थीं, इसलिए लगातार पत्र लिखना संभव नहीं था। इस क्षमा याचना के साथ महावीर सिंह आगे लिखते हैं, पूज्यवर, प्यारे भाई का क्या हाल है इसकी सूचना शीघ्र दीजिएगा। उसे केवल वैद्य ही बनने का उपदेश न देना, पर साथ ही साथ मनुष्य बनना भी बतलाना। आजकल मनुष्य वही हो सकता है जिसे वर्तमान वातावरण का ज्ञान हो, जो मनुष्य के कर्तव्य जानता ही न हो परंतु उसे पालन भी करता हो। उसे सिखलाना कि उसका जीवन उसका नहीं परंतु समाज का है, इसलिए इस समाज की धरोहर को आलस्य तथा आराम तलबी और स्वार्थपरता में डालकर समाज के सामने कृतघ्न साबित न हो। उसे आजकल के वातावरण का ज्ञान करने के लिए समाचार पत्र तथा ऐतिहासिक, सांपत्तिक और राजनैतिक, सामाजिक पुस्तकों का अवलोकन करने को कहिए। समाज से मेरा मतलब संकीर्णता व्यंजक समाज से नहीं है, परंतु जन साधारण के समाज से है, क्योंकि ये धार्मिक समाज मेरे सामने संकीर्ण होने के कारण कोई भी मूल्य नहीं रखते हैं। केवल एक बात मानता हूं मैं, उसको सबसे बढ़कर तथा मनुष्य और समाज का कल्याणकारी समझता हूं, वो है मनुष्य का मनुष्य तथा प्राणी मात्र के साथ कर्तव्य, बिना किसी जाति भेद, रंग भेद, धर्म तथा धन भेद के। वही मेरा उपदेश बेटी सरोजनी को है और दूसरे हमारे भाइयों को भी है। पूज्यवर, आज जब मैं देखता हूं कि सब बहनें समाज की सेवा के लिए अपने को तन, मन और धन से लगाए हुए हैं, अभागा मैं ही हूं जिसके ऐसी कोई बहन नहीं। यद्यपि ये मेरी संकीर्णता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार दूसरी बहनें भी अपनी ही हैं और मैं वैसी ही समझता भी हूं, परंतु मैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी चाहता हूं, जिसकी कुछ आशा मैं अपनी पूजनीय जिया महताब कुमारी से करता था। उनका बहुत समय से कोई समाचार नहीं पाया है, यदि हो सके तो मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। इति शुभम। पत्र शीघ्र भेजिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र महावीर सिंह। पता, PI 68 सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। देश की ऐसी चिंता मन में लिए वो अपनों से दूर अपनी एक एक सांस मां भारती के चरणों में अर्पित करते रहे। 12 मई सन 1933 को अपने साथ पशुवत व्यवहार के विरोध में अंडमान के बंदियों ने अनशन आरंभ किया। अनशन के छठे दिन 17 मई सन 1933 को अधिकारियों ने कैदियों को बलपूर्वक दूध पिलाने का उपक्रम शुरू किया। आधे घंटे की कुश्ती के बाद 10-12 व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अंदर डाल दी। उसने ये देखने की परवाह भी नहीं की कि नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चली गई है। पूरा एक सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया गया। वो मछली की तरह छटपटाते हुए वहीं शहीद हो गए। अधिकारियों ने चोरी चोरी उनके शव को बोरे में भरकर समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। कभी सोचें तो ऐसा लगता है जैसे उन अथाह लहरों के माध्यम से उनका मन अपनी मिट्टी को छू रहा था। ये वैसा ही था जैसे कि लहरें उनकी अंतिम पुष्पांजलि भारत भूमि के चरणों में अर्पित कर रही थीं।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप हैं, यानी कि जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और तभी जिंदगी मुश्किल लग रही थी। हमने ये देखा कि जो थॉट्स, जो विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, विचारों के साथ जो फीलिंग्स हम क्रिएट कर रही हैं, वो हमारे बॉडी के कितने हिस्सों पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस कहकर अभी तक हमने अपनी दिनचर्या को, अपनी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया था, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। आज जानते हैं कि अगर बीमारियां हैं तो क्या थॉट्स पर काम करने से, फीलिंग्स पर काम करने से हीलिंग संभव है। हमारे साथ हर बार की तरह है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बहुत बड़ा, हमें एक कहा जाए एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ ये रियलाइजेशन कि ये जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेरी बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं। अब रिवर्सल की बात करते हैं, पिछली बार भी मैंने बात की थी, लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये पूछें क्या अब जो बीमारी है, जो आ गई है, चाहे वो बच्चों में ही है या बड़ों में या बुज़ुर्गों में भी, वो थॉट पैटर्न से या फीलिंग को चेंज करके हम बदल पाएंगे?
1: डेफिनेटली बदल पाएंगे। और आज हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं, आम व्यक्ति जो रिसर्च को नहीं जानता है वह भी जो डॉक्टर कहते हैं उसे स्वीकार करता है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है, एक रिसर्च की भी, जिससे बहुत लोगों पर भी इफेक्ट होगी। कार्ल ओ साइमोंटन अमेरिकन आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनकी पत्नी साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने ये बातें सुनी थी कि इमोशंस की इफेक्ट होती है हेल्थ पर, इमोशंस के द्वारा हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल दे तो डॉक्टर स्वीकार नहीं करते,
0: साइंटिफिक अगर हम बता पाएंगे।
1: उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने पेशेंट होने चाहिए, उन पर क्या क्या टेस्ट करनी आवश्यक है। ऐसा उन्होंने करीब 122 कैंसर के पेशेंट्स थे, उनको ठीक से चुना और उनके ऊपर ये रिसर्च की। बल ये पूरी एक टोटल रिसर्च थी जिसमें सिर्फ इमोशंस की ही बात नहीं थी, उनको वेजिटेरियन डाइट भी दिया गया जिसमें फाइबर ज़्यादा थे, फ्रूट्स थे, ऐसे ही एक्सरसाइज करने को भी कहा, और साथ साथ उनका मेन फोकस इन इमोशंस पर था कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, उसमें उन्हें विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया, क्योंकि बुद्धि है वो चित्र की भाषा समझती है। तो एक एक मरीज के साथ उन्होंने काम किया, उनको चित्र बनाना सिखाया कि किस प्रकार से तुम इस बीमारी को रिवर्सल करो, थॉट्स भी बताए कि कौन से विचार करो कि जिसके द्वारा भी आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करीब 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट सामने आए तो सचमुच अमेजिंग थे। ये देखा गया कि 122 में से करीब 20 पेशेंट्स का कैंसर समाप्त हो गया, जो बाई चांस नहीं हो सकता है।
0: दवाई साथ साथ चल रही थी,
1: जो नॉर्मल दवाइयां थी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भी कीमोथेरेपी से या ऑपरेशन से कोई उनका सभी का कैंसर इतने परसेंटेज में ठीक नहीं हो सकता। अगर होता है तो लाख में एकाध पेशेंट हो सकता है कि जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि भी अचानक कैंसर खत्म हो गया, परंतु 122 में से 20 पेशेंट का बिल्कुल कैंसर से वो रिकवर हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और करीब 45 पेशेंट्स थे जिनका कैंसर कम हुआ, समझो 2 इंच था तो 1 इंच हो गया, जो भी आश्चर्यकारक था। और जो दूसरे मरीज थे, भले उनकी मृत्यु हुई परंतु डॉक्टर ने जो कहा था उससे वो 2 गुना जी गए। डॉक्टर ने कहा था कि 6 मास ही जिंदा रहोगे, वो 1 साल जिंदा रहे। और सभी मरीजों ने यह कहा कि पहले तो मर मर के जी रहे थे, कैंसर मतलब ही कैंसर, कि भी अभी हम जीने वाले नहीं हैं, परंतु जब ये प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, इन बातों को, इमोशंस को अच्छे से समझा, तो खुशी खुशी जीने लगे, हमारा आनंद का लेवल था वो काफी बढ़ गया।
0: तो 1 साल कम से कम उनका खुशी वाला गुजरा।
1: हाँ, तो नो, दिस इज एन रियली साइंटिफिक रिसर्च विच प्रूव्स।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें तो यहाँ जो कुछ परसेंट डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कम्प्लीटली रिकवर कर गए, जो शायद अपने इमोशंस पे, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि अपने थॉट्स या इमोशंस को रिवर्स करने में भी तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है.
1: तो सब नहीं कर पाएंगे.
0: इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. हम कितने टाइम से अवेकनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स पर काम कर पाए, और हर बार हमें जो है चैलेंजेस आते हैं,
2: लेकिन हर बार हमें सक्सेस भी मिल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड उसका कभी कम कभी ज्यादा. लेकिन अगर सक्सेस मिल रही है तो एक बिलीफ सिस्टम तो पक्का हो जाए कि ये पॉसिबल है. यू नो, अब तक जो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा या मैं नहीं चेंज कर रहा, आज अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सक्सेस मिल रही है, चाहे ये हो सकता है दो सिचुएशंस में मिल रही है, पांच में फेल हो रहे हैं, लेकिन दो में मिलना मतलब बाकी पांच में भी मिल सकती है. दैट इट सेल्फ विल मोटिवेट मी. यू नो, सेल्फ मोटिवेशन से ही हम इस जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं. एंड जैसे ही थोड़ी प्राप्ति होती है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेटर होता है कि अच्छा आज मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने तो कैसे बात की थी मेरे से. एंड देन मेनी पीपल से पहले जैसा अगर मैं होता तो मैं कर देता, आज मैंने नहीं किया, इसका मतलब सारा चेंज किसने लाया? मैंने लाया, वो तो वैसे ही है, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. देन इफ आई कैन डू इट वंस, आई कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ इट्स ओनली अबाउट अटेंशन. तो ईच वन इज ऑन द जर्नी, लेकिन जो उसको जितना अटेंशन से कर रहा है उसको उतना रिजल्ट मिलेगा.
1: एंड दिस परसेंटेज बहुत बड़ा है, जैसे 22 लोग कहे तो अप्रोक्सीमेटली 15% हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात है. अगर 15% लोग कैंसर को क्योर कर सके तो भी वो बहुत बड़ी बात. बल उसके लिए सिस्टमेटिकली अपने इमोशंस पर काम करना होगा, कोई मैजिक नहीं है.
0: तो अब हम बात करें कि काम कैसे करना है, बिकॉज बार बार हम यही कहते हैं कि अनुभव. और इसमें तो जैसे हमने रिश्तों में देखा था, रिश्तों में ही हमने एकदम से देखा फर्क आता हुआ दिखा. मतलब मैंने गुड फील किया, मैंने अगर मेरे साथ कोई खराब रिश्ता चल रहा था, मैंने अगर वो नहीं क्रिएट किए थे पहले, तो धीरे धीरे ये भी दिखा महीने दो महीने के अंदर अंदर कि वो रिश्ता, वो लोग भी परिवर्तित होते गए.
2: एक्चुअली वो लोग परिवर्तित होते नहीं है, जरूरी नहीं है, रिश्ता परिवर्तन हो जाता है. क्यों रिश्ता परिवर्तन हो जाता है? मेरा उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, मेरा उनको ब्लेम करना बंद हो जाता है, अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं. तो जैसे ही आई स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल. एंड इफ आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, आई फील ओके, दे आर नाइस, यू नो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टू चेंज. एक्चुअली दिस कैन ऑल हैपन विदाउट द अदर पर्सन डूइंग एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी चेंज ना क्रिएट करे.
0: हम अपने ऑर्गन्स को ब्लेम करना भी बंद कर सकते हैं.
1: दैट्स ट्रू ट्रू.
0: अभी तक हम यू नो यही कह रहे थे कि ये हार्ट ही प्रॉब्लम है, किडनीज ही खराब है, यू नो, या पेट ही खराब है.
1: नहीं, परफेक्ट. आई विल टेल यू इन डिटेल, थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन से बात करना सीखना चाहिए. मैं पूरा ये कराता हूँ.
0: अच्छा.
1: ना, ऑर्गन से बात करो. जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो स्वीकार करो, बिकाओ हार्ट आई एम सॉरी, मैंने तेरे पे बहुत फोर्स डाला, नहीं? तेरे पे मैंने अनड्यू नेगेटिव अत्याचार किया कि विगला गलत खा के, एक्सरसाइज नहीं करके, इमोशंस ला करके, हार्ट को बोलो आई एम सॉरी, प्लीज हील मी. इट रियली वर्क्स, एंड रियली वी हैव सीन रिवर्सल टेकिंग प्लेस.
0: जैसे वो कहते हैं कि प्लांट्स को करते हैं,
2: हाँ, जैसे प्लांट्स के साथ जो प्यार से बात करेगा. पर इस केस में आई थॉट जैसे ही आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, यू नो, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, एक्चुअली यू आर फीलिंग बेटर ना, यू नो. अब आपसे अगर मैं सॉरी कहूँ, आप कितना टाइम लेंगे उस बात के लिए, वो तो आपकी प्रॉब्लम.
0: मैं तो अच्छा,
2: लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, तो आई फ्री माय सेल्फ ऑफ गिल्ट ऑफ द बर्डन. तो कितनी सारी इमोशंस मैंने रिलीव कर लिया. दैट वाज द पर्पस, कि अपनी इमोशंस को क्लीन कर लो तो प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी.
1: और वो एटम्स भी चेंज हो रहे हैं ना. नहीं, वाटर क्रिस्टल्स का हम सब ने सुना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं ऐसे पानी के ऊपर इफेक्ट होती है. तो 90% इज वाटर ओनली. तो जब आप बात करते अपने आप से, तो वो जो वाटर क्रिस्टल्स पर चेंज होगा तो ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होगी, साथ साथ हर एटम पर भी इफेक्ट होगी, और भी जो सूक्ष्म अणु है, जो तत्व है, उन पर भी इफेक्ट होगी, और सचमुच हीलिंग हो सकती है.
0: तो आप कैसे प्रोसेस करें?
1: ये तो छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, सभी एक्सेप्ट शायद न भी करे, लेकिन तीन लेवल पर काम करना चाहिए. एक तो है अपने विचारों पर कार्य करना है, दूसरा इमोशंस पर कार्य करना है, और तीसरा पिक्चराइजेशन पर, विजुअलाइजेशन पर. क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह पिक्चर्स की भाषा को समझती है. तो पहले देखें कि थॉट्स पर क्या कार्य करें. तो थॉट्स तो ऐसे हो कि जो मेरे इमोशंस है उसके अनुरूप, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि शांति की आवश्यकता है लंग्स को, तो हम पीस के विचार करें, ये सिंपल भी कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ पीस, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है। अलग अलग रूप से शांति की गहराई में जाने की कोशिश करिए। यह भी एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि परम धाम जो मुझ आत्मा का घर है वही शांति धाम है, वहाँ संपूर्ण शांति है। ऐसे ही समझो कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो प्यार के विचार करो
0: कि परमात्मा मुझसे इतना प्रेम करता है।
1: ये भी मैं आत्मा प्रेम स्वरूप तो हूँ ही, परंतु परमात्मा मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे बिना कोई शर्त के प्यार दे रहे हैं, और मुझे सचमुच सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से ही मिल रहा है। भले मैं अपने संबंधों को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, परंतु जो एक्सपेक्टेशन है वो प्यार की परमात्मा से ही है, कोई संबंधों से मैं प्यार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही पेट की प्रॉब्लम है तो सुख के विचार करो। तो जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, वह सातों गुण अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाए, एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भी सातों गुणों का भी अनुभव करो, क्योंकि सबको जरूरत तो है ही। और फिर एक स्पेसिफिक जो बीमारी है उसके अनुरूप उस गुण का गहराई से अनुभव करो, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे।
0: और जैसे आपने कहा था कि अगर डायबिटीज की बात है या थायराइड की बात है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो उससे सिक्रीशन से ज्यादा या कम से तब हो रहे हैं, तो उसमें कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें?
1: हाँ, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमने देखा कि डायबिटीज का लोभ से संबंध हो सकता है, तो बोल उसके अनुरूप भी कहीं एक्यूमुलेट करने की तो मेरे में बात नहीं है, मैं टोटली इससे फ्री हो जाऊं। और मैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको जनरल भी बताया वह बिल्कुल सत्य है, वह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आनंद चाहिए। आज है ना जो विकृतियां भी इतनी बड़ी है वो क्यों? क्योंकि लगता है कि भी विकारों से आनंद मिल रहा है, परंतु वो तो एक्साइटमेंट है, और वहां भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही संबंध है। अगर योग के अभ्यास से सच्चा आनंद मिलने लगे, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मनी में कार्य करने लगेगी।
0: तो सुश्री शिवानी, ये जो अभी बोला मेडिटेशन ही वो माध्यम लगता है जो हम इन सारे सातों जो गुण हैं उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग जो बैठते हैं उसमें स्पेसिफिक हम इन गुणों पर फोकस करें।
2: आई थिंक हर रोज हम एक गुण को ले सकते हैं, 7 days ऑफ द वीक 7 qualities, क्योंकि उस गुण को सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये तो अब जैसे मंत्र की तरह तो है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उस क्वालिटी को लेना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, और उस एनर्जी को अपनी बॉडी को भी देना है। और 5-10 minutes ही हम बैठते हैं अभी शुरू शुरू में, वी आर नॉट एबल टू सिट मोर देन दैट, तो एक क्वालिटी को ले लेते हैं, एक क्वालिटी हर रोज की ले, और उस थॉट को सिर्फ बोले नहीं लेकिन उसको बिलीव करें, बिकॉज परमात्मा ने हमें बताया है कि दिस इज माई ट्रू नेचर, एंड मुझे भी मालूम है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, सो येस दैन दिस इज माई ट्रू नेचर। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम अ पीसफुल सोल, मतलब मैं तो सारा दिन इतना परेशान और गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुल सोल हूँ। तो ये अपने आप को कहने से Am I cheating myself?
0: झूठ तो नहीं बोला, यही मैं कहना
2: चाहती हूं। क्या मैं अपने आप को एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल? तो वो झूठ नहीं है, वो एक सत्यता है जो भूल चुकी है। एक किसी को अगर अपनी याददाश्त चली जाए तो उसको कैसे याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो? तो उसको बार बार यही कहा जाता है ना, आपको पता है आप ये हो, आप ये हो। तो अब ये मैं भूल गई हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ही अपने आप को अब याद दिलाना है। दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, कि मेडिटेशन से दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। और उससे क्या हो रहा है, वो थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है, एंड बार बार वो थॉट पैटर्न क्रिएट होने से मेरा संस्कार जो है ओरिजिनल, इट इज री इमर्जिंग। तो आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चार्ट कि हर रोज एक क्वालिटी पे, और फिर अगर विशेष कोई बीमारी है तो उस पर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन रख के। बट ये कितना अच्छा लग रहा है कि अगर हम सातों क्वालिटीज के ऊपर वर्क करें तो फिजिकली द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी।
1: आत्मा को पता है कि भी कौन सी बात, कौन से इमोशन के कारण मुझे बीमारी हुई है, भल हम जागृत रूप से नहीं जानते, और फिर उस पर गहराई से कार्य करो
0: कि वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस है कि मैं वो फीलिंग क्रिएट करता हूँ।
1: या तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, बीमारियों के पीछे एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आत्मा में जैसे भी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मैं समझता हूँ आत्मा में भी बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ भी फोल्डर्स भी है। आत्मा में कई फोल्डर्स है कि भी जो फोल्डर में भी फाइल्स है, तो भी कहीं ऐसा फोल्डर है जहां वो नेगेटिव बात है कि भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, समझो वो है आपके अंदर फोल्डर, और वो फोल्डर के अंदर और भी चीजें है और वो डिस्टर्ब कर रहा है। और कभी भी अचानक जब भी ऐसी कोई आप घटना देखते हैं और कुछ होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस आपके शरीर के ऑर्गन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा, तब आवश्यकता है उसको डिलीट करने की। अगर उससे हमने कंप्लीटली डिलीट कर दिया तो वो बीमारी की इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो उसे समझे, एक्सेप्ट करे, उस फोल्डर को ओपन भी करो यह है, और फिर योग के माध्यम से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बल पूरा प्रोसेस है, लेकिन अच्छे से करो तो उस फोल्डर को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक बात आपने कहा कि तीन चीजें आपने कही थी, वन इज थॉट का,
1: थॉट लेवल पर,
0: हाँ। एक है आपने कहा फीलिंग के लेवल पर, तीसरा आपने कहा विजुलाइज, वो कैसे करना है?
1: पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर्स आर वेरी वेरी डीप, कि पिक्चर्स कैसे क्रिएट करने के, कि जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं। साइमन टॉन ने भी यही किया कि उन पेशेंट्स को समझाया कि भाई ये बीमारी आपकी कैसे होती है। जैसे कैंसर के लिए उन्होंने बहुत एक सरल सी बात बताई कि जो कैंसर सेल्स है आपके, वो चूहे जैसे हैं।
0: अच्छा,
1: कि भी नहीं, लाखों करोड़ों चूहे अंदर इकट्ठे हो गए।
0: आई मा, सो वी मतलब विजुलाइज दैट,
1: या नो, ही जस्ट एक्सप्लेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। और आपकी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो व्हाइट ब्लड

0: चेहरे पे भी दिखाई दे रहा था कि नॉट कंफर्टेबल नो विजुअलाइजिंग दिस। तो ऐसे कहीं हो सकते कि भी एक विजुअलाइजेशन के लिए व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है। कार्लोस साइमोंटोन ने भी यही कहा कि आप अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, यहाँ तक कि हर एक पेशेंट को कहा आप चित्र भी बनाइए, भले आप चित्रकार नहीं भी है परंतु तो आप अपना कुछ भी सिंपल लाइन डायग्राम भी बनाइए और उसको बार बार रिपीट करो।
1: लेकिन एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कहा कि आप विजुअलाइज करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब वीडियो गेम में आप कैसे कंसंट्रेट करते हो, मुझे मारना है मुझे मारना, यू नो हाउ दे प्ले दैट। ही सेज देयर आर दीज हु आर रोमिंग अराउंड इन योर बॉडी एंड यू बिकम एंड प्ले द वीडियो गेम विद योर थॉट्स, यू हैव टू किल ऑल दीज पीपल। द चाइल्ड केम आउट ऑफ हिज इलनेस।
0: या वंडर, नो इट्स दिस इज अ केस ऑफ अ ब्रेन ब्रेन कैंसर। ये जो केस बता, हाँ या इट्स अ रियल स्टोरी।
1: ये वीडियो गेम खेला क्योंकि वो बच्चा था, तो बच्चे को कैसी चीज दें, एंड वो ऑब्सेशन बन जाता है ना आपके साथ वीडियो। ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट थिंग
2: अंदर। आपको तो विन करना ही है, यू नो यू हैव टू।
1: ही वाज एबल टू कम ओवर दैट प्रॉब्लम।
0: और इवन देखो ये पूरा रियल स्टोरी शिवानी बेन जो बता रहे हैं ना, कि वो बच्चे को ब्रेन में कैंसर था और उसको ये कहा कि भाई अभी तुमको उसको मारना है, शूट करना है, और कहा कि बच्चे के लिए इजी है कि भाई तुम वीडियो गेम खेलो, सबको खत्म करो। वो बच्चे ने सचमुच किया, वो बड़ा अच्छा उसका विजुअलाइजेशन था, वो परफेक्ट करता था। एक मास के बाद उसने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मुझे लगता है मेरे सब कैंसर सेल्स मर गए, और फिर जाके उसका स्कैनिंग किया तो इट वाज क्लियर। बच्चे को करते करते भी उसको कॉन्फिडेंस भी हो रहा है सचमुच।
2: अच्छा था तो वो करा।
0: मे बी विजुअलाइजेशन।
2: यहां हम बड़े हैं तो हमें बार बार ये डाउट होता है कि हम अपने आप को झूठ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग। इतनी बड़ी बीमारी है और हम ऐसे एक्टिंग करके कर सकते हैं क्या? ये हमें अपनी ताकत शायद नहीं
0: मालूम है,
1: पावर ऑफ द माइंड नहीं मालूम।
2: इट लुक्स कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे खेल खेल रहे हैं क्या।
0: उसमें भी उन्होंने सचमुच देखा भी ये सब पेशेंट्स में कि भी उन्होंने अपने आप चित्र भी निर्माण किए और फिर प्रैक्टिस की, कईयों के चित्र में ही आता था कि इट इज नॉट पॉसिबल,
2: है ना।
0: जैसे साइमोंटोन अपनी बुक में लिखते हैं कि भी एक पेशेंट को चित्र बनाने के लिए, तो उसने चित्र बनाया कि कैंसर सेल्स है ना वो राक्षस जैसे,
2: तो
0: और मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स छोटे छोटे है ना, कि भाई वो से लड़ रहे हैं, तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो पिक्चराइजेशन में था कि भी मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स तो वीक है, वो राक्षस को नहीं मार सकते तो नहीं मरे।
2: तो कहीं मनोबल या कहीं कुछ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट बहुत है,
0: मतलब नहीं, मेन चीज तो डाउट को दूर कर, यह समझ ले कि भी माइंड में जबरदस्त शक्ति
2: पावर
0: है,
2: यस।
0: हाँ, ये कुछ भी कर सकता है सचमुच।
1: जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना ईजियर हो जाता है। दैट इज़ वाई इट्स अ बिग यू नो डीप कनेक्शन बिटवीन कि हम मेडिटेशन करें, मन बुद्धि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वी विल बी एबल टू डू इट,
2: क्योंकि मन स्ट्रांग होता जाएगा फिर बहुत ज़्यादा,
0: और क्लैरिटी। दूसरा भी पिक्चराइजेशन में जितना आप क्लियर विजुअलाइजेशन कर सको उतनी अच्छी इफेक्ट होगी। कुछ लोग कहते भी हम अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, तो भी करते रहो, इवन सचमुच कलर डायग्राम ड्रॉ करो।
2: अच्छा।
0: उसको देखते रहो।
2: तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तब कैसे
0: करें? अच्छा बताता हूँ। देखो हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में है वो सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन, तो अगर यह सोचा जाए कि मेरी ब्लड वेसल्स है उनको ये सब नसें आ रही है और उन पर बहुत प्रेशर है, उस पर प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बहुत आ रही, इसलिए नसें छोटी हो गई, उस पर प्रेशर आ गया और अब ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ये चित्र निर्माण करो कि वो जो प्रेशर है वो कम हो रहा है,
2: वो एक्सपैंड कर रहे हैं,
0: क्योंकि मैं शांत हूँ, अब मैंने अपने इमोशंस को सही रूप से समझ लिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड, और मैं रिलैक्स्ड हूँ तो सिंपैथेटिक जो स्टिम्युलेशन है वो भी कम हो गया। वो एक साथ में 100 इम्पल्स आ रहे थे, अभी 50 हो गए, और हो गए तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होने लगे, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर रिलैक्सिंग, माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, इट रियली हैपेंस।
2: जब ये हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर है हाई, तब ये अगर विजुलाइज करें तो इम्पैक्ट होता है?
0: तो इम्पैक्ट होगी, हाँ, इवन इमीडिएट तो इम्पैक्ट हो सकती है।
2: अच्छा, और डायबिटीज है अगर?
0: यहाँ नहीं है, हार्ट का ही देखो, अभी एक पेशेंट ने तो सचमुच एक डॉक्टर को करके दिखाया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को उसने ना करके दिखाया, उसने कहा देखो अभी आप देखो मेरी हार्ट रेट है वो 95 हो गई, फिर वो कुछ करता था उसकी हार्ट रेट हो जाती थी 82। डॉक्टर को आश्चर्य होता कि क्योंकि अपने थॉट से इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एंड में पेशेंट को पूछा कि तुम करते क्या हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भी तुम्हारे पास माइंड में

0: पावर है, तुम जब चाहो तब हार्ट रेट को बढ़ा देते हो, जब चाहो तब कम कर देते हो। उसने कहा सिंपल बात है, भी मैंने समझा था कि भी मैं मेरे जीवन की एक इवेंट है वो थी जिसमें मुझे बहुत एंजाइटी हुई थी, बहुत प्रेशर हुआ था, जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है। फिर मैं अपने ऐसे इवेंट्स है कि जिसमें मुझे सफलता मिली थी, प्राइज मिली थी, तो बस उसको याद करता मेरी हार्ट रेट कम हो जाती है। आई अंडरस्टूड वंस और ट्वाइस, और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो आज जब चाहो तब मैं ये कर सकता हूँ ना। सो ऑल्दो दिस इज
1: बिल्कुल,
0: वन
1: आप उस
0: केस।
1: इवेंट में चले गए,
0: मैं हाँ
1: विजुलाइज किया उस इवेंट को. एक्चुअली हम अननोइंगली कितनी बार तो कर रहे
0: कर
1: हैं.
0: रहे हैं, कर रहे हैं,
2: लेकिन ज्यादातर हम कौन से इवेंट्स को विजुअलाइज
1: वो जो
2: करते
1: दुख
0: हैं?
1: वाले थे, नेगेटिव थे, गलत
2: तो देखो
1: थे.
2: डैमेज कितनी बार, एक बार जब वो इवेंट हुआ और फिर जितनी बार उस इवेंट को याद किया उतनी बार डैमेज। तो एक बार नहीं डैमेज हुआ ना, कितनी बार डैमेज हो गया।
1: और अगर अभी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं.
0: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कई सालों से इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और करीब 1,500 जितने पेशेंट्स कि जिनमें डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और वो पेशेंट नहीं चाहते थे कि भी हम बाईपास कराएं, वो चाहते थे कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन हो करके इसकी इफेक्ट हो सकती है क्या। तो ऐसे पेशेंट्स को 7 दिन के लिए वहाँ शांतिवन में रखते हैं, उनकी सारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, ये ढूंढते भी है, जो मैंने कहा ना कि कौन से इमोशंस है जिससे इफेक्ट हुई, उस इमोशंस को भी ढूंढते हैं, और साथ साथ ये विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, विशेष कराते भी है, प्रतिदिन उनको ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराते, कुछ योगी भी सामने बैठते हैं और वो भी उनको वह पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, और पेशेंट अपने आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके पावरफुल रिजल्ट है, यहाँ तक कि वह डॉक्यूमेंटेड केसेस है। फिर से उनकी एंजियोग्राफीज की गई और ये प्रूव हुआ कि सचमुच उनमें काफी रिवर्सल हो गया है, यहाँ तक कि जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो एंजियोग्राफीज दिखाते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि भी इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी है। सो दैट प्रूव्स दैट नो दोज रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल।
1: व्हाट आर द विजुअलाइजेशन
0: या ये विजुअलाइजेशन की जो चर्बी जम गई है वो कम हो रही है। एक तो सिंपल ही है कि भी मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है, और आत्मा से जो है वो प्रकाश की किरण हार्ट पर पड़ती है, और वो हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जाती है, और इतनी वो भले सूक्ष्म किरणें हैं बट दे आर रियली पावरफुल,
1: लेजर?
0: कॉन्सेंट्रेट वे में, हाँ लेजर रेस की तरह जा रही है, और लेजर रेस की जा रही है तो धीरे धीरे वो चर्बी को पिघला देती है और जो ब्लॉक्स है वो कम हो रहा है।
2: इट्स लाइक जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होती है
0: जी हाँ, तो
2: ना,
0: कैसे
2: उसको
0: हम
2: कैसे
0: करते
2: क्लीन करते
0: करते
2: हैं.
1: वो एक केमिकल भी
2: हाँ,
1: कई बार
2: ये
1: डालते
2: पाइपलाइन
0: हैं।
2: को क्लीन करना है, दैट इज व्हाट वी विजुअलाइज, कि ये किरणें अंदर जा रही हैं और वो जो सब कचरा जो जमा हुआ है उस पाइप के अंदर उसको क्लीन करती जा रही है. माई ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग स्मूथ. थॉट पैटर्न चेंज हुआ, विजुअलाइज किया. अमेजिंग रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इट्स जस्ट 7 days वहाँ जाकर करते हैं. एंड जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उनके फैमिली के एक मेंबर, मोस्टली स्पाउस जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है. तो बेसिकली जीवन के हर एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं उस 7 दिन में, और फिर उनको वापस जाकर भी उस लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मेंटेन करके रखना है. एंड 6 महीने के बाद
0: बात फिर
2: उनके
0: से
2: सारे
0: रिपीट
2: टेस्ट और वो सब फिर से होते हैं. वेरी साइंटिफिकली डन प्रोजेक्ट.
1: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, जिस तरह से एक, मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ लेकिन इट्स रियली ट्रू, मिरेकल लगता है कि आज बीमारियों से हम इतने घबराए हुए हैं और इतना पूरा वक्त एनर्जी उसी में निकल रही है. तो अगर ये संभव है, हमारे हाथ में है टेक्निक, हमारे हाथ में शक्ति है, तो हम उसको प्रयास को करें. आपके द्वारा हमें पता चल रही हैं चीज़ें. थैंक यू सो मच.
0: थैंक्स।
1: मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. लाइफ स्किल्स, जिंदगी की सारी स्किल्स सीखने के बावजूद अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है. इन स्किल्स को हमारे साथ इस सफर में सीखें. अब आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चलिए घर चलिए, आपकी शराब की लत के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मेरे गहने, कपड़े, घर सब कुछ बिक गया, फिर भी आपको अक्ल नहीं आई।
1: अकल बता दिया।

इस बीड़ी की लत के कारण तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। रोज 5 से 10 बंडल बीड़ी पी जाता हूँ। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया है। आज की स्थिति यह है कि मुझसे ठीक से खाना नहीं खाया जाता, गैस पास नहीं होती और मुझे दिन भर में ही कितनी बार लोटा लेकर दौड़ना पड़ता है।

आह आह, इस जर्दे के कारण तो मेरे गालों में बड़े बड़े छाले हो गए हैं, रातों की नींद हराम हो गई। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बनो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: आपने बहुत अच्छा होमवर्क दिया कि हर एक घंटे में मैं तो उसे मेडिटेशन कहूंगा, लेकिन आपने कहा था कि एक थॉट डालो कि जो जो मैं कर रहा हूँ, जो जो मैं सोच रहा हूँ, जो जो मेरी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी मेरी एक रिकॉर्डिंग परमानेंट इटर्नल बन रही है।
3: राइट।
2: और ये ही मेरा अगले जन्म का फ्यूचर का पर्सनालिटी बनने वाली है।
3: दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट।
2: क्यों ना मैं ऐसा पैदा हूँ कि सब मुझे प्यार करे, सब मेरी इज्जत करे और मैं भी खुश रहूं।
3: तो आज इन्वेस्टमेंट अगर की तो प्रेजेंट भी ब्यूटीफुल, फ्यूचर भी ब्यूटीफुल।
2: ये जो बनाने के लिए मेरे अतराफ ब्यूटीफुल नहीं है ना, मेरे पास कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे एक घंटे वाले को डिस्टर्ब कर देते हैं।
3: लोग हमारे एक घंटे वाले को डिस्टर्ब करते हैं।
2: जो मैं सोचता हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, कोई ऐसी बात कोई बोल देता है या कुछ ऐसी हरकत स्टाफ कर देता है।
3: ये हम वापस ब्लेम मोड में कैसे चले गए?
2: इसलिए आया है कि ये मैं एक घंटे वाली जो प्रैक्टिस की उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हुआ।
3: बातें आएंगी, लोग अलग अलग तरह व्यवहार करेंगे, मुझे क्या रिकॉर्ड करना है?
2: मैं रिकॉर्डिंग पर अटेंशन दे रहा हूँ, लेकिन लोग भी तो टेंशन दे रहे हैं।
3: अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, ये पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखने कि मेरी अच्छी रिकॉर्डिंग होने के लिए सब कुछ मेरे आसपास बहुत अच्छा होना चाहिए।
2: माहौल नहीं होना चाहिए थोड़ा भी?
3: माहौल तो जैसा है वैसा रहेगा।
2: लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे?
3: लोग जैसे कम्फर्टेबल हैं वैसे हैं।
2: मैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने लग गया।
3: फिर वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उस आत्मा पे क्या रिकॉर्डिंग हो गई फिर, कि जहां कुछ मुझे सूट नहीं करे विड्रॉ, जहां मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे विड्रॉ। फिर वो बच्चा जो पैदा होगा वो भी सबसे विड्रॉ होगा, तो विड्रॉ होने की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते।
2: आई डोंट वांट टू बी बॉर्न लाइक दैट।
3: आई डोंट वांट टू बी बॉर्न लाइक दैट।
2: नहीं,
3: कांट यू विजुअलाइज द चाइल्ड?
2: नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है अगले जन्म में। विड्रॉ करके कोने में बैठा हुआ है, डॉक्टरों के पास पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, बोलता ही नहीं है, इतना खामोश है, इतना इंट्रोवर्ट है।
3: इसकी स्कूल में किसी से बनती नहीं, इसके दोस्त नहीं है।
2: नहीं, सब लोग खेलते हैं तो भी कोने में बैठता है,
3: घर आके अकेला बैठता है कमरे में, नीचे भी खेलने नहीं जाता घर से बाहर। ऐसा बच्चा बनना है?
2: नहीं बाबा।
3: अभी देखो कितना इजी हो गया है, इजी हो गया है। ये मेरा प्रेजेंट तो ये मेरा फ्यूचर, तो कैसा बच्चा बनना है? जो सबसे हार्मनी में रहता है, खुल मिल जाता है, हंसता खेलता है, बातों को भूल जाता है, लाइट रहता है, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है उसके अंदर, तो जीवन भी सिंपल है, वैसा बच्चा बनना है। अभी करना पड़ेगा।
2: ज्यादा बात कर तो ऐसी बात करते हैं कि फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ।
3: वो ऐसी बात करते हैं फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। आज वो वैसी ही बात करेंगे, लेकिन आज
2: फिर मैं ही नहीं करूं तो इरिटेट ही नहीं हूं ना।
3: फिर विड्रॉ होने का संस्कार हो रहा है ना,
2: फिर मुश्किल हो रहा है ना। आई कांट चेंज द अदर पर्सन।
3: यू आर नॉट टू चेंज द अदर पर्सन।
2: फिर ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना ऐसे लोगों से। कांट यू बी सिलेक्टिव?
3: कितने लोगों से सिलेक्टिव होंगे?
2: ये भी सही है, हर एक में से कुछ ना कुछ तो अच्छा कुछ बुरा दिखता है, ज्यादा बुरा ही दिखता है हर एक का।
3: तो वो भी तो हमारा संस्कार है ना, जो हर एक का ज्यादा बुरा दिखता है। ये भी एक रिकॉर्डिंग है कि हर एक का ज्यादा बुरा दिखता है हमें।
2: ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी।
3: एक्सेप्टेंस ऐसे मजबूरी से नहीं, ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। इट्स ट्रू ना कि हर एक का अलग अलग संस्कार है। जब हमें संस्कार समझ में आते हैं तो लोगों के साथ चलना बहुत इजियर हो जाता है, क्योंकि हमें ये दिखाई देता है कि हर आत्मा भी वो आइसबर्ग है जिसका 90% तो इतना बंडल ऑफ संस्कार है जो वो लेकर आया है। किसी भी आत्मा को देखें, एक जो हमने देखा कि वो पिछले जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर आते हैं, हर आत्मा लेकर आई है। वो इस जीवन में आने के बाद अवेयर भी नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग क्या कर गई है, लेकर आ गई है। ये आत्मा हमारा बेटा हो सकती है, बहू हो सकता है, दामाद हो सकता है। हम कहते हैं बेटा ऐसे कैसे, ये बेटा ऐसे कैसे, मतलब बेटा तो वो इस कॉस्ट्यूम में बना है, राइट? लेकिन सीडी तो पहले से लेकर आई है वो गाना. अब हम जैसे ही उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस रिश्ते के लेबल से नहीं, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस से देखते हैं, इट्स वेरी इजी टू से सन मीन्स ऐसा होना चाहिए, डॉटर मीन्स ऐसी होनी चाहिए. म्यूजिक प्लेयर को नहीं देखना, सीडी को देखना है जो अंदर आई है. सीडी गाने लेकर आई है, कौन से जीवन में, कौन सी परिस्थितियों में उस सीडी पे वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है. आज वो सीडी हमारे घर आई है. क्या होता है किसी भी घर में, पेरेंट्स है, दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं पर कितने सारे गाने रिकॉर्डेड होंगे?
2: अनगिनत.
3: क्या वो हस्बैंड एंड वाइफ के गाने सेम होंगे?
2: नहीं.
3: नहीं, तो पहले तो उनके ही गाने अलग, राइट? अब ये रिकॉर्डिंग्स हैं सारी. अब ये दो सीडी हैं, इनके घर एक तीसरी सीडी आई है. तो तीसरी सीडी भी तो अपने गाने रिकॉर्डेड लेकर आएगी ना. ये तीसरी आत्मा आई है उस घर में.
2: तीसरी आके बोले मेरी ही गाने सुनो, तो फिर ये दोनों को भी डिस्टर्ब होता है ना.
3: यही तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है ना. ईगो है तो सब कहने वाले हैं मेरे ही गाने सुनो, क्योंकि ईगो मींस हर सीडी कहती है कि मेरा ही गाना राइट है. यही तो ईगो.
2: इसीलिए तो विड्रॉल इजी हो जाता है.
3: विड्रॉल किया तो विड्रॉ होने का संस्कार क्रिएट हो जाएगा. आपने कहा कोई सामने ठीक से बात नहीं कर रहा है. ठीक से भी क्या मतलब, जो मुझे ठीक लगता है वैसे नहीं कर रहा है, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है. ठीक है,
2: ये अच्छी लाइन है, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा. क्या?
3: मुझे ठीक नहीं लग रहा. उस दिन आपने लंच पर कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई खाना परोसे मेरी प्लेट में आकर, कोई बार बार मुझे पूछे कि आप लेंगे, आप और लेंगे.
2: नहीं लेंगे नहीं, डाल देते हैं खाना प्लेट में, चलते चलते इधर बात कर रहा हूँ तो रोटी डाल के चले जाते हैं.
3: तो तब आपने
2: खो, खो, खो, और हाँ,
3: तो तब आपने और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही थी
2: जी,
3: विच वी नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट जस्ट नाउ
2: जी,
3: कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज
2: इन व्हाट,
3: इन दैट स्टेटमेंट. क्योंकि उस दिन लंच पर किसी ने आकर बहुत प्यार से कुछ परोसा था, जो कर रहा था उसका जो संस्कार था उस समय वो प्यार केयर का था. उसके संस्कार के अनुसार किसी को इस तरह से भोजन कराना, उनको और चार बार पूछना आप लेंगे, आप लेंगे, अच्छा थोड़ा सा तो ले लो, इतना नहीं, अच्छा एक, दिस इज साइन ऑफ केयर एंड लव फॉर सम सोल्स, फॉर अ लॉट ऑफ सोल्स. ये उनके लिए नेचुरल है, ये उनके लिए सही है, बिकॉज उनको वो सही लगता है. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर केयर फॉर यू. आप उसको कितना भी गलत कहें, उस आत्मा के लिए वो बिल्कुल सही है
2: जी.
3: सही है,
2: आपके कहने से सही है.
3: नहीं, आप ये देखिए ना उस नजर से.
2: ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, आगे बात करता हूं.
3: इतना करते हैं ना कि वो आत्मा सही है, राइट? आपने उस समय कहा आई जस्ट विल नेवर बी एबल टू टेक इट कि कोई मेरे खाने के बारे में बात करे.
2: करेक्ट.
3: ये स्ट्रॉन्ग लाइन है.
2: स्ट्रॉन्ग वंस एंड फॉर ऑल.
3: एक पहली बात तो ये मैसेज माइंड को कभी नहीं देना कि ये चीज तो मैं कभी टॉलरेट कर ही नहीं सकता. दिस इज एज गुड एज, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा अगर आपको ये एलर्जी ठीक करनी है तो नॉनवेज छोड़ दो, तो आपने एकदम से कहा ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता. ये स्टेटमेंट सच थी?
2: नहीं, छोड़ सका ना.
3: बाद में छोड़ सका, तो वो लाइन सच नहीं थी. इसी तरह कोई भी लाइन सच नहीं होती जब हम कहते ये तो मैं कर ही नहीं सकता.
2: ओके,
3: आई कैन से अभी ये मेरा संस्कार है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जब हम कहते ये तो मैं कभी नहीं टॉलरेट कर सकता. नो, अभी मेरा ये संस्कार है कि कोई अगर मेरी प्लेट में ऐसे आए या मेरे खाने के बारे में बात करे कि आपने खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खा रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता. ओके, लेकिन मैं अपने अच्छे लगने को अब थोड़ा सा क्या करूंगा, वर्क करूंगा. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ग्रूव बन रहा है ना. अगर आज हमने ये रिकॉर्डिंग चेंज नहीं की कि जब कोई मेरे खाने पे बात करता है तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, विजुअलाइज द चाइल्ड, आत्मा ये रिकॉर्डिंग लेकर जाएगी।
2: मैं अब, आया ही हूँ।
3: हाँ, लेकर
2: रिकॉर्डिंग लेके
3: हो सकता है लेकर ही आए हैं, तो अब तो चेंज कर लेना चाहिए। अब वो बच्चा जो पैदा होगा ना, अब तो वो बच्चा है, अब उस बच्चे को उसके पेरेंट्स सिखाने वाले हैं, ये खाना है, ये खाना है, ऐसे खाना है, थोड़ा सा और खाना है, ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये बच्चे का है ना।
2: मेरे तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, आप उनकी प्लेट में डाल दीजिए जबरदस्ती, नो ऐसे बात करते हैं, आप मुंह में डाल दीजिए थूक देते हैं।
3: तो यू कैन सी ना कहाँ से आ रहा है वो संस्कार,
2: थूक देते हैं, डराते हैं कि वॉमिट कर दूंगा। और
3: तो ये संस्कार कहाँ से आया, ये संस्कार लेकर आप भी जाएंगे अगर अभी चेंज नहीं कर दिया तो?
2: तीसरा
3: सी चेंज करेंगे, इट डजेंट मीन कि हाँ कोई भी कुछ भी डाल दे मैंने खाना ही है, नहीं, डजेंट मीन दैट, इट जस्ट मीन्स मेरे को रिकॉर्डिंग चेंज करनी है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है।
2: कई लोग झूठ बोलते, आधा खा लो, एक खा लो, मन में तो है नहीं जल्दी उठे, वो भी है।
3: अच्छा,
2: तो
3: वो उनकी रिकॉर्डिंग है ना,
2: उनकी रिकॉर्डिंग।
3: हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, टुडे वाज द होमवर्क।
2: हम इस टाइम पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्या जानता हूँ।
3: हम इस समय ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अब मुझे कैसे करना है।
2: अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए आप?
3: मैं पास्ट का हर बार नहीं सो, फिर आप कहते हैं पास्ट में हो गई जो रिकॉर्डिंग उसको क्या करें, वो तो हो गई, अब रिकॉर्डिंग क्या करनी है?
2: अब जो आप प्लेट में रख देता हूँ जाके, प्लेट सबको बता के खाना डाल दीजिए।
3: नहीं, सी एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, ऐसे नहीं कोई मेरे खाने पे बात करे तो मैं टॉलरेट नहीं, बहुत प्यार से मैं ये खाता हूँ, ये नहीं, सामने कोई बात नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, दस बार, कितनी भी बार, क्योंकि प्यार से बात करना हमारी रिकॉर्डिंग है। अपना संस्कार क्यों छोड़ रहे हैं, लूप में चला जाएगा ना, लूप में चला जाएगा, थोड़े दिन वर्क करना है उस पे, फिर कोई आकर कहेगा थोड़ा सा ये ले लो, कहेंगे थैंक यू सो मच, रियली आई डोंट वॉन्ट, फिर कोई और आकर कहेगा प्लीज ये ले लो, थैंक यू सो मच, पर मेरे को सच्ची में नहीं चाहिए, लूप में चला जाएगा।
2: अगर ये सत्य जो आके बोलता है ना दिल से, उसके लिए तो मैं चरण भी छू, मुझे मालूम है ये झूठा नाटक है।
3: हम वो अपनी रिकॉर्डिंग, हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरे को देखकर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं चेंज करनी है। दुनिया में तो आसपास सारे संस्कार दिखेंगे, झूठ भी दिखेगा, छल भी दिखेगा, कपट भी दिखेगा, करप्शन भी दिखेगी, मैनिपुलेशन भी दिखेगा, वो सब रिकॉर्डिंग है, तो उस अनुसार रिकॉर्डिंग करनी है। मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी चॉइस, मैं आत्मा मालिक, मुझे इस सब छल कपट झूठ के बीच रहते हुए अपनी संस्कारों की इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, आपने कहा था इन्वेस्टमेंट, अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको चीट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं,
2: किया भी है,
3: है ना, फाइनेंशियल, आई एम सेइंग फाइनेंशियल चीट भी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान से पता करके, कहाँ मेरी सिक्योरिटी है, कहाँ मेरा फ्यूचर है, वो करेंगे या कहेंगे क्या करें, हैं ही इतने सारे लोग चीट करने के, तो मैंने धोखा खा लिया, गए मेरे पैसे, ऐसे करेंगे?
2: नहीं, मैं तो बिल्कुल क्या कर वॉच रखूंगा, एक ध्यान रखूंगा।
3: सेम, वहां भी फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत लोग हैं, हम थोड़ी अपना पैसा सारा ऐसे गवा देंगे।
2: तो ये मतलब मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं खाना डाल?
3: वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, वो उनका संस्कार है।
2: मेरे टेस्ट हो रहे हैं?
3: नहीं, टेस्ट नहीं हो रहे, हमें नई रिकॉर्डिंग करने का चांस मिल रहा है, आज ही करके देख सकते हैं, आज ही
2: करके। सबसे अच्छा है व्रत है बोल देता हूँ,
3: ऐसी विड्रॉ करना नहीं है, इट्स वेरी इजी, यू नो, ऐसे बोल बोल के आत्मा अपने आप को ये कहने लगती है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं एक बार करके तो देखें, आज एक नया ग्रुप क्रिएट हो रहा है।
2: एम आई नॉट एनकरेजिंग द अदर पर्सन टू गो ऑन एंड ऑन डूइंग जो जो जो मेरे साथ कर रहा है वो? एक बार तो बोलना ही है ना, देखो भाई साहब, मुझे आप अपने आप खाने दीजिए, मुझे जो पसंद है मैं खाता हूँ,
3: जो कहना है वो कहना है, सोच, वाइब्रेशन, बोल, व्यवहार का तरीका, एंगर, इरिटेशन, एजिटेशन या कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग।
2: एक थॉट आई आपसे बात करते करते, जैसे मैं चाय की बात कर रहा था कि मैं स्टाफ से चाय अलग, दूध अलग, शक्कर अलग, पत्ते अलग, सारा कुछ अलग मंगा सकता हूँ, लेकिन फिर दुनिया में हर आदमी से जब मिलूंगा, क्या हर इंसान से वर्ल्ड में और हर सिचुएशन को बोलूंगा कि अलग अलग अलग करो, मुझे अपने हिसाब से करना है?
3: नहीं होने वाला है।
2: मैं खुद ही आंसर दे रहा हूँ,
3: नहीं होने वाला है,
2: मुझे खुद ही जवाब मिलेगा।
3: फिर हम कहेंगे नहीं मिलेगा ना अलग, तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल।
2: मेरा आंसर मुझे
3: टॉलरेंस का रिकॉर्डिंग संस्कार क्रिएट करना है, करना ही होगा। आज हम करके देखें। दिस इज द सोल टेकिंग अप द फर्स्ट स्टेप। आज एक नया संस्कार। ये लाइन क्लोज्ड, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, डिलीट। टुडे आई विल हैंडल द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। संस्कार चेंज करने का सबसे इजी पैटर्न वो होता है, वो लोग और वो बातें जो बहुत कई बार आती हैं, यू नो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, रोज होता है, वो रोज ही हो रही है वो चीज, उसमें तो चेंज करना और इजी है, क्योंकि वो रोज बात आती है, हम रोज वही संस्कार यूज करते हैं, वो रोज वैसा करते हैं, हम रोज डांट देते हैं, ग्रूव पक्का होता जा रहा है।
2: मैं तो उल्टा सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल बिजनेस में तो एक आध बार लाइफ में कोई करता है, ये तो रोज होता है, इसको कैसे संभालूं?
3: इसीलिए रोज जो होगा वो ग्रूव पक्का हो जाएगा ना, रोज जो होगा वो फास्ट होता जाएगा, वो ऑटोमेटिक में चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपका सिर्फ अब ये बात बहुत छोटी है, ये कोई बहुत बड़ा संस्कार नहीं है, छोटी बात,
2: ये बड़ा, ये एक ही संस्कार लेके आगे दूसरे बनाएगा ना, इसके बच्चे पैदा होंगे।
3: अब ये जो फास्ट में चला गया है, अब क्या होता है, कोई आपके पास प्लेट लेकर आता ही है सिर्फ, सी दैट डे वी सो न्यूरॉन्स विल फायर टुगेदर, आपने उस दिन कहा, सिगरेट की पैकेट की तरफ हाथ अपने आप जाता है, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई है। अब क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैव वॉच्ड इट, अब क्या हो रहा है, कोई प्लेट सिर्फ लेकर आता है, फोर्स नहीं कर रहा है खाने के लिए, डाला नहीं उसने जबरदस्ती, अभी वो सिर्फ आपके नजदीक आता है एंड आप उसको कहते नहीं नहीं नहीं मेरे पास नहीं डालना, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग, वो ग्रूव इतना ऑटोमेटिक में चला गया है कि वो फास्ट रिएक्ट करता है। आज एक नया ऑप्शन, एक दिन में चेंज हो जाएगा, ये तो, ये इतना छोटा सिंपल
2: ये संस्कार इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो मुझे जूठा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आई फाइंड इट क्राइम।
3: वन मिनट।
2: दूसरे लोग क्या करते हैं, दलवा लेते हैं और जितना पसंद है खा के दूसरा छोड़ के जाते हैं।
3: वी आर नॉट सेइंग कि एक्स्ट्रा लेना है और वेस्ट करना है, वी आर सेइंग रोकना है, लेकिन रोकने का तरीका कैसा है, इतना जस्टिफिकेशन नहीं देना है हर चीज को।
2: इतनी बारी
3: ये कितनी बारी रिकॉर्डिंग, कितनी बारी होना है, लूप में जाना है ना, जब कितनी बारी मना कर सकते हैं डांट के, तो कितनी बारी प्यार करके नहीं कर सकते,
2: करना चाहे तो कर सकते।
3: अलग अलग लोग मिलेंगे, हर एक आपकी प्लेट में डालने आएगा, हर बार आप रिएक्ट करेंगे, हर बार आप कहेंगे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मेरी प्लेट में नहीं
2: डालता हूँ ना, मैं अपनी बेटी के घर में,
3: तो हर बार
2: नहीं कर सकता ऐसी बात,
3: तो वहां
2: टॉलरेट करता हूँ, टॉलरेट बोलता हूँ
3: बस। अब अगर हर जगह थोड़े दिन के लिए ये प्यार से
2: नाजुक रिश्ता है, समझी है,
3: ये लंबी रिकॉर्डिंग है, इटर्नल है, वो समधी सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में है।
2: हाँ, इसलिए मैं डिफरेंट जगह डिफरेंट कर सकता हूँ,
3: नहीं, नहीं, वो समधी तो इस कॉस्ट्यूम में है, संस्कार तो साथ में हर कॉस्ट्यूम में जाने वाला है, इतनी सी मेहनत, इतना सा टेंशन। अब अगर दो बार चार बार कर लिया, ना हम खाना एक्स्ट्रा लेंगे, ना हम वेस्ट करेंगे, ना हम जो हमें नहीं खाना वो खाएंगे, नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ दैट, लेकिन हम रोकेंगे, मना करेंगे इन अ स्वीट पोलाइट लविंग मैनर।
2: मैं समझता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ, पर्सनल हर एक चीज क्यों पूछे, आप क्या दवा खाते हैं, आपको कौन सी बीमारी है, कोई मेरे से पूछे आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, तो आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और
3: पॉज वन मिनट, वन लाइन नीड्स टू बी चेंज्ड, आई जस्ट कैन नॉट टेक इट,
2: या
3: नो, ये लाइन अब नहीं आ सकती है, जैसे पहले वो खाने पीने की चीजों पे नहीं आ सकती थी, आई जस्ट कैन नॉट लीव इट, इसके बिना मेरा नहीं चलता। अब हम सूक्ष्म संस्कारों पे बात कर रहे हैं। किसी भी संस्कार के लिए हम नहीं कहेंगे आई जस्ट कैन नॉट डू इट, आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, आई विल ऑलवेज बी लाइक दिस, क्योंकि जैसे ये लाइन कही परिवर्तन को बंद कर दिया, फिनिश्ड, ये नहीं हो सकता मेरे से। तो ये लाइन को चेंज करते हैं, फिर आगे लेते हैं।
2: कोई मुझे पर्सनल लाइफ में बोले मैं वैसे शुगर खाता हूँ, मीठा पसंद है, चॉकलेट खा लेता, चाय मैं फीकी पीता हूँ, एंजॉय द टी, उसे शुगर ऐड करके मैं तो ओरिजिनलिटी चली जाती है। अब मुझे लोगों की इतनी बात ही अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं टॉलरेट हो सकती थी या हो रही है एक बात, व्हाई शुड यू टेक आस्क सो मेनी पर्सनल क्वेश्चंस किसी को। मैंने एक बार किसी घर में शक्कर मत डालना, आपको डायबिटीज है, तो मैंने बोला आपको कैंसर है, तो वो रोने लग गई औरत। तो वो जाके वहां गुरुजी बैठे थे, मतलब फंक्शन था, तो बोलती है मेरे को रुला दिया। मैंने बोला वो मुझे कैंसर बोल रहा है। तो मैंने बोला गुरुजी इससे मुझे डायबिटीज बोला तो मैंने दूसरी बीमारी बोल दिया। वो मेरी मर्जी है, मैं शुगर लू नहीं लू, ये जानना पहचान। ये
3: अभी पॉज करते हैं,
2: देखिए जानना पहचान, आप एक फंक्शन में बैठे हैं, एक गुरुजी के आप भी चले हम भी चले, आप मुझसे आके क्यों पूछ रहे मुझे डायबिटीज नहीं है?
3: ये सारी जो है वो हम उनके व्यवहार के बारे में क्वेश्चन,
2: इंटरफेरेंस, मेरी प्लेट पे खाना डालना, मेरे बारे में पूछना, मेरी क्या इनकम है, मेरी एज क्या है, मेरी नहीं होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं क्या करूं?
3: ईगो कह रही है कि ये रॉन्ग है, ईगो कह रही है कि क्यों पूछा।
2: आई विल नॉट यूज कि चलो आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, बट दैट इज डिस्टर्बिंग। जो आपको मैंने कहा कि आपने कहा हर एक घंटे में हम
3: अब लाइन चेंज करते हैं, दैट इज डिस्टर्बिंग। दैट इज नॉट डिस्टर्बिंग, दैट इज एज इट इज, आई एम क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। दोनों बातों में फर्क। सारा दिन में लोग मिलने वाले हैं जो कहेंगे आपको डायबिटीज है क्योंकि हमने कह दिया हमें चीनी नहीं खानी। उन्होंने राइट कहा नहीं कहा इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था रिलेटिव, डिफरेंट पीपल डिफरेंट संस्कार। क्या मेरा रिएक्ट करके कहना आपको कैंसर है, ये राइट था?
2: मैंने रॉन्ग का रॉन्ग बोला, जवाब राइट का राइट देता
3: किया?
2: था।
3: आपने क्या किया, सामने वाले ने एनर्जी भेजी,
2: मैंने डबल भेजी,
3: रिफ्लेक्ट कर दिया,
2: का कैंसर कर दिया,
3: राइट,
2: एक के दो पत्थर मारे।
3: रिकॉर्डिंग क्या हुआ, एक का दो पत्थर इज नॉट द रिकॉर्डिंग वी वॉन्ट टू डू ना। सामने वाले ने कहा आपको डायबिटीज है, आपको लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो इसका मतलब वो बात सही नहीं है। अगर वो बात सही नहीं है तो फिर खुद कैसे कर दी,
2: ताकि उसको भी हर्ट हो जितना मुझे हुआ।
3: आज तक वो भूली नहीं होगी वो बात,
2: तो जिंदगी भर किसी को पूछेगी भी नहीं जाके कि आपको डायबिटीज है,
3: आपको प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट ट्रू,
2: लर्न नहीं करेगी वो।
3: नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर उसने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन जो आपने कहा था वो गलत था अकॉर्डिंग टू हर। तो वो डायबिटीज है या नहीं है वो फिर भी पूछेगी लोगों को, लेकिन जब भी आपको याद करेगी या कोई और आपके बारे में बात कहेगा, हर्ट क्रिएट हुआ हुआ है वहां पे। ये भी तो कमाई है जो हमारे को मिल रही है फ्रॉम आर एवरी इन्वेस्टमेंट। एक कर्म किया वो इन्वेस्टमेंट थी, उसका रिटर्न मिल रहा है, बहुत समय मिलता रहेगा। किसको सिखाने के लिए, सिखाना भी था, चलो अगर ये इंटेंशन भी है कि सिखाना था, तो हाउ वुड वी हैव टू टीच द पर्सन और शेयर विद द पर्सन, कैसे करेंगे हम?
2: प्यार से बोलेंगे कि देखो किसी को ऐसा पूछना ठीक नहीं है, बुरा लगता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कैंसर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, हाउ वुड यू फील?
3: तो वो ऊपर से कहेगी थैंक यू सुरेश भाई, आपने मुझे एक अच्छी बात सिखाई आज, आई विल ऑलवेज टेक केयर।
2: मे बी, ये तो आपका अजम्पशन है,
3: चांसेस आर हायर। रोएगी तो नहीं?
2: रोएगी नहीं,
3: हर्ट तो नहीं होगी? हर्ट तो नहीं होगी, जाके शिकायत तो नहीं करेगी बड़ों से, चोट तो नहीं लगी होगी अभी तक। वी हैव अ चॉइस। अब अगर उस दिन वो हो गया इज ओवर, लेकिन अगर वो रियलाइजेशन अब हो गई, नेक्स्ट टाइम वी विल बी फेसिंग द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। दैट्स अबाउट ग्रूव, कि ग्रूव बना है अगर कॉन्शियसली जो उसने लिखा था उस दिन, कि कॉन्शियसली स्टॉप नहीं किया तो उसी ग्रूव में चलते रहेंगे इस जीवन भी आगे।
2: मुझे नहीं चलना है,
3: नहीं चल
2: तो मैं खूब मेहनत करूंगा।
3: दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट। तो आज अगर जब आप भोजन पर जाएंगे
2: जी,
3: कोई आपके पास परोसने आएगा तो उसे प्यार से हम रोक सकते हैं, ना एक्स्ट्रा लेंगे, ना वेस्ट करेंगे, लेकिन ना रिएक्ट करेंगे।
2: और मैं कई अगर मैं सोचूं कि मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा तो शायद वो करे भी नहीं, क्योंकि मेरी एनर्जी
3: डिफरेंट जा रही है,
2: अलग रहेगी ना। अकॉर्डिंग टू यू मेरा ऑरा बदला हुआ होगा,
3: तो एक नया ग्रुप।
2: पहले एक फियर क्रिएट करके जाता था टेबल पे, अब ये डालेगी, अब वो ये करेगी।
3: सी, वी नीड टू रिमेम्बर कि ये जब हम वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं ना, लोग हमारी वाइब्रेशंस के नजदीक आने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हमें तो क्या चाहिए, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस, ये मंत्र है। तो हमारी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक होमवर्क करते हैं हम सब मिलकर
2: जी,
3: कोई भी एक संस्कार लेते हैं। हैबिट बहुत सूक्ष्म भी नहीं, लेकिन ऐसे विजिबल, जैसे आपने कहा कोई खाना डाले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई लोग कहते हैं पेन कोई ऐसे ऐसे करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई लोग कहते हैं कोई नकल्स को ऐसे ऐसे क्रैक करे तो आई गेट वेरी एंग्री। यू नो दिस स्मॉल, दिस इज नॉट वेरी सूक्ष्म, इट इज नॉट एकदम एक्सटर्नल, लेकिन ये है परिस्थिति को देखते हुए एजिटेट या इरिटेट हो जाना, कि उनके संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है और हमारी वो ही रिकॉर्डिंग फिर से चलती जाती है। आज कोई एक आदत को ऐसी लेते हैं जो हमने कहा ये मेरी नेचर है, बात ही ऐसी थी कि आई हैव टू रिएक्ट लाइक दिस, गुस्सा मुझे आ जाता है, अच्छा मुझे नहीं लगता, मुझसे नहीं चेंज होता। आज कोई एक को लेते हैं, सिर्फ वन, एंड आज पूरा दिन सिर्फ अटेंशन अपनी प्रोग्रामिंग करके, बात नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे। टुडे आई विल रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे, एंड चूज योर डिफरेंट वे, चूज द वे विच इज हेल्दी, चूज द वे विच मेक्स मी फील नाइस, make others feel nice, choose that way and create a new recording today.
2: Definitely, I'll try.
3: Thank you.
2: Thank you so much.
3: Om Shanti.
2: Om Shanti.
4: Every thought, word and action we create does not influence only our present and future, but is also an investment which we are making for our future lives. Every recording made on the soul is eternal and will influence our mind, body and relationships in future lives, as will be our personality in this life, our habits, behavior, fears, likes and dislikes. So will be our personality when we take the new costume. This is the reason why every child has different patterns of likes, dislikes and habits, which are what the soul has carried from the past. When we look at family members through the consciousness of a relationship, we have expectations of how a spouse or a child should be. Look at them as a soul on a long journey, gone through varied experiences, created different sanskars. Then understanding them becomes easy. Let us select any one habit of people which we felt we cannot tolerate, and we always reacted to that habit. Today, understanding their sanskar and attention on the recording we are creating, we will face the sanskar with stability and increase our power of tolerance.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559-660।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।
0: जा जा

0: लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे
0: तू जा जा, ए जा जा जामू धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा।

की पहाड़ी है काटे की लाला।

0: मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी कालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
1: सभी को नमस्कार, मेरा नाम है करण सिंह, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और यहां पे ब्रह्म कुमारी जी में हम लोग आए हुए हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां आकर के आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बीके मनोज कुमार जी हैं, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में मुंबई में अपनी सेवा दे रहे हैं। और आप बैंकर हैं, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा अनुभव है। और इसके साथ में ब्रह्म कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी आपको अनुभव जो है अच्छा है, जो हम लोग लास्ट में सुनने वाले हैं। तो मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: कैसे हैं आप?
1: मेरा नाम मनोज कुमार पाल है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में विजिलेंस डिपार्टमेंट में चीफ मैनेजर कार्यरत हूँ मुंबई में।
0: अच्छा,
1: हेड ऑफिस में।
0: बहुत बढ़िया।
1: ब्रह्मा कुमारी में मैं सन 2017 में, जिस समय मेरा पोस्टिंग अंबिकापुर रीजनल ऑफिस, हमारे वहाँ पर रीजनल ऑफिस होता है, अंबिकापुर रीजनल ऑफिस में पोस्टेड था। तो शिवरात्रि में वहाँ पर सेंटर से सारे लोग आके वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो घर में मेरा युगल जो है ब्रह्मा कुमारी के बारे में शुरू से जानकारी उसको है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: उस कभी उसका संकल्प ये था कि बाबा को ऐसे ही बोले कि इन्होंने मुझे खुद बोले कि क्या है एक्चुअल ब्रह्मा कुमारी, क्या है शिव बाबा, क्या होता है, तब मुझे बाबा ने बोलेंगे, इन्होंने बोलेंगे तब मैंने जाऊंगे।
0: अच्छा अच्छा।
1: ऐसे ही उनका मन में संकल्प आया था कई दिनों से। तो ये अचानक शिवरात्रि में प्रोग्राम हो रहा था, तो प्रोग्राम में मैं बोला देखूँ, बिल सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे एक्चुअल,
0: जाते हैं तो क्या,
1: सभी कम्युनिटी के लोग थे, सभी रिलीजन के लोग थे, तो मैं बोला देखूँ। उस समय जाके देखा एक्चुअल, और सारे जो है जितना कम्युनिटी के लोग वहाँ पर थे, सबका एक चीज़ है, भगवान जो है ना एक ही है सभी रिलीजन का। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो रिलीजन है। लोग बाग क्या होते कि हर जगह जाते हैं, अभी कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, लेकिन वो सारे हेड वहाँ पर उपस्थित थे और सारे हेड जो है इसको माने, और इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन किए। वहाँ का जो संचालिका दीदी, विद्या दीदी थी, बहुत अच्छा लगा उनका सारे चीज़ का, भगवान का जो, शिव बाबा का जो परिचय, बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोला ठीक है। उस समय बाहर आया तो भाई ने बोले कि ठीक है, 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा इसका अंदर जाने के लिए। बोला ठीक है, अब देखते हैं क्या है करके। तो फिर हम 7 दिन का कोर्स वहाँ पर किया, मैं भी किया, मिसेस भी की, साथ में मेरा बेटा भी था, वो भी किया। हम तीनों 7 दिन का कोर्स किया। धीरे धीरे धीरे धीरे गहराई जब पता चला कि एक्चुअल रियल क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या चीज़ है। और कभी कभी मन विचलित रहता था, और बैंकिंग सेक्टर में होने के कारण जो है प्रेशर तो रहता है, बहुत सारा काम रहता है, प्रेशर ओवरलोडेड रहते हैं। तो जैसे जैसे इसका अंदर जाते गए तो पता चला कि नहीं नहीं ये जो है हमको तो करना है, बिल्कुल
0: वेलकम वेलकम,
1: है ना, कराने वाले दूसरा कोई है। धीरे धीरे ये पता चला कि हम कुछ नहीं, हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल कराने वाले दूसरे। जब ये मन में आ गया हमको कोई करा रहे एक्चुअल, तो फिर हमको क्यों चिंता करना है। तो मन में यह है कि हमको चिंता नहीं करना है, चिंता करने वाला दूसरा है ना, हमको सिंपली करना है। और एक दिन दीदी ने बताया कि कुछ भी चीज़ हो, हम अगर किस चीज़ को ट्रस्टी बन के सोचते हैं, मैं कभी पॉकेट में मेरा पैसा रहता था, आज ए बैंकर तो पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, बैंक में रहता है जनरली, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। तो दीदी ने बोले कि जो पॉकेट में पैसा है वो एक्चुअल हमारा नहीं है, वो पैसा जो है दूसरा का है, हम ट्रस्टी बन के उसको खर्चा करेंगे। तो इसलिए कभी भी खर्चा करेंगे तो ये सोच के खर्चा करना है, एक्चुअल किस चीज़ के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, सही है गलत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन से आज तक मैंने कभी भी कुछ भी चीज़ करता हूँ तो सोचता हूँ ये तो मेरा नहीं है ना, मैं सही में वो चीज़ करता हूँ। और इसको क्या था कि बैंकिंग में जो है मुझे बहुत लाभ हुआ,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कभी भी जो है मैं टेंशन फील नहीं किया कभी काम में। और बहुत जगह जो है देखा कि कोई भी स्पिरिचुअल पावर जो है काम करता है,
0: बिल्कुल
1: अचानक जो है कोई भी काम करता है। कभी कभी मैं ये अनुभव किया जो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है। तो अपना जो एग्जिस्टेंस पहले था, मैं धीरे धीरे देखा कि एग्जिस्टेंस जो है ये, लेकिन हुआ कैसे, अगला वाला मुझे क्यों बुलाया, ये काम कैसे इजीली हो गया। और एक तो अनुभव बताऊंगा मैंने, एक दिन मेरा बेटा जो है स्कूल से वापस आ रहा था, बहुत धूप था, जैसे बस से उतरा तो पसीना पसीना हुआ था बिल्कुल, घर तक जाने के लिए उसका हिम्मत नहीं हो रहा था। तो इमिडिएटली वो बोले कि बाबा एक्चुअल कैसे करके मुझे घर तक पहुंचा दीजिए। अचानक पीछे से एक आदमी आया स्कूटर में, बोले बेटा कहाँ जाओगे, बोले कैसा हाइट जाऊँगा, बोले ठीक है बैठिए। उस दिन से उसको भरोसा हो गया, नहीं कोई शक्ति है पीछे जो काम कर रहा है। तो उस दिन से धीरे धीरे आज तक जो है गहराई विश्वास बढ़ते गया बिल्कुल, जितना अंदर आते गए बिल्कुल अपना भरोसा धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते गया। और आज की स्थिति में तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी जी जी मनोज जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया किस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ आपका, और वहाँ पर जो आपको ज्ञान या नॉलेज मिला उससे आप अपने जीवन में अप्लाई करने से आपको एज ए बैंकर आपका जो प्रेशर रहता है वो कम होते गया और आप रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आप करते हैं तो ईश्वर को याद करके करते हैं, तो ट्रस्टी होके आप काम करते हैं तो टेंशन फ्री हो रहे हैं। तो ये ज्ञान आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और आपके पूरे परिवार के लोग जो हैं इस ज्ञान को सुनते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मनोज जी से बात करेंगे हम लोग अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए, कैसे बैंकिंग सेक्टर में वो कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं। आप एक बैंकर हैं, तो आइए विद्यार्थी मित्रों के लिए अब हम लोग का पूछना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं उन सभी को अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करना है या बैंकिंग में करियर करना है तो किस तरह से वो शुरुआत करें, आप थोड़ा गाइड कीजिए।
1: ये समाज में जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत अहम भूमिका, देश के प्रति बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, बिना इसका तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ता। बिना पैसा का, बिना आर्थिक स्थिति जो है उसका बिना आगे नहीं बढ़ता है। और बैंकिंग ऐसे माध्यम है जिसकी द्वारा जो है लोगों को जो आर्थिक परिस्थिति है, जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, वो जो है बैलेंस कर देता है। इसलिए आज की युवा जो है बैंकिंग जो सेक्टर है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इकोनॉमिक का स्टैंडर्ड जो है, देश का जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंस का हम कुछ नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, साइंस में हो, इंडस्ट्री में हो, किसी में जो है आर्थिक परिस्थिति एक अहम भूमिका निभा रहे।
2: जी जी जी
0: नहीं, इसमें विद्यार्थी कैसे जुड़े, विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन करें।
1: विद्यार्थी
2: क्या पढ़ाई करें?
1: हाँ, इसमें जो है, इसमें जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आजकल तो ऐसा देखा गया कि हर फैकल्टी लोग जो है बैंकिंग की तरफ उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। और मैक्सिमम इंजीनियर्स भी आजकल आ रहे हैं। पहले की जमाना था कि उस समय कहा जाता था कि कॉमर्स, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वही अच्छा से बैंकिंग तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस भी आते हैं, आर्ट्स भी आते हैं, कॉमर्स भी आते हैं। आजकल देखा गया कि टेक्निकल ग्रेजुएट और आईटी सेक्टर के लोग जो है वो बहुत आते हैं, क्योंकि बैंकिंग ऐसे फील्ड है जिसमें कि आईटी हुआ, कॉमर्स हुआ, साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, ये सभी सब्जेक्ट से भरा हुआ चीज है। सभी सब्जेक्ट वाले इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं और सहायता भी कर सकते हैं। तो सिंपली सी चीज़ है, बैंकिंग के लिए जो है मिनिमम ग्रेजुएट उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन है। उसके लिए अगर कोई बैंकिंग तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव तैयारी है तो कॉम्पिटिटिव देना है उसी में। और आजकल तो ऐसे है कि ऑनलाइन सारे चीज़ों, यूट्यूब चैनल हो गया, कई सारे कोचिंग सेंटर हो गया, और हर बैंक में जो है आजकल IBPS हो गया, NIBM हो गया, IBPS कंडक्ट कर रहे हैं सभी बैंक्स के लिए। पहले होता था कुछ बैंक सेपरेट अपना अपना एग्जाम करता था, लेकिन आजकल IBPS जो है कॉम्बाइंड एग्जाम करता रहता। थ्रू IBPS जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनका एग्जाम करता है, IBPS दूसरे बैंक्स के लिए करते हैं, IBPS थ्रू एग्जाम देना है। क्लरिकल एक स्टेप है और प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी दोनों दे सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर देने के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर में उनका पोस्टिंग होता है। अगर कोई क्लरिकल में भी ज्वाइन करते हैं, वो क्लरिकल में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इंटरनली प्रमोशन टेस्ट एग्जाम भी होता है, एग्जाम दे के वो असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। प्रमोशन टेस्ट के लिए वेराइटी, बैंकिंग के लिए वेराइटी एग्जामिनेशन भी होता है प्रमोशन के लिए, वो भी देके क्लरिकल कैडर का जो है वो ऑफिसर भी बन सकते हैं। और देश के लिए जो है बहुत बड़ा चीज़ है एक्चुअल, अगर कोई सही में ईमानदारी से बैंकिंग सेक्टर में काम करेगा, लेकिन देश

0: बहुत सहायता करेगा। आर्थिक परिस्थिति, अपना जो इकोनॉमिक परिस्थिति है देश का, बहुत सुधार हो जाएगा उसमें। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो है, क्योंकि मैं विजिलेंस में हूँ, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: उसके लिए जो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है
1: वो हेल्प करता है काफी।
0: उसके लिए बहुत सपोर्ट करेगा। और कभी कभी ऐसे होता है, आजकल हर सेक्टर में जो है वर्कलोड भी रहता है, लोगों को टेंशन भी रहता है, अगर कोई इस संस्था में जुड़ता है टोटल टेंशन फ्री लाइफ वो प्रोसीड करेगा। क्योंकि उसको ये हो जाएगा, पहली बात कि वो जो है कोई भी गलत काम नहीं करेगा, उसका पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, नेगेटिव तरफ जाएगा नहीं, और स्मूथली वो काम कर सकता है। क्योंकि अगर सवेरे कोई ऐसे देखा जाए तो हम लोगों ने एक्सरसाइज करते हैं, उठ के बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। अगर हमारा मानसिक स्थिति सही नहीं है तो हम बीमार ऐसे भी पड़ सकते हैं, जितना भी फिजिकली फिट रहने से। अगर मेंटल स्टेटस सही है तो फिर हम आगे भी इसको ले सकते हैं। एक बार ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक फॉरेनर एक बार हमसे मुलाकात हुआ था, उन्होंने बोले इंडिया में तो थोड़ा गर्मी लगता है, यहाँ आया तो बहुत गर्म लगता है, फॉरेन में तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हम तो मतलब कैसे वहाँ गर्मी नहीं लगता है। बोले नहीं, वो घर घर में भी एसी है, घर से निकले गाड़ी में भी एसी है, ऑफिस आए वहाँ पे भी एसी है। अच्छा, बोले फिर भी आपको कभी कभी गुस्सा आता है? हाँ वो तो आता है। तो फिर हमने बोले कि एक्चुअल एक चीज़ अगर ठंडा रहेगा, जो कि दिमाग एक्चुअल ठंडा रहेगा, वो एसी एक्चुअल उसका रिमोट कंट्रोल अपना पास है, अगर वो ठंडा रहेगा तो सारे चीज़ ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। हम सारे चीज़ को मेंटेन करके भी उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, अगर उसको मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे
1: बाकी
0: चीज़
1: सब चीज़ मेंटेन हो
0: सही
1: जाएगा।
0: हो जाएगा। तो वो बहुत खुश हुए बिल्कुल सुन के, मैंने नहीं माने एक्चुअल एडमिट किया, एक्सेप्ट किए इस चीज़ को, बहुत अच्छा है करके। तो आज की परिस्थिति में जो है स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है हर किसी
1: जी
0: के लिए।
1: मनोज कुमार जी, वो विजिलेंस आपने बोला कि मैं विजिलेंस में, विजिलेंस क्या है इसका मतलब?
0: विजिलेंस एक पार्ट है एक्चुअल। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमको विजिलेंट, हर तरफ विजिलेंट रहना है। अगर विजिलेंट नहीं रहेंगे, कभी ऐसा होता है अगर हम दरवाज़ा खोल के सो जाएंगे, हमको ऐसे बोला जाता है कि दरवाज़ा बंद करके सोना है, दरवाज़ा खोल के सो जाएंगे तो क्या होगा?
1: चोरी आ जाएगा।
0: चोरी होगा। तो विजिलेंस क्या होता है कि उसका एक पार्ट है, हमको हरदम सतर्क रहना है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिवेंटिव विजिलेंस, हम उसी में ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर हम प्रिवेंटिव विजिलेंस को महत्व देंगे तो कोई भी जो है नेगेटिव चीज़ होगा नहीं। जैसे कि दरवाज़ा हम बंद करके सोएंगे तो ऑटोमेटिक चोरी नहीं होगा। कोई भी हम काम करते हैं, अगर कोई भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। हम जब प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे
1: तब
0: तब
1: गलत
0: गलत
1: है।
0: होता है। तो उस प्रोसीजर और सही नियम से काम होता है, नियम को देखें क्या, रूल एंड रेगुलेशंस, वो रूल एंड रेगुलेशंस से अगर काम करेंगे, डेविएट होके काम नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमको वो चेक करना है एक्चुअल, सही में ये चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि साइकिल या कोई भी गाड़ी, अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो विजिलेंस एक ऐसी चीज़ है, तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि विजिलेंस रहेगा ताकि हम थोड़ा सा चेक पॉइंट है, चेक कर पाएंगे। लोगों का मन में थोड़ा डर भी रहेगा, नहीं कोई हमें देख रहा है एक्चुअल। हम उसको दूसरे रूप से बोलते हैं कि वाचिंग डॉग एक्चुअल। घर में आजकल लोग वह कुत्ता भी रखते हैं, डॉग पालते हैं, चोर के लिए रखते हैं, है ना? तो इसको भी लोग बाग का यह एहसास होना है कि हमको भी कोई देख रहा है एक्चुअल,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ऑटोमेटिकली वो खुद पे खुद विजिलेंट रहेगा, ताकि गलत करने के लिए सोचेगा दो बार, हम
1: बिल्कुल
0: गलत करेंगे तो हमको भी कोई देख रहा है। तो ये पार्ट है एक्चुअल।
1: जी मनोज जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप विजिलेंस क्या है इसके बारे में आपने बताया कि कोई भी चीज़ चोरी ना हो और नुकसान ना हो, इसके लिए विजिलेंस का काम होता है। तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा है, इसके बारे में आपने बताया। और इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों को आपने बताया कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में अभी जुड़ सकते हैं, तो विशेष एग्ज़ाम्स होते हैं, उस एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करेंगे तो ऑफिसर लेवल का और फिर क्लर्क लेवल का दोनों चीज़ों के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। आप दोनों एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जिस जिस की आपकी रिक्वायरमेंट होगी और जैसे आप मार्क्स एडॉप्ट करेंगे वैसे वह काम आपको मिलता जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो तो भी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए आपको जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है और बैंकिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो आप क्लियर करते हैं तो आपको आसान हो जाता है। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बातें हो रही है खास बैंकिंग सेक्टर में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जो पहले और अभी में जो चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, या मोबाइल में आजकल जो है पे फोन एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ आ गया, इजी बैंकिंग हो गया है, लोगों को बैंक में लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता पैसे के लिए, तो डिजिटल मनी भी आ गया है। तो आपका जब आप बैंकिंग सेक्टर में आप जुड़े और अभी, उसका डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा बताइए। शुरू शुरू में आप कैसे काम करते थे, अभी कैसे काम होता है?
1: हमने जब ज्वाइन किए थे उस समय प्योरली मैनुअल बैंकिंग था। बड़े बड़े लेजर होता था, मिस्टेक्स भी होता था, मैनुअल कैलकुलेशन भी करना पड़ता था। वो धीरे धीरे बैंक 724 में ट्रांसफ़र हुआ। अभी जो है डिजिटल फुल CBS में, उस नेक्स्ट CBS में ट्रांसफ़र हो गया। अभी जो है फुल डिजिटाइजेशन की ओर बैंकिंग जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि सारे पेपर वर्क जो है वो डिमिनिश हो गया है, मिस्टेक्स जो होता था मिस्टेक्स भी कम हो गया है, और जितना समय लगता था वो समय भी कम हो गया है, और हम कम समय में जो है ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और अभी जो डिजिटाइजेशन के समय में हम लोगों को घर बैठे सेवा दे सकते हैं। पहले लोग बाग जो पब्लिक है वो बैंक आना पड़ता था, बुजुर्ग है उनको लाना पड़ता था कभी, उनका समय का, क्योंकि आजकल जो है समय जो है बहुत कीमती है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। हर किसी के जिसको पूछने से वो बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए आज पर कहीं भी खड़े होके कहीं भी बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बैंक बिना आए ये सारे डिजिटाइजेशन जो है वो सुविधा सारे पब्लिक को दिया गया है। उसमें उस मैनुअल और इसमें ये फर्क है, अपडेशन में जो है लोगों को जो है फैसिलिटी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, और समय भी कम मिल रहा है, क्योंकि लोग बाग काम करते हुए भी बैंक नहीं जाते हुए भी सारे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बिना बैंक गए भी आप जो है बैंकिंग का सारा काम घर बैठे कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं, वेबसाइट के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है टेक्निकली साउंड हो गया है बैंकिंग सेक्टर, और काफ़ी काम जो आपको पैसे भेजने हो किसी को तो भी टाइम नहीं लगता है। पहले तो पैसे भेजने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था लेकिन आज तो एक क्लिक करते ही आपके पास लाखों रुपए वापस आ जाते हैं, तो ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो गया है। तो इसमें जो सिक्योरिटी की बात अगर हम लोग करें डिजिटल में, तो क्या क्या कंज्यूमर को ध्यान रखना है सिक्योरिटी पर्पस से?
1: सिक्योरिटी पर्पस से एक्चुअल जो भी प्रोसीजर, अगर कोई भी कस्टमर सारे प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे अपडेशन हो रहा है। पहले सिक्योरिटी जहां पर थोड़ा सा कमज़ोर लगा, क्योंकि हर चीज़ का अपडेशन ज़रूरी है। जब कोई भी सिस्टम शुरू शुरू में चलता है कहीं भी थोड़ा सा लूपहोल होता है, जब तक यूज टू हो जाएगा और कहीं पर अगर प्रॉब्लम होता है तो उस समय उसको जो है फिर पैकअप किया जाता है, फिर उसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पासवर्ड प्रोटेक्शन है, यूजर आईडी पासवर्ड, ये इतना सारा प्रोटेक्शन कर दिया है, अगर कोई रियली प्रोसीजर में जाएगा तो कभी भी ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई पासवर्ड बाय द वे शेयर कर देता है तो फिर कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हर कस्टमर को जो है मोबाइल के थ्रू रेगुलर मैसेज रहता है, क्योंकि कोई भी जो है पासवर्ड शेयर नहीं करना है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई शेयर नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे उसका भी अपडेशन चल रहा है। कभी भी कुछ भी अगर पॉइंट में लूप हुल रहता है फिर उसको इमीडिएट अपडेशन किया जाता है।
0: जी जी जी मनोज जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे कि अभी जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट करते रहेंगे तो सिक्योरिटी आपका बनी रहती है, और जो सिस्टम है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सिक्योरली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, अभी भी यूज़ कर रहे होंगे आप, और अच्छी तरह से आप प्रोटेक्ट भी रहते हैं। तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें आती है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ये सब हम लोग करते हैं तो बड़ी सेफ तरीके से ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुनने में आता है कि कुछ पैसे चले गए किसी के, तो वो जैसे कई बार मोबाइल रिचार्ज करते करते कुछ दूसरी जगह पैसे चले गए या दूसरे नंबर पे चले गए, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पैसे करते किसी और के बैंक में चले गए या किसी और जगह पे ये हुआ, तो ऐसे में फिर कंप्लेन कहाँ करना है, क्या सिस्टम है वो थोड़ा बताएं।
1: ये इसीलिए होते हैं, कभी क्या होता है कि मोबाइल में जो मैसेज जाता है मोबाइल नंबर अपडेशन नहीं होता है, कभी कभी हम घर में भी ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, अपना घर में फैमिली मेंबर में भी कभी कभी मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, कभी बच्चे हुआ उनका दोस्त का साथ मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब शेयर हो जाता है तो मैसेज ऑटोमेटिकली उनमें चला जाता है, उसी समय ये प्रॉब्लम आता है। इसीलिए अगर कोई भी कस्टमर जो है, कोई भी व्यक्ति प्रोसीजर से ही चलेगा, प्रोसीजर लैप्स नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा। ये हर जगह अभी हम लोगों ने जितना देखे हैं एक्चुअल, क्योंकि हर साइट है कंप्लेन करेंगे, आजकल साइबर क्राइम भी आ गया और बैंकिंग में भी साइबर क्राइम का हम एक अलग से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम भी रखे हैं, कहाँ से क्या होता है कि फुल प्रोटेक्शन जो है वो दे रहे हैं, इमीडिएट जो है कहाँ से होता है इमीडिएट विद इन 9 मिनट्स जो है उसको इमीडिएटली हम प्रोसेस जो है चालू कर देते हैं, कहाँ पैसा गया, कैसे गया, किसका पास गया, ये सारी चीज़ें। और अभी तक हम लोग जो भी महसूस किए हैं, कभी ये जो है शेयरिंग जब हो जाता है, जब एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है, अगर कोई किसका मोबाइल नंबर जान लेता है तब ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या होता है कि कस्टमर खुद अपने आप में भी थोड़ा एजुकेटेड होना पड़ेगा, और इसीलिए हर बैंकिंग इंडस्ट्री जो है हर कस्टमर के पास रेगुलर मैसेज भेजते रहता है। और इसलिए मैं इसके लिए एक चीज़ बोलूँगा कि एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम में जो है एक लोभ जो है, लोभ जो है उसी में मार खिलाता है। अगर हम में एक लोभ आ गया, कभी कभी हमको ये मैसेज आता है कि आप 50,000 रुपया दे दीजिए आपको 10 लाख रुपया क्रेडिट हो जाएगा, तो कई लोगों को हमारे पास, कई कस्टमर आने के बाद बोलेंगे हमारे पास ऐसे मैसेज आए हैं, नहीं नहीं मत कीजिए इसको, कोई ये फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है, ये होना नहीं है बिल्कुल। स्टिल देन वो बाहर जाके उन्हीं को 10-20 हज़ार रुपया कभी भी आता है तो बोले ठीक है 10-20 हज़ार जाने देते हैं क्योंकि हमको तो इतना पैसा मिलेगा, और 10-20 हज़ार रुपया उनको दे देते हैं। फिर जब पैसा उनका चला जाता है फिर उन्होंने आके फिर बैंक में कंप्लेन कर देंगे ऐसा हो गया करके, तो फिर उनको एहसास होता है, महसूस होता है कि एक्चुअली रियली गलत कर दिया। तो इसलिए हर किसी का पीछे जो है प्रोसीजर अगर जो फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, प्रोसीजर फॉलो नहीं करने से ये प्रॉब्लम होता है। उसका मेन कारण है हम सभी मनुष्य है, जो लोभ हमारा अंदर जो है बिल्कुल हर मनुष्य के अंदर लोभ है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो अनएजुकेटेड है उनका साथ ये घटना घटता है, हमारा सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन जस्ट लाइक डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है ना, दे आर ऑल्सो फेसिंग सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है
0: वो इम्पोर्टेंट है,
1: अपने को जानना जो है, अपने को जानना, जब हम सेल्फ को जान जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम ऐसे ही सोचते हैं ना, हम गाड़ी भी चलाते हैं, कभी हम एग्जांपल देते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं तब तक तो ठीक है, जब गाड़ी हमको चलाएगा तो एक्सीडेंट इज मस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट को एक्चुअल कोई भी व्यक्ति अगर समझ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम कोई भी काम करते हैं, हम भी ऑफिस में काम करते हैं, हम अगर कोई भी जो भी प्रोसीजर लैप्सेस करते हैं, जो भी पॉलिसी आता है, पॉलिसी गाइडलाइंस अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसी में प्रॉब्लम आएगा। पॉलिसी गाइडलाइंस अगर फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा।
0: जी जी जी, चलिए मनोज कुमार जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बैंकिंग सेक्टर के बारे में, और अपना अनुभव साझा करते हुए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो कैसे काम करता है, वो कैसे हेल्प करता है वो भी आपने बताया, और विद्यार्थी मित्रों को बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए किस तरह से वो अपनी तैयारी करके आ सकते हैं ये भी आपने बताया, और आखिरी में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लोभ प्रवृत्ति मनुष्य की है, उसके वजह से फंसता है ये आपने बताया, और इसमें पढ़े लिखे भी आ जाते हैं और नहीं पढ़े लिखे वो भी आ जाते हैं, तो इसके लिए आपने बताया कि जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारी लोभ प्रवृत्ति को कंट्रोल करता है जिससे हम ज़्यादा मुश्किल में नहीं आते हैं, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया। तो चलिए, आप सभी को रूल एंड रेगुलेशन को ज़रूर फॉलो करें, और जब आप रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो आपका फ्रॉड होना नामुमकिन है, लेकिन अगर रेगुलेशन में या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लू पॉइंट मिल जाती हैं तो आपके फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बहुत मुश्किलें होती हैं। और इसके लिए साइबर सिक्योरिटी वाला बैंक में भी अलग सा जो है सेल बनाया गया है, और जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको रिवील किया जाता है, देखा जाता है कि क्या मिस्टेक से ये चीज़ें हुई हैं, तो समझ में आ जाता है कि इस वजह से हुआ, तो वो ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं हो जाती है जिसके वजह से ये चीज़ें देखने में आती है। तो उसे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ बैंकिंग कर सकते हैं और अपना जीवन को सेफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मनोज कुमार जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप विद्यार्थियों को?
1: विद्यार्थी को ये चाहेंगे कि पढ़ाई जो है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी के साथ। हम अगर सवेरे उठ के बोलते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त, हर आदमी जो है, हर व्यक्ति जो है सवेरे, हमारा मुनि ऋषि से लेकर के पूर्वज जो है सवेरे जागते थे। अब ये भी प्रोवर्ब है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसलिए हम अगर सवेरे उठ के एक घंटा हम अगर मेडिटेशन करते हैं, आज की जमाने में लोग बाग योगा बोल देते हैं, अगर हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे, एक घंटा हम अगर समय दे देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सारे चीज सुधर जाएगा और हम खुद पे खुद जो है चार्ज कर सकते हैं, दिन भर आराम से काम कर सकते हैं, हर चीज को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये हर जगह एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और कहीं कहीं पर जो है हर किसी को इसी का जो है क्लास करना चाहिए। हम भी कभी अपना बैंकिंग में भी हम कभी जो है कोई भी स्पिरिचुअल स्पीकर को, जब भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं हमारा, बड़े बड़े जगह में ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर में हम भी स्पिरिचुअल स्पीकर को बुलाते हैं और कभी भी क्लास कराते हैं। हमारा बैंकर्स जो है बहुत अच्छा फील करते हैं। अभी रिसेंटली मैं कहना चाहूँगा कि अपना CBOTC भोपाल कलकत्ता का जो ट्रेनिंग सेंटर है, बीके अस्मिता दीदी को बुलाए थे, सारे ट्रेनर को बहुत अच्छा लगा, बोले कि दीदी एक्चुअल रियली हम अभी पता चला कि एक्चुअल कितना चीज हम मिस कर रहे हैं एक्चुअल। तो इसलिए ये उसका साथ अगर जुड़ जाएगा, अगर कोई भी इसमें थोड़ा सा समय देगा, थोड़ा सा समय देगा, सारे चीज जो है अपने आप सुधर जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और सेल्फ मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए बहुत जरूरी है।
0: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मनोज कुमार जी, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको पता चला कैसे आपको आगे बढ़ना है, और आप सभी अपना करियर अच्छा फ्रेम करें ऐसी शुभ आशा के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: थैंक यू।

0: अरे सैंडी भैया स्कूल से आ रहे थे अपन, उसके सामने से वो कितना बदबू आ रहा था ना रस्ते में।
1: हाँ बहुत आ रहा था।
0: छोटे आदि तुझे नहीं आई बदबू?
2: अरे बहुत ज्यादा आई थी, नाक बंद कर ली थी।
1: सच्ची?
0: अच्छा
2: हाँ बहुत ज्यादा।
0: और तुझे बड़े आदि?
3: बहुत गंदी बदबू थी।
1: चलो ठीक है आज दीदी से पूछेंगे इतना गंदगी होता कैसा ही है।
2: हाँ
4: हेलो बच्चों।
0: हेलो दीदी, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आप जियो हजारों साल।
4: अच्छा मेरे बारे में बात कर रहे थे, पर मैंने तो सुना कि आप लोगों को नाक पे रुमाल रखना पड़ गया।
0: अरे हाँ। नहीं मतलब आपसे पूछने की बात कर रहे हैं।
4: किस बारे में वो तो बताओ।
0: आदि एक्सप्लेन करेगा आप।
2: स्वच्छता के बारे में।
4: अच्छा हाँ भाई ये टॉपिक तो बहुत अच्छा चुना आप लोगों ने, तो चलो एक काम करते हैं आज हम स्वच्छता के बारे में ही बात करते हैं।
0: वाह दीदी बड़ा अच्छा सुझाव है।
4: ठीक है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्वच्छता से आप लोग क्या समझते हो।
0: साफ सफाई रखना।
4: साफ सफाई रखना? कहाँ कहाँ के साफ सफाई आप रखना चाहते हो या होनी चाहिए?
1: स्वयं को, घर के आसपास, हमारे चारों तरफ एरिया को।
4: सही कह रहे हो सैंडी। और बताओ?
2: नेबरहुड को।
4: नेबरहुड को? हाँ ये देखो आदि ने कितनी अच्छी बात कही। और आदित्य आप बताओ?
3: जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ जो स्कूल्स में,
0: हॉस्पिटल्स में,
1: रेलवे स्टेशन,
4: बस
1: स्टैंड,
3: खुद के घर को।
1: वो तो पहले करेंगे,
0: उससे पहले खुद के कमरे को
1: फिर खुद को भी।
4: हाँ ये बात तो सही है, पहले खुद की सफाई भी जरूरी है। तो आप में से कितने लोग अपने कमरे को एकदम साफ सुथरा रखते हैं?
1: मैं कभी कभी कर लेता हूँ।
4: कभी कभी?
2: मैं भी कभी कभी।
4: अच्छा
0: मेरा पता नहीं।
3: मैं कभी।
4: हाँ भाई साफ सफाई तो बहुत जरूरी है और शुरुआत होती है हमसे और हमारे कमरे से। अच्छा ये बताओ मुझे, इतनी सारी जगह के आप लोगों ने नाम लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा साफ सफाई आपको कहाँ दिखती है?
0: दीदी मेरे ख्याल से मुझे तो कहीं नहीं दिखती।
2: मुझे भी।
3: हॉस्पिटल्स में।
4: हॉस्पिटल्स में साफ सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी होता है।
0: हाँ दीदी लेकिन
1: बट दीदी कोई कोई हॉस्पिटल में नहीं होते, ऐसा देखा मैंने।
0: अगर होते भी हैं तो सिर्फ आईसीयू या बड़े वार्ड में, जनरल वार्ड में सब ज्यादा सफाई वफाई नहीं करते वो लोग।
4: मतलब हमें कहीं कहीं साफ सफाई नहीं भी दिखती है।
0: हाँ।
4: लेकिन ज्यादातर जगह कुछ लोग इसीलिए एम्प्लॉयड होते हैं कि वो लगातार साफ सफाई का ध्यान रखें। अच्छा मुझे ये बताओ कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है क्या कि आप लोगों ने साफ सफाई का कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा हो?
0: हाँ टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा है ना।
4: अच्छा कौन सा?
0: स्वच्छ भारत अभियान।
4: हाँ बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी चलाया ही जा रहा है।
1: हाँ दीदी
4: आप लोग क्या क्या जानते हो उस अभियान के बारे में?
1: दीदी मुझे तक जहाँ तक याद है कि ये 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब ऐलान किया था कि पूरे देश में साफ सफाई करेंगे और 2020 तक पूरा भारत पूरा स्वच्छ होगा, उन्होंने अभियान चलाया।
4: और आदि?
3: हमें अपने चारों तरफ को साफ रखना है और फिर शहरों को विकास के रास्ते पे लाना है।
4: ये बात तो आदित्य ने बहुत अच्छी कही क्योंकि साफ सफाई से विकास का रास्ता खुलता है ना।
1: हाँ दीदी।
0: दीदी और एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताया था ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे छोटे छोटे बच्चों की मदद से जगह साफ कर रहे थे ना। आदि तूने देखा था?
3: नहीं।
0: सैंडी भैया?
1: मैंने नहीं देखा।
0: अरे यार कोई टीवी देखता है कि नहीं?
1: हम बहुत कम टीवी देखते हैं।
4: बहुत सारे ग्रुप्स बनाकर अलग अलग जगहों पर सफाई का अभियान चलाए गए थे।
1: और हम दीदी हम लोगों ने किया भी है सफाई।
4: अच्छा कहाँ किया सैंडी?
1: स्कूल में।
0: हमने नाले की।
1: हमने जो हमारे स्कूल का कैंप चल रहा था 7 दिन का NSS का, तब उसमें हम लोगों ने पहले क्लास सफाई किया, फिर ग्राउंड, फिर पूरी स्कूल, उसके बाद से फिर हमारे आसपास के जितने स्कूल थे वो, फिर पूरे रोड को। 7 दिन हम लोगों ने पूरा सफाई किया था स्कूल में।
4: 7 दिन पूरी सफाई की? तो स्कूल बिल्कुल शाइन कर रहा हो।
1: हाँ फिर आसपास की भी सफाई की थी हम लोगों ने, और फिर हमने ना पैम्पलेट बना के लोगों को जागरूक किया कि आप लोग सफाई रखो, कूड़ादान रखो, उसके लिए हमने रैली भी निकाली थी।
2: मैंने अपने गली की सफाई की थी।
4: अरे वाह।
0: और दीदी हम लोगों के घर के सामने से जो पानी का नाला गुजरता है उसमें अक्सर जब पानी बंद हो जाता है लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उसकी हम लोगों ने मिलकर सफाई करी थी।
4: अच्छा।
0: और उस टाइम हमने DJ में गाना भी बजाया था, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, दे

0: और आदित्य?
1: हम स्कूल की तरफ से कैंपिंग के लिए गए थे। जहाँ पर गए थे वहाँ पर बहुत कूड़ा था, तो वहाँ पर भी हमने सफाई की थी। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता एक मंदिर है, पर नाम तो याद नहीं है। अब वहाँ पर हमने साफ सफाई की थी।
0: वहाँ पे आप लोगों ने साफ सफाई की थी, तो साफ सफाई आप लोगों ने किस प्रकार से की? झाड़ू से, हाथ से, क्या उठाया, किस तरह से आपने सफाई की?
1: रोड पे बहुत सारे कचरे पड़े थे, तो हमने झाड़ू से उसको हटा के एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। फिर बाद में कुछ कुछ जगह पे रैपर्स पड़े थे, उसको भी हटाया। वो हमने हाथ में पॉलीथीन पहन के उसको उससे साफ कर लिया। और बाद में एक जो जो बायोडिग्रेडेबल थे उनको खाद बनाने के लिए गड्ढे में डाल दिया और बाकी सब जला दिया।
0: ये बात तो आप लोगों ने बहुत अच्छी नोटिस मिलाई कि बायोडिग्रेडेबल कुछ चीजें होती हैं। तो क्या आप लोग जानते हो कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे खाद बन सकती है, या वो मिट्टी में उपयोगी हो सकती हैं, या पानी को उनसे कोई नुकसान नहीं होता, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे नुकसान होता है, जिनकी साफ सफाई हमें तुरंत करनी चाहिए?
2: दीदी, जैसे सूखे पत्ते, डाली और जो हमारा वेस्ट मैन्योर।
0: बिल्कुल, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स। और बताओ सैंडी, आप जानते हो उस बारे में कुछ?
3: कुछ पॉलीथिन में जो अपने जलाते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, उनको भी नहीं जलाना चाहिए सभी चीज।
0: और कई बार हम पानी में जब हम कोई भी ऐसा मटेरियल लेके आते हैं, पॉलीथिन सहित अगर उसे डाल देते हैं, तो वो पानी को भी बहुत नुकसान करता है।
3: पानी को रोक लेता है,
0: क्योंकि पॉलीथिन को हम कहीं भी डिग्रेड नहीं होते, तो इसीलिए वो हमारे एनवायरनमेंट को, मिट्टी को, पानी को नुकसान करता है। तो उससे हमेशा हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए। ठीक है, और बताओ आदि, आपने कैसे और क्या साफ किया?
4: मैंने अपनी गली को झाड़ू से साफ किया था।
0: झाड़ू से साफ किया, अच्छा। और सैंडी आपने?
3: मैंने भी झाड़ू, फिर दोस्तों की मदद से, फिर कुछ उठाने के लिए हम लोगों ने कुछ सर ने दिया था उठाने के लिए, तगाड़ी बड़ी, उसमें कुछ उठाया, फिर हम लोगों ने आसपास की सफाई की।
0: और आकाश आपने?
2: दीदी हमने फावड़ा और तगाड़ी और झाड़ू से,
0: अच्छा,
2: झाड़ू से साफ किया, फावड़े से तगाड़ी में डाला, तगाड़ी से बाहर फेंक दिया, मतलब एक जगह इकट्ठा किया।
0: एक जगह इकट्ठा किया, तो ये भी हम एक हेल्प तो कर ही सकते हैं कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो बाद में जिन्हें कूड़ा उठाना है उन्हें आसानी हो जाएगी। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं डेली की हैबिट्स जिनका आप ध्यान रखते हो ताकि ये कूड़ा ऐसे फैले ही ना? कोई ऐसी चीजें हैं
2: जिनका हम ध्यान रखते हैं?
0: हाँ, जिनका आप ध्यान रखो तो इतना कूड़ा कभी फैले ही नहीं।
2: प्लास्टिक,
3: घर में कुछ खाने की चीजें लाए, फिर उनके जो कचड़े होते हैं हम लोग एक कूड़ादान में डाल देते, तो उससे कचड़ा नहीं होता, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो रखते हैं हम लोग।
0: ये सैंडी ने अच्छी बात कही कि अगर कोई भी हम चीज लेके आते हैं तो डस्टबिन में डालते हैं डायरेक्ट, तो कूड़ा बाहर फैलता
3: है। घर में डस्टबिन रखना भी चाहिए।
0: हाँ, और जब घर के बाहर जाते हैं तब?
2: तब दीदी हमें हमारे जो चिप्स और वगैरह खाते हैं उन्हें आजू बाजू नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए।
3: हाँ, और मैं तो क्या करता हूँ, अगर मेरे पास बैग है, स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग को साइड में डाल देता हूँ, फिर घर आके डस्टबिन में डाल देता हूँ, देखता हूँ कि आसपास डस्टबिन है तो उसमें डाल देता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि बाहर हम जाएं तो डस्टबिन ढूंढें, जैसा आकाश ने बोला, और अगर डस्टबिन ना मिले तो जैसा सैंडी ने कहा, अपने पास थोड़ी देर हम उसे रख के फिर जहां डस्टबिन मिले उसे वहां फेंक दे, इससे हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं।
3: हाँ दीदी,
0: है ना, देखने में तो छोटी सी बात लगती है, लेकिन हर एक अगर ऐसा करे तो बताओ कहीं स्वच्छता अभियान की जरूरत ही ना पड़े शायद।
3: हाँ।
0: और स्वयं ही हमारा भारत स्वच्छ हो, है ना आदि?

0: और बताओ, और आप लोग क्या कर सकते हो डेली में?
1: हाँ दीदी, और डेली में अगर हम स्कूल जाते हैं, चलो मेरा तो कॉलेज आ गया, बाकी आदि इनका स्कूल है, स्कूल जाते हैं, स्कूल लंच होता है, तो लंच में हम क्या करते हैं, कुछ खा के फेंक देते हैं, पर हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, तो इससे भी हमारी स्कूल की सफाई रहेगा और हेल्प भी हो सकता है।
0: बिल्कुल। और आदित्य, आप कुछ कहना चाहते हो?
2: खुद घर का सारा मतलब साफ सफाई कर सकते हैं, झाड़ू वगैरह कभी रोज रोज, या घर के सामने जो कूड़ा होता है उनको हटा सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, हम अपने घर के बाहर का कूड़ा भी हटा सकते हैं, और अगर रैपर्स वगैरह हमें दिख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स ने डाले या फिर किसी ने आसपास डाले, तो उठा के हम उसे भी डस्टबिन में डाल सकते हैं।
1: हाँ दीदी, और फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, ऐसा कभी कभी होता है कोई चीज़ कचरा देखते हैं, तो मैं भी और कोई भी सोचता है कि मैं क्यों फेंकूँ उठा, तो हमें सोचना चाहिए कि वो हाँ बस पूरा देश हमारा है, तो हमें साफ करना है, तो हमें खुद भी उठाना चाहिए।
0: ये देखो कितनी छोटी सी बात में आपने कितनी बड़ी बात कही, जैसे हमारा घर हमारा है वैसे हमारा
1: देश भी अपना
0: है, देश भी हमारा है, तो इसकी स्वच्छता का ध्यान भी हमें ही रखना है। और एक बात बताऊं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
0: कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे।
3: हाँ हाँ।
0: तो क्या पता हम कुछ अच्छा कर रहे हो या हमें देख कर कि हम कैसे साफ सफाई रख रहे हैं और उनको भी शिक्षा मिले।
3: हाँ दीदी,
0: है ना। और अच्छा, आप ये बताओ साफ सफाई के बारे में आप अपने देश को कैसा देखना चाहते हो, या अपने देश का कोई विजन है, या कुछ सोचते हो कितना साफ सुथरा होना चाहिए, या क्या क्या चीजें होनी चाहिए?
4: मैं चाहता हूँ इस पूरी धरती को क्लीन रखा जाए।
3: कैसे आदि?
4: साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके।
0: हाँ मतलब झाड़ू पोछा जैसे हम घर पे करते हो तो एकदम क्लीन हो जाता है ना। तो वैसे ही चमकता हुआ हर स्थान होना चाहिए, ऐसा आदि चाहता है ना। और
1: आदि, अगर ये तुम्हें करना है तो तुम अपने कर्तव्य समझना चाहिए, पता है तुम्हें? हम अगर करना चाहते हैं तो हम अपना पहले खुद को सफाई करनी पड़ेगी, अगर हम खुद करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई ना कोई करना स्टार्ट करेगा। देख देख,
0: बिल्कुल, छोटे से छोटी मदद भी बहुत बड़ी मदद की एक निशानी होती है।
1: कहा ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे हो सकता है।
3: खड़े खड़े से नदी, नदी नदी से समुद्र।
1: हाँ।
0: इस तरीके से हम अपना अपना करें तो पूरा देश क्लीन हो सकता है।
1: हाँ, दीदी।
0: और आदित्य, आप कुछ कहना चाहते हो?
2: हमें कचरा पानी में नहीं फेंकना चाहिए, उससे वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड्स में भी नहीं फेंकना चाहिए, उससे लैंड पोल्यूशन होता है, जिससे पानी अगर नाले में डालते हैं तो नाले का पानी अटक के बाहर आ जाता है, उससे और भी गंदगी फैलती है, हमें वो नहीं करना चाहिए।
0: ये बात तो आपने सही कही, और फिर परेशानी तो हमें ही उठानी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर अपने आसपास आप देखते हो कि कोई कूड़ा फैला रहा है या ध्यान नहीं दे रहा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे?
1: दीदी पहले तो हम उन्हें समझाएंगे कि आप ऐसे कचरा मत फेंका करो, प्यार समझाएंगे, नहीं तो क्या पता बुरा मान जाए वो। तो हमें डांटने लगे कि तुम ये बोल रहे हो, तुम उससे बड़े हो क्या? पहले तो उन्हें प्यार समझाएंगे कि अंकल कचरा मत फेंको यहाँ, अपना देश अच्छा नहीं लगता है, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, तो फिर हम खुद ही उठा के डाल देंगे।
0: ये संडी अपने बात बहुत अच्छी कही, एक बार हम प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे और नहीं समझेंगे तो हम खुद कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कितनी बार करोगे?
1: हर टाइम,
0: हर वक्त।
1: हाँ।
0: बुरा तो नहीं लगेगा?
1: नहीं।
0: और आप लोगों को?
3: हमें भी नहीं लगेगा,
4: हमें भी नहीं लगेगा।
0: हाँ, क्योंकि हम बच्चे ही तो देश का भविष्य है, तो हमें तो ये करना ही है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना।

0: और आकाश आप बताओ।
1: दीदी, हमें जो जैसे बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं उनको ही इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा। मतलब पॉलीथिन्स और इन सब का इस्तेमाल ना करके हम उनकी मदद ले लें। अगर बाजार में हम कुछ सब्जी खरीदने जाते हैं तो कपड़े का थैला लेके जाएं पॉलीथिन्स को अवॉइड करके, क्योंकि अगर हम पॉलीथिन ना खरीदेंगे तो जो जो पॉलीथिन्स दुकान से हम लेते हैं वो वाले कंपनी से नहीं मंगवाएंगे। अगर दुकान वाले नहीं मंगवाएंगे तो वो लोग बनाएंगे नहीं।
2: और इससे अगर पॉलीथिन का यूसेज कम हो जाएगा तो कूड़ा भी कम हो जाएगा। ये बात तो बहुत अच्छी बोली आपने, ये बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। और आदित्य आप बताओ।
3: हमें जो कूड़े होते हैं उन्हें जो अगर बायोडिग्रेडेबल हो तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो तो उन्हें अलग से डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और हमें 4 R's वो रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस एंड रिकवर को भी फॉलो करना चाहिए।
2: अच्छा, और इसका क्या मतलब होता है?
3: मतलब कि वापस इस्तेमाल करना चाहिए, उनके यूज़ को कम करना चाहिए, उनको वापस मतलब बनाने की जैसे पिघला के वापस बनाते हैं वो करना चाहिए, और उनकी जगह दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए।
2: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे एनवायरनमेंट भी बचेगा और कूड़ा भी नहीं फैलेगा, साफ सफाई भी रहेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन कौन अपनी मम्मी को घर में साफ सफाई में मदद कर रहा
4: है? मैं,
2: सब लोग?
4: हाँ।
2: अरे वाह,
5: पर क्या, कभी कभी
2: क्या क्या करते हो आप लोग?
6: मैं रोज करता हूँ।
2: हाँ आकाश बोलो।
1: मैं जब मम्मी बीमार होती है या तो मैं ही घर की झाड़ू पोछा करता, बर्तन भी मांज देता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ।
2: सफाई में मदद करवाते हो। और आदि?
7: मैं मम्मी की मदद कर पाता हूँ साफ सफाई करने में, अगर कमरे में कचरा फैला हो तो।
2: अच्छा, मम्मी के साथ झाड़ू करवाते हो, मतलब उठाते हो कचरा?
7: किताब को भी उठाता हूँ, जो चीजें फैली होती हैं उन्हें उठाता हूँ, मम्मी किचन में काम करी होती।
2: कई बार कूड़ा तो होता ही है, लेकिन जो हमारा सामान भी बिखरा होता है ना, उसको भी साफ सफाई करके अच्छे से रखना बहुत जरूरी होता है।
5: हाँ दीदी।
2: और ये तो हम सब बच्चे कर सकते हैं।
4: हाँ।
2: और सैंडी आप बताओ।
5: इससे मम्मी कोई दूसरा काम कर रही हो तो फिर मैं देखता हूँ कि कचरा फैला हुआ है या कुछ स्थिर नहीं है, तो मैं उनको ठीक ठाक कर देता हूँ, बिस्तर हुआ, फिर मेरे कुछ मैं कहीं पढ़ा तो मेरे बुक्स इधर उधर फैले रहते हैं तो अपने बुक्स को भी रख लेता हूँ, पापा के कुछ कागज पड़े तो पापा का कागज भी सही कर देता हूँ, तो ऐसे मम्मी की हेल्प करता हूँ। कभी कभी संडे को पूरा दिन मेरा छुट्टी रहता है तो फिर मम्मी की मैं झाड़ू लगाने में हेल्प कर देता हूँ।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, जब हमारी छुट्टी हो तो अपनी मम्मी को भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वो ही साफ सफाई रखते हैं। और आदित्य आप बताओ।
3: मैं अपने खुद के कमरे को साफ कर लेता हूँ और अपने सारे कपड़े वो सब खुद धोता हूँ, तो मम्मी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर उसको उसके बाद में मम्मी को दूसरे कामों में मदद कर देता, जैसे झाड़ू करना और बर्तन मांजने में कभी कभी।
2: ये भी बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले तो अगर हम खुद का काम ही अच्छे से करें तो ये भी बहुत अच्छी मदद हो जाती है ना। अच्छा मुझे ये बताओ साथ में कि साफ सफाई से फायदा क्या होता है, हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए?
3: बीमारियां नहीं फैलती चारों ओर।
2: बीमारियां नहीं फैलती, आदित्य ने अच्छी
5: बात। साफ सफाई से हमारा मन अच्छा रहता है, कोई भी काम करने में अच्छा लगता है, और कोई चीज़ अगर स्थिर हो साफ सफा हो तो हमें देखने भी अच्छा लगता है, कोई घर पे पहले तो बोला हाँ अच्छा लगता है, और हमारे मन को भी अच्छा लगता है।
7: अगर साफ सफाई नहीं होती तो अपना मन नहीं लगता कुछ कुछ भी काम करने में, और अगर साफ सफाई होती है तो सब कुछ करने का मन करता है।
1: हाँ, जैसे कॉपी में अगर सुंदर राइटिंग से लिखो तो पढ़ने का मन करता है।
5: हाँ, उदाहरण चाहिए दिया।
1: और दीदी एक और तरीका है कि अगर हम कूड़ा फैलाते हैं तो उसकी जो बैड स्मेल है वो पूरे एनवायरनमेंट को दूषित करती है, और जब हम स्मेल लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो गंदी स्मेल भी घुस जाती है
5: जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है।
2: और बच्चों पता है, हमने तो कूड़ा फैलाया या छोड़ दिया, लेकिन आने वाले कितने लोग उसको देख के बुरा फील करते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है बताओ?
7: हमारी
2: हमारी हो जाती है, क्योंकि हमारे कारण न जाने कितने लोगों को परेशानी हुई है। तो इसीलिए चाहे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हों, चाहे बस से, चाहे रोड पे, चाहे स्कूल्स में, हमें अपने कूड़े का तो ध्यान रखना ही है, कहीं फैलाना नहीं है, और जितनी हम साफ सफाई में हेल्प कर सकते हैं हमें करनी है।
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा एक चीज और बताओ कि आप लोगों ने कभी ऐसी कोई एक्टिविटी या कूड़ा फैलाते कभी ऐसा कुछ देखा हो किसी को और आपको अच्छा नहीं लगा हो, या कहीं पे आप गए हो और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो क्योंकि वहाँ साफ सफाई नहीं थी?
7: हमारा शामली बहुत गंदा है, कीचड़ पड़ी रहती है, कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है। अब तो कुछ थोड़ा सुधर गया है, पहले बहुत गंदा था।
2: अच्छा, मतलब अब साफ सफाई वहाँ पे रखी जाती है।
7: हाँ।
2: देखो कहीं हम भी जाते गंदा होता तो हमें अच्छा नहीं लगता ना।
5: और दीदी मैं तो अपने आप रोड की बोल रहा हूँ, आप रोड में वो नदी है ना उस साइड में, मैं उधर गया था, नदी पास में है और लोग उसके पास में कचरा फेंकते, उससे एक तो प्रदूषण हो रहा, ऊपर से सफाई भी नहीं है, और जो वो कचरा नदी में जा रहा तो उससे और भी प्रदूषण हो रहे हैं और भी गंदगी हो रही है, मुझे देख कर बहुत बुरा लगा था।
2: और हम जो पानी को एंजॉय करते हैं, प्रकृति को एंजॉय करते हैं, वो भी नहीं कर पाते
5: नहीं।
2: है ना। हाँ, आदि आप बोलो।
7: वो जब मैं आबू रोड से कहीं और जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ती है, तो वो नदी नहीं थी, पूरा नाला बन गई थी।
1: फिर आदि
7: वहाँ से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी, नाक बंद कर करके जा रहे थे।
2: अच्छा, हाँ सही बात है भाई, अगर बदबू आएगी तो फिर हमें देखने का भी मन नहीं करता उधर की साइड, है ना। और आप बताओ आकाश।
1: दीदी मैं बताना चाहता हूँ, डायमंड कॉलोनी के पहले पीछे के साइड में वो जगह बहुत गंदगी है, वहाँ कीचड़ वीचड़ आता है, मतलब गड्ढा जैसा है, तो वहाँ पे बहुत सारे सुअर रहते हैं। जस्ट उसके सामने ही एक चक्की है, तो जब चक्की में जाता हूँ तो सब आटे की सुगंध आती है, तो उसका पता नहीं चलता, लेकिन जैसे थोड़ा सा बाहर जाता हूँ ना, बहुत गंदी बदबू आती
2: है, वहाँ अच्छा नहीं लगता,
1: मजा नहीं आता।
2: आदित्य आप बताओ।
3: हाँ, एक बार जब मैं बाहर जा रहा था अब रोड के ट्रेन से, तो रेलवे स्टेशन पे लोग खाना खा रहे थे और रैपर्स थे वो वहीं पे फेंक देते थे, और कोई कुछ लोग पान खाते थे और वहीं पे थूक देते थे, तो उससे बहुत बदबू आती
5: है। हाँ, बहुत गंदगी होती है।

0: तो उसका सही उपयोग करना चाहिए।
1: और इसका रिजल्ट और बेनिफिट किसे मिलेगा?
2: हमें
1: मिलेगा, क्योंकि गंदगी तो हमें से किसी को पसंद नहीं है। और बच्चों आपको पता है कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियाँ भी आती हैं।
0: हाँ, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियाँ।
1: जब हम साफ सफाई रखते हैं तो फिर बीमारियों से भी बचते हैं।
0: जी।
1: और जैसे आपने कुछ बर्तन में खाना रखा है या कुछ रखा है तो उसे ढक कर रखें।
0: हाँ।
1: है ना, साफ सफाई में ये सब चीजें भी आती है ना।
0: बिल्कुल।
1: जब हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से धो के इस्तेमाल करें,
0: नहीं तो उससे भी और बीमारियां फैलती।
1: नहीं तो उन सब चीजों से भी बीमारियां फैलती हैं। जहाँ हमारा खाने पीने की चीजें हैं, हमें वहाँ भी बहुत ही शुद्धता और सावधानी रखनी चाहिए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को इस पे कोई मैसेज देना चाहोगे? सैंडी आप बोलो।
0: मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे बताया कि वो सब साफ सफाई रखते हैं, वो सब मुझसे काफी अच्छे हैं, पर मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि डेली साफ सफाई रखो, आस पड़ोस, अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपना कॉलेज, जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक साफ सफाई रखो।
1: ठीक है, बिल्कुल, जहाँ तक हो सके हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। और आदि?
3: मैं अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो पूरी अपने एनवायरनमेंट और अपने नेबरहुड क्लीन रखें, और अपने घर को भी और अपने आप को भी।
4: और दीदी, मेरे दोस्त किसी को करते देखेंगे ना तो वो भी कूद जाएंगे करने।
1: तो मतलब वो बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, है ना? तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए?
4: क्या करना चाहिए? मैं उन्हें एग्जाम्पल दूंगा, देखो, चैलेंज दूंगा, मैं कर रहा हूँ।
1: हमें अच्छे अच्छे चैलेंजेस एक दूसरे को देने चाहिए।
0: हाँ।
1: और आदित्य आप बोलो।
5: मेरे दोस्त भी साफ सफाई तो रखते हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ उन्हें, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस।
1: तो आज से आप लोग साफ सफाई रखोगे?
6: हाँ दीदी।
1: प्रॉमिस?
6: प्रॉमिस।
1: अरे वाह, तो चलो सब लोग अपने लिए एक बार ताली बजा दो।

0: आज हमने बात की साफ सफाई पे, और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए जो कि हम और हमारे फ्रेंड्स मिलके फॉलो करेंगे।
1: जी दीदी,
0: तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे बच्चों की दुनिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम सभी प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए
1: बाय बाय।

0: अरे सुन अरे सुन सुन सुन सुन सुन हर दिल को चाहत का तू जाम दिए जा लेता जा दुआए आराम दिए जा हर दिल को चाहत का तू जाम दिए जा लेता जा दुआए आराम दिए जा
1: पटाख तुम पटाख तुम पटाख तुम पटाख।

0: वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के सुनता जाए गमों के कांटे। वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के सुनता जाए गमों के कांटे। सारे टूटे दिल अपना के घूम घूम के यूं ही जिए जा,
1: आंखों से आंखों भर।

0: सावित्री जी, आपके पति देव तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
1: आइए। ये क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता?
2: सुनिए, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर।
3: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है। मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
0: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
3: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
2: नमस्ते।
3: मेरा छोटा भाई
1: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
0: वैसे लोग मुझे मनोहर गाइड भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
3: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
0: बात ये सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
2: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा चंपा से मिलकर आती हूँ।
3: आप बैठिए ना।
0: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
3: हाँ साहब, आप होते तो शादी का मजा ही और होता।
0: ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खा नहीं रहे?
3: अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट क्रीम खासकर बहुत बढ़िया।
0: एक और खाइए।
3: अजी नहीं साहब।
0: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

0: कर रहे हो?
1: सर, प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो? सभी तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूं। ये फ्रूट क्रीम का कप और बस काम खत्म। पार्टी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ,

सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें, काले हैं तो क्या

0: चाली तक जमी तक चाली तक जमी तक झाला आंबो तक जग तक ताजे गेन तक नाक तक जमी तक नाक नाक जमी तक नाक नाक जमी तक नाक नाक जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबो तारी गेटे ताली जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबो तारी गेटे जम तारी जग तारी जग नाक नाक ता जिन ता जिन ता जिन ता जम तारी जग तारी जाने जाने को ता जिन ता जम ता जिन ता ताक दंग दंग दंग कड़े दंग दंग दंग ताक दंग दंग दंग
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

الله الله الله الله الله الله الله الله मेरी मदद कर अल्लाह मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह

चौदहवीं रात का चांद कुछ थकी थकी सी आधी अधूरी सांसें, कुछ रास्तों के बेनाम से मोड़, एक शाम की फूली हुई सुर्ख व सुनहरी शफक, ये सब उस शायर का सरमाया है जो बूंद बूंद पिघलती रात अपनी ओक में भरता रहता है। कुछ सुनहरी सी चांद की बूंदें, कुछ सब्ज रात के पत्ते जो हथेलियों में पड़ते हैं और सूख जाते हैं। एड़ियों पे उचक उचक के शायर चांद को छूने की कोशिश कर रहा था कि रात बुझ गई, वक्त खत्म हो गया, और वो जो शायर था ना,

ओरिजिनल प्लान था कि लता के साथ डुएट होगा, तो लता उन दिनों में शायद बाहर गई हुई थी या कुछ प्रॉब्लम था, तो किशोर सजेस्ट किया, दादा मैं अगर दोनों वॉइस में खुद गा लूँ, फीमेल और मेल, तो मैं सोचा जोक कर रहा है, नहीं आपको मैं गा के सुनाता हूँ, आप सुनिए। एंड एक्चुअली ही डिड ए वंडरफुल थिंग, इमीडिएटली ही मेड इन टू फीमेल वॉइस एंड इमीडिएटली जंप बैक टू